0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

पवन, तू संदेशा लाई नई उम्मीदों और उजालों का, हर सुबह जीवन को फिर से मुस्कुराकर जीने का नाम ही जीवन है।

नदिया की तरह ये सुबह भी शांत, निर्मल और सुकून से भरी है। बहती हवाओं और चहचहाते पंछियों के बीच मन प्रकृति के करीब जाकर एक अलग ही आनंद, एक अलग ही जादू महसूस करता है।

प्रकृति का हर स्वर हमें आगे बढ़ने, मुस्कुराने और उम्मीदों को थामे रखने का संदेश देता है। ठंडी ठंडी पवन मन के हर कोने में नई ऊर्जा भर देती है। इसी विचार के साथ अब मैं आपसे लेती हूँ अनुमति और छोड़े जा रही हूँ आपको कार्यक्रम के आखिरी गीत के साथ। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। जल्द होगी मुलाकात आपसे, तब तक के लिए आपसे ले रही हूँ अनुमति। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून 2026 सुबह के 5:53 और 30 सेकेंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब जानते हैं आज आप आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर कौन कौन से कार्यक्रम सुन सकते हैं। सुबह 6:10 का समय रहेगा प्रोग्राम अर्पण का। 6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित्र मानस कान। सात बजकर दस मिनट का समय रहेगा कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात का।

8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी। 10:30 का समय होगा दिल का मेलबॉक्स का।

11:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम तस्वीर। 12:10 का समय होगा कार्यक्रम घर आंगन का।

दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे कलाकार बेमिसाल। 3:10 का समय रहेगा कार्यक्रम मन भावन का।

3:30 पर आप सुनेंगे AIR@90 के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग। शाम 5:10 का समय रहेगा गाते गुनगुनाते का। साथ 7:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ ढले। 8:10 का समय रहेगा मधुरिमा का। 6:00 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुक की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

कहते हैं आत्मा स्वयं में पूर्ण है, हमारे रहने का वास्तविक स्थान हमारे भीतर ही है। तो अपने इस स्थान का सदुपयोग करें और इसके शासक और अपने स्वामी खुद बने। 100.1 MHz FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं अर्पण उर्वशी के साथ। सुप्रभात।

जीवन नदी की तरह है, वो कभी शांत बहती है, कभी चट्टानों से टकराती है, तो कभी अपने मार्ग स्वयं बनाती है। हम अक्सर चाहते हैं कि जीवन हमारी योजनाओं के अनुसार चले, लेकिन प्रकृति बताती है कि परिवर्तन ही जीवन का स्वभाव है। आइए इसे सहजता से स्वीकारें।

जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो हमारे सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। रहीम कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रिश्ते विश्वास से बनते हैं और अहंकार से टूटते हैं। कभी कभी एक मीठा शब्द, एक क्षण का धैर्य या किसी को ध्यान से सुन लेना भी किसी के जीवन में प्रकाश भर सकता है। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं अर्पण और वशी के साथ।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्री रामचरित मानस का एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है अहल्या उद्धार का। जनकपुर से सीता स्वयंवर का निमंत्रण पाकर मुनि विश्वामित्र दोनों कुमारों को राजा जनक का धनुष यज्ञ दिखाने ले चले। मार्ग में एक सूना आश्रम दिखाई पड़ा जहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। वहां एक शिलाखंड पड़ा था जिसके विषय में श्री राम की जिज्ञासा सुनकर ऋषिवर ने उन्हें गौतम पत्नी अहल्या के अभिशप्त होने की कथा सुनाई और बोले, ये पत्थर की देह धारण किए युगों से बड़े धीरज के साथ आपके चरणों की धूल की प्रतीक्षा कर रही है। हे रघुवर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम के चरण का स्पर्श पाते ही तपोमूर्ति अहल्या अपने सुंदर नारी रूप में हाथ जोड़े प्रकट हो गई। अत्यंत प्रेमवश उसका शरीर पुलकित था और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी।

0: दत्तमस्ति। आयोगस्यानुसारं जून मासस्य 18 दिनांके मतदानं भविष्यति, मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने भविष्यति। महाराष्ट्रस्य, तमिलनाडुराज्यस्य, ओडिशाराज्यस्य च प्रत्येकस्य एकस्य आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य अपि आयोगेन घोषणा क्रियते। एतत् निर्वाचनमपि अग्रिममासस्य 18 दिनांके भविष्यति। एकोननवति वर्षीया प्रख्यात गायिकायाः सुमन कल्याणपुरस्य मुंबई नगरे स्वनिवासस्थाने मृत्युः अभवत्। 50-29 शततमाद् वर्षात् 70-29 शततमं वर्षं यावत् चलचित्र संगीतस्य स्वर्णयुगे नैकासु भारतीय भाषासु कृत कार्याणां कृते एषा वयोवृद्ध गायिका प्रसिद्धा आसीत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अन्तिमस्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं 5 पराजित्य गतविजेतृदलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन अस्य वर्षस्य श्रृंखलापि विजिता इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्मी संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंधन तेगचिनलिंग मठ में अहर्त सारिपुत्र और अहर्त महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोदसुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटरामन ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। रिले स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भूमिका, ताहुरा, सेहनूर और नीरू की महिला टीम ने 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता।

जिंदगी को सिर्फ जीते चले जाना अर्थ नहीं देता, बल्कि ये हमें तब समझ आती है जब हम कुछ पल रुक कर उसे महसूस करते हैं। जैसे सुबह की चाय की भाप, खिड़की से आती हवा, किसी अपने की हंसी या दिन भर की भागदौड़ के बीच मिला एक शांत सा पल। तो चलिए इस मंडे मॉर्निंग को महसूस करने में तवज्जो देते हैं और आगे बढ़ते हैं। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ FM गोल्ड पर आप हैं उर्वशी के साथ गोल सुप्रभात में।

समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है बच्चों के स्कूलों में, तो इस बार स्क्रीन टाइम की जगह क्यों ना स्किल टाइम भी बढ़ाया जाए, है ना। एक नई हॉबी, नई किताब, थोड़ा आउटडोर खेलना, थोड़ा आर्ट, थोड़ा म्यूजिक, ढेर सारी फैमिली मस्ती। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप अर्बन एरियाज में रहते हैं तो पूरी फैमिली के लिए बहुत बढ़िया टाइम है ये, क्योंकि छुट्टियां वो नहीं होती जो बस खत्म हो जाए, बल्कि वो होती हैं जो कुछ नई यादें, कुछ नई बातें जोड़ जाएं। तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं, छुट्टियों को मजे से

7:25 हो चुके हैं और आप हैं गोल सुप्रभात में उर्वशी के साथ। वैसे दिल्ली का मौसम भी बड़ा दिलचस्प है ना दोस्तों, कभी धूप कभी बादल कभी अचानक तेज हवा, बिल्कुल जिंदगी की तरह जो हर दिन कोई ना कोई नया सरप्राइज लेकर आती है। जून की पहली तारीख है और दिल्ली एनसीआर का मौसम भी जैसे नए महीने की एंट्री को अपने ही अंदाज में सेलिब्रेट कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में तेज गर्मी के बाद हवाओं में थोड़ी सी राहत सी महसूस हुई, लेकिन गर्मी ने अभी भी पूरी तरह अलविदा नहीं कहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में फिर से तापमान धीरे धीरे बढ़ सकता है और कहने को तो अभी भी अगर धूप में खड़े हो जाओ तो गर्मी लगती है। हाँ, छाया में अगर थोड़े बहुत हवा चल रही हो तो थोड़ा सा सुकून जरूर महसूस होता है। आज का टेम्परेचर की बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम 24 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है।

वैसे इस गाने में पोटेंशियल है, पूरा दिन वान पर चढ़ा रह सकता है ना। तो चलिए अब मैं चलती हूँ। आप सुन रहे थे गोल्ड सुप्रभात और आइए अब सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे FM गोल्ड पर।

0: दोस्तों, लगातार आगे बढ़ती पल पल रंग बदलती जिंदगी की सुहानी सुबह को कुछ और पुरसुकून और यादगार बनाने के लिए आ गए हम लेकर आज सवेरे का ये अंक एफएम गोल्ड पर। दोस्तों, मनोरंजन और जानकारियों भरे सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम में हम आपको देंगे देश और दुनिया के ताजा समाचार, महानगरों का जानेंगे हाल, बातें होंगी मौसम के मिजाज की, इतिहास में दर्ज कुछ घटनाओं का जिक्र करेंगे है जिनका रिश्ता आज की इस तारीख से, और फिर याद करेंगे उन जानी मानी हस्तियों को है जिनका जन्मदिन, जयंती या फिर पुण्यतिथि। आज आपके हम सफर हैं, हम यानी मैं मुनीश शर्मा और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। शगुन, नमस्कार।
1: नमस्कार मुनीश, एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। इट्स अ ब्रांड न्यू डे एंड वी आर वेकिंग अप विद यू राइट हियर ऑन आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। सो फ्रॉम द हेडलाइंस शेपिंग आवर नेशन टू द स्टोरीज अनफोल्डिंग अक्रॉस मेट्रो स्ट्रीट्स, वी हैव गॉट एवरीथिंग यू नीड टू स्टार्ट योर डे informed and inspired. With that, on this very note, well, let's begin our program with the headlines, shall we?
0: जी हाँ, सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की।
1: डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड ऑस्ट्रेलियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर फॉर डिफेंस रिचर्ड माउस विल को चेयर द सेकेंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग इन न्यू दिल्ली टुडे। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेड दैट ड्यूरिंग द डायलॉग डिस्कशंस विल फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, एनहांसिंग मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, इंक्लूडिंग को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज। The meeting is expected to further strengthen bilateral defence relations, enhance strategic trust and cooperation, promote stability and security in the Indo-Pacific region and identify new areas of collaborations in defence and security.
0: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में चार चार सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तीन तीन सीटें, झारखंड में दो सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में एक एक सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में एक एक सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान होगा 18 जून को और मतगणना भी उसी दिन होगी।
1: Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will launch the Khet Bachao Abhiyan

0: How beautiful attributes. On to sports now. In cricket, Royal Challengers Bengaluru won their second consecutive IPL title, beating Gujarat Titans by 5 wickets in the final match at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. BCCI President Mithun Manhas and Secretary Devajit Saikia presented the coveted IPL 2026 trophy to RCB captain Rajat Patidar. More from our correspondent.
1: For a second time running, Royal Challengers Bengaluru back-to-back winners of the Tata IPL.
2: The dream of every RCB fan came true last night when Virat Kohli hit the ball outside the fence for a 6 to finish the match in style. Chasing a target of 156 runs set by Gujarat Titans, the men in red and gold comfortably overhauled the winning mark, riding on Virat Kohli's unbeaten 75 runs of just 42 balls. He was also adjudged player of the match.
3: I've thought of this moment many times that, you know, once when we win the IPL, I should be standing there hitting the winning runs, and tonight it was possible. So, yeah, just a dream day for us.
2: Earlier, after being invited to bat first, Gujarat Titans managed to score only 155 runs at the loss of 8 wickets. Washington Sundar was their top scorer with unbeaten 50 runs. RCB bowlers completely dominated 22 yards as Rasik Salamdar bagged 3 wickets, while Bhuvneshwar Kumar and Josh Hazlewood each bagged 2 wickets. In the post-match presentation, 15-year-old Vaibhav Suryavanshi of Rajasthan Royals won the orange cap on becoming highest run getter in this season. Moreover, the young sensation also won the Most Valuable Player award and the Emerging Player of the Season title. On the other hand, Kagiso Rabada of Gujarat Titans won the purple cap for claiming highest number of wickets this season. So now, before we close this report, let's listen to what RCB skipper Rajat Patidar said after retaining the IPL title.
3: So this one is for you again, RCB fans. Ee salanu cup namdu.
2: With this, a phenomenal IPL season comes to an end. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
0: How great. In the Asian Under-20 Athletics Championships, India's Mugli Venkataram clinched gold in the men's 800 metres in Hong Kong, earning the country's first gold medal in the event at this year's competition. And also in the Under-17 Asian Wrestling Championships, India's women wrestlers delivered a strong performance, winning a total of 10 medals, including 2 gold, 3 silver and 5 bronze in Da Nang, Vietnam.
4: और दोस्तों अब रुख करते हैं महानगरों की खबरों का. सबसे पहले बात दिल्ली की. दिल्ली के शालीमार बाग स्थित हैदरपुर क्षेत्र में कल सड़क नंबर 320 के निर्धारित राइट ऑफ वे के भीतर बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की गई. मध्य उत्तर जिला के जिलाधिकारी एसएस परिहार ने बताया कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है. जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित भूमि अधिकृत सरकारी भूमि है और दिल्ली विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान में सार्वजनिक सड़क के तौर पर चिन्हित है. उन्होंने कहा कि सड़क की वर्तमान चौड़ाई अतिक्रमण के कारण गंभीर रूप से प्रभावित रहती है, जिससे नियमित यातायात जाम की स्थिति पैदा होती है और एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों और अन्य आपातकालीन सेवाओं के आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि भारत की वास्तविक शक्ति सिर्फ आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति में नहीं है, बल्कि उसकी समृद्ध सभ्यतागत चेतना और नैतिक मूल्यों में वो निहित है. दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रथम सिंधु कुंभ नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि भारत की विरासत का संरक्षण देश निर्माण के लिए बेहद आवश्यक है. भारत की विविधता में एकता को उसकी सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उन्होंने कहा कि भाषाई और सांस्कृतिक भिन्नताओं के बावजूद देश की आत्मा एक है. उन्होंने कहा कि यह पुस्तक सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगी.
0: Now we'll head to Chennai. Southern Railways has announced temporary additional stoppages for 6 trains at Tiruvallur Railway Station from today till 20th due to yard remodelling and non-interlocking works at Arakkonam Junction. The additional stoppages have been announced as part of the railway infrastructure works worth 97.73 crore rupees being carried out at Arakkonam Junction. Another update. Well, Southern Railways has installed 81 water vending machines across 37 railway stations in the past financial year to provide passengers access to safe, hygienic and affordable drinking water, particularly during summer travel.
4: और दोस्तों अब बात करते हैं मुंबई की, जहां दिल्ली की ही तरह अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बृहन्मुंबई नगर निगम ने रविवार को मुलुंड के खिंडीपाड़ा स्थित अमर नगर में 150 अवैध आवासीय और व्यावसायिक ढांचों को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना के लिए जमीन खाली कराने के प्रयासों के तहत की गई है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना की प्रगति को सुगम बनाने के लिए अगले सप्ताह क्षेत्र में स्थित अतिरिक्त 234 अवैध ढांचों को ध्वस्त किया जाना है। और उधर ठाणे पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 500 ग्राम मेफेड्रोन क्रिस्टल पाउडर जब्त किया है, जिसकी अवैध बाजार में कीमत का अनुमान है लगभग 70 लाख रुपए। इसके अलावा एक देसी पिस्तौल और 9 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने 27 मई को मुमरा के ओल्ड खारे गांव टोल नाका के पास 2 स्कूटरों को रोका और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कालवा पुलिस स्टेशन में नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, आर्म्स एक्ट और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। तीनों आरोपियों को 2 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
0: We will focus now on Bengaluru, where Designed Apple 2026 was hosted by the Army Institute of Fashion and Design under the Army Welfare Educational Society, and this showcased the creative works of the graduating batch of 2023-26. Ms. Shweta Singh received the prestigious Chief of Army Staff All-Round Best Student Rolling Trophy. The event also featured presentation of academic awards, design honours as well, and this included GOC INSEE Southern Command Rolling Trophy for Best Designer and the Chairman's Award as well. Another update, Southwestern Railway is set to conduct trial runs of the Vande Bharat Express between Bengaluru and Mangaluru in June, marking a key step towards introducing the service.

0: minister said in the first phase, over 4 lakh houses have been approved across the state. He announced that Chief Minister Revanth Reddy will lay the foundation stone for the second phase today in Asifabad district. So the minister said that the second phase will have 2.5 lakh houses and the both phases combined, each constituency will get between 5,000 to 6,500 houses. He added that tribal constituencies in scheduled areas will get an additional 500 to 1,500 houses. So these were the Metro City updates.
1: तो दोस्तों ये थी बात महानगरों की और जी हाँ दोस्तों, तो हमारी कोशिश रहती है कि न सिर्फ आप खबरों से रहें बिल्कुल बाखबर बल्कि साथ साथ आपको हो जानकारी मौसम के मिजाज की भी.
0: True.
1: तो अब बात करते हैं सबसे पहले हम राजधानी दिल्ली की, जहां आज बारिश के साथ आंधी का पूर्वानुमान है. वहीं आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रह सकता है 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास.
0: चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव थंडरस्टॉर्म अकंपनीड विद लाइटनिंग. द मिनिमम टेम्परेचर वाज 29 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 39 डिग्री सेल्सियस.
1: और दोस्तों मुंबई जाने का इरादा है या वहां से इधर आने का इरादा है तो जरा ख्याल रखिए कि आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश या गरज के साथ तूफान की भी संभावना है. न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम जा सकता है 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास.
0: सो थंडरस्टॉर्म इज एक्सपेक्टेड इन बेंगलुरु अकंपनीड विद लाइटनिंग. द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 22 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्रीज.
1: जी हाँ, और कोलकाता में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा, बिजली कड़कने की संभावना है. अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रह सकता है 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास.
0: इफ वी टॉक अबाउट हैदराबाद, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन और थंडरस्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म देयर. द मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 29 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस. मुनीश.
1: जी हाँ दोस्तों, और अब जानते हैं कुछ ऐसी बातों के बारे में जो बना देती हैं आज की इस तारीख यानी 1 जून को बेहद खास. तो शगुन, क्या है ऐसी जानकारी आपके पास?
0: वेल, फर्स्ट वी आर बिगिनिंग विद द ईयर 1874. द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्मली डिसॉल्व्ड फॉलोइंग द इंडियन वॉर ऑफ 1857 एंड द पैसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. इन 1916 लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कॉइन्ड द स्टेटमेंट फ्रीडम स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट एट अ पब्लिक मीटिंग इन अहमदनगर. इन 1930 द फर्स्ट इंडियन लग्जूरियस फास्ट ट्रेन डेक्कन क्वीन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम विक्टोरिया टर्मिनस टू पुणे. इन 1945 टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज फाउंडेड बाय डॉ होमी जे बाबा एंड विद द सपोर्ट फ्रॉम सर दुराबजी टाटा ट्रस्ट. The institute first began functioning within the Cosmic Ray Research Unit on the campus of the Indian Institute of Science, Bangalore, and moved to Bombay in October that year. In 1964, the Naya Paisa, that is New Paisa, was renamed Paisa as the new decimal currency, which was 1/100th of a rupee. And in 1972, Space Commission and Department of Space was set up. And in 1984, Operation Blue Star by the Indian Armed Forces began to remove militants from the Golden Temple.
1: और बात करें अगर मौजूदा सदी की तो 2005 में यही थी वो तारीख 1 जून जब अप्पा शेरपा ने माउंट एवरेस्ट की 15वीं बार सफल चढ़ाई की. 2006 में चीन के दक्षिण पूर्वी जियांगशी प्रांत के शांगीपन गांव में आदि मानव का पदचिन्ह मिला. और 2010 में यही थी वो तारीख जब अक्षरधाम आतंकी हमले के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा. विशेष कोर्ट अदालत ने 2006 में इस मामले में 3 आरोपियों को फांसी, 1 को उम्र कैद, 1 को 10 वर्षों की सजा और 1 को 5 साल की सजा सुनाई थी. और दोस्तों आइए बात करते हैं, याद करते हैं उन महान व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन.
0: So where would we begin with?
1: सबसे पहले हम याद कर रहे हैं आज पुण्यतिथि है नीलम संजीवा रेड्डी साहब की जो भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे. आंध्र प्रदेश के कृषक परिवार में जन्मे नीलम संजीवा रेड्डी की छवि एक कवि, अनुभवी राजनेता और कुशल प्रशासक के रूप में रही. इनका परिवार संभ्रांत और शिव भक्त था. इनके पिता का नाम था नीलम चिनप्पा रेड्डी जो कांग्रेस पार्टी के काफी पुराने कार्यकर्ता और प्रसिद्ध नेता टी प्रकाशम के साथी थे. 25

0: 20 जुलाई 1982 को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति पद के दायित्व से मुक्त हुए और फिर लगभग 14 वर्ष बाद 1 जून 1996 को इनका निधन हो गया। एक उपलब्धियों भरा देश सेवा से परिपूर्ण जीवन उन्होंने जिया और उन्हें हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि।
1: Today, we are also remembering Helen Keller. Well, undeterred by deafness and blindness, she rose to become a major 20th century humanitarian, educator and writer. She advocated for the blind and for women's suffrage. So, several months before Helen's second birthday, a serious illness, which was possibly scarlet fever, left her deaf and blind. She had no formal education until age 7, and since she could not speak, she developed a system for communicating with her family by feeling their facial expressions. So, we are telling you about Helen Keller.
0: और दोस्तों आज है पुण्यतिथि ख्वाजा अहमद अब्बास की। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और उर्दू लेखक के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उन हम कह सकते हैं कि ऐसे बहुत कम गिने चुने लेखकों में से एक थे जिन्होंने मोहब्बत, शांति और मानवता का पैगाम ऐसा दिया जो आज भी हम याद करते हैं। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने अलीगढ़ ओपिनियन शुरू किया। बॉम्बे क्रॉनिकल में लंबे समय तक बतौर संवाददाता और फिल्म समीक्षक रहे। इनका स्तंभ द लास्ट पेज सबसे लंबे समय तक चलने वाले स्तंभों में गिना जाता है और ये 1941 से 1986 तक लगातार छपा। के अब्बास इप्टा के संस्थापक सदस्य भी थे। शहर और सपना के अलावा अब्बास साहब की दो फिल्मों सात हिंदुस्तानी और दो बूंद पानी ने राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दस्त पुरस्कार जीते। नीचा नगर 1946 में जो आई थी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जुटाने में कामयाब रही और इसने कान फिल्म समारोह में पाम दी ओर पुरस्कार प्राप्त किया और दूसरी ओर परदेसी भी इसी पुरस्कार के लिए नामित होने में सफल रही। और इन सब पुरस्कारों के अलावा 1969 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और उनकी एक बहुत बड़ी देन ये मानी जाती है फिल्म जगत में कि सबसे पहले महानायक अमिताभ बच्चन को उन्होंने अपनी फिल्म सात हिंदुस्तानी में एक भूमिका दी जो उनकी एक यादगार भूमिका बनी। तो सुनते हैं सात हिंदुस्तानी से ये गीत।

0: और दोस्तों आज है जन्मदिन कर्णम मल्लेश्वरी का, जो भारत की प्रसिद्ध भारोत्तोलक हैं। वे ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं हमारी। अपने मजबूत हौसले और दिलेर कारनामों से कर्णम मल्लेश्वरी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगे की शान को चार चांद लगाए। मंच कोई भी हो, लेकिन जीत हर कीमत पर, ऐसा इरादा रखने वाली इस वेटलिफ्टर की जिंदगी संघर्ष और कामयाबी की एक अद्भुत कहानी रही है। सन 2000 में सिडनी में हुए ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी ने महिलाओं के 69 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा और 1995 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1996 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से और 1997 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था।
1: वेल, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू कर्णम मल्लेश्वरी। टुडे लिसनर्स, वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग अ लिरिसिस्ट एंड वोकलिस्ट एज वेल, सिंथिया वाइल। शी वाज इंडक्टेड इनटू द सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम इन 1987 एंड वेल शी हैज बीन बिस्टोर्ड बाय दैट हॉल ऑफ फेम। दिस इज द हाईएस्ट ऑनर। सो शी हैज रिटन सो मेनी सॉन्ग्स। द सॉन्ग दैट आई चूज इज नेम्ड एज द क्रिस्टल्स। लेट्स लिसन इनटू इट नाउ।

और आज है जयंती प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस दत्त की, जिनका असल में नाम था फातिमा रशीद। हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्रियों में शुमार होती हैं। नरगिस मशहूर गायिका जद्दनबाई की पुत्री थी। कला उन्हें विरासत में मिली और सिर्फ 6 साल की उम्र में नरगिस ने फिल्म तलाश हक से अभिनय की शुरुआत की। फिल्म मदर इंडिया में राधा की भूमिका के जरिए भारतीय नारी को एक नया और सशक्त रूप देने वाली नरगिस हिंदी सिनेमा की महानतम अभिनेत्रियों में से एक थी, जिन्होंने लगभग 2 दशक लंबे फिल्मी सफर में दर्जनों यादगार और संवेदनशील भूमिकाएं निभाई और अपने सहज अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया। 1940 और 50 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और 57 में प्रदर्शित महबूब खान की मदर इंडिया उनकी सबसे चर्चित फिल्म तो बेशक रही ही रही। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी नामित किया गया था और उनकी जो खास फिल्में हैं उनमें मदर इंडिया के अलावा अंदाज, अनहोनी, जोगन, आवारा, रात और दिन, अदालत, घर संसार, लाजवंती, परदेसी और चोरी चोरी है। कई प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें मिले, जिन्हें हम याद करें तो फिल्म फेयर के अलावा फिल्म रात और दिन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनय का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। सुनते हैं उनके कुछ यादगार गीतों की ये झलक।

0: और दोस्तों दीजिए इजाजत कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की। मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा और मैं मुनीश शर्मा, लेते हैं आपसे आज्ञा।
1: वेल वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड। नमस्कार।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
4: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
5: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों किसानों महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
3: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
1: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
4: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है। सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसोर अबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिएं देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों के लिए राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35

नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बे। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ओ मिनोंग लांग से बातचीत करेंगे। राज्यसभा के दो साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। मरकज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेगा। एक माह तवील इस मुहिम का मकसद कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल को फरोग देना है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी 35 वजीरों को अपनी काबीना में शामिल करेंगे। मारूफ गुलुकारा सुमन कल्याणपुर का मुंबई में इंतकाल हो गया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ओ मिन आउलोंग से बातचीत करेंगे। ये बातचीत दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मजीद मुस्तकम बनाने और ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे पर की जाएगी, जिसमें हिफाजत और राबते भी शामिल हैं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कल शाम नई दिल्ली में मेहमान शख्सियत से मुलाकात की थी। सदर ओ मिन आउलोंग ने म्यांमार भारत तिजारत फोरम से भी खिताब किया। म्यांमार के सदर भारत के 5 रोजा दौरे पर हफ्ते के रोज बिहार के शहर गया पहुंचे थे। उनके हमरा एक आला सतह का वफद भी है, जिसमें बहुत से काबीना वजरा, सीनियर अफसरान और सरकर्दा ताजिर शामिल हैं। जनाब ओ मिन का सदर की हैसियत से भारत का ये पहला दौरा है। वो तिजारत और सनत की सरकर्दा शख्सियतों से बातचीत करेंगे और बहुत सी जगहों का दौरा करने के लिए कल मुंबई जाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: म्यांमार के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वो कौमी राजधानी में राय पिथौरा सकाफती मरकज में लाइट एंड लोटस एक जागे हुए शख्स की बाकियात की नुमाइश से भी महजूज होंगे। इस नुमाइश में गौतम बुद्ध से वाबस्ता मुकदस पिपरावा बाकियात और नादिर अशिया को नुमाया किया जा रहा है। म्यांमार भारत की पड़ोसी मुकदम एक्ट ईस्ट और महासागर पॉलिसियों में शामिल है। उम्मीद है कि सदर ओ मिन के भारत के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और गहराई पैदा होगी। न्यूज डेस्क से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: राज्यसभा के दो साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट के लिए चुनाव होंगे। साबिक वजीर आजम और जेडीएस के रहनुमा एचडी देवेगौड़ा, मरकजी वुजरा और बीजेपी रहनुमा जॉर्ज कुरियन नीज रवनीत सिंह, राज्यसभा में अपोजिशन रहनुमा और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे उन अरकान में शामिल हैं जिनके ओहदे की मुद्दत इस माह खत्म हो रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए भी नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। ये सीटें महाराष्ट्र के नायब वजीर आला सुनेत्र अजीत पवार और तमिलनाडु से एआईएडीएमके मेंबर पार्लियामेंट सीवी शनमुगम के हाल ही में रियासती असेंबली में मुंतखब हो जाने की वजह से खाली हो गई थी। ओडिशा के बीजेडी मेंबर पार्लियामेंट देवाशीष सामंतरे ने भी इस्तीफा दिया था। इन इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। पोलिंग इस माह की 18 तारीख को होगी और वोटों की गिनती उसी रोज की जाएगी। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेंगे। एक महीना तवील यह मुहिम 30 जून तक जारी रहेगी। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इस मुहिम का मकसद सरई जमीन का तहफ्फुज़ और किसानों में साइंसी तर्ज की ज़राअत के बारे में बेदारी पैदा करना है। इस मुहिम

0: में ज़िराअत से मुतालिक यूनिवर्सिटीज़, ज़रई तहकीक की भारतीय काउंसिल, कृषि विज्ञान केंद्र और अवामी नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। किसानों को मिट्टी की जांच, कुदरती ज़िराअत, कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल और पानी की बचत के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें नकली कीमियावी खादों, बीजों और जरासीम कुश दवाओं की शिनाख्त भी बताई जाएगी। मुहिम के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी स्कीमों, नीज खेतों में मशीनों से कामकाज किए जाने के फायदे से भी किसानों को वाकिफ कराया जाएगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
1: मगरबी बंगाल के वजीरा शुभेंदु अधिकारी आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। वजीरों की इस काउंसिल में 35 नए वजीर शामिल किए जाएंगे। हलफबरदारी की तकरीब लोक भवन में दिन के 11 बजे मुनाकद होगी। शुभेंदु अधिकारी ने बुनियादी तौर पर 5 काबीना वजीरों के साथ 9 मई को हलफ लिया था। इस तौसी के बाद रियासती काबीना के वजीरों की तादाद 41 हो जाएगी, जो 294 रुकनी मगरबी बंगाल असेंबली का आईनी उसूल के तहत 15% है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा रिचर्ड मार्लिस आज नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया दिफाई वुजरा डायलॉग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। वजारत दिफा ने बताया कि इस डायलॉग के दौरान बातचीत में दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक तआवुन को मुस्तहकम बनाने, फौजी इंटर ऑपरेबिलिटी और मुश्तरका तरक्की और मौकों की मुश्तरका पैदावार समेत सनती इश्तराक पर खास तवज्जो दी जाएगी। तवक्को है कि इस मीटिंग से दोतरफा दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे, स्ट्रेटेजिक एतमाद और बाहमी तआवुन में इजाफा होगा, भारत बहरुल काहिल खित्ते में इस्तेहकाम और सिक्योरिटी को फरोग हासिल होगा और दिफा और सिक्योरिटी मामलात में इश्तराक के नए मौकों को उजागर किया जाएगा। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मिसाली क़यादत में गुज़श्ता 12 साल में भारत में नुमाया तब्दीली रुनुमा हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उसूल इस तब्दीली का मुहर्रिक रहा है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों पर मरकूज मुतअद्दिद पहलुओं का आगाज और नफाज किया है। आकाशवाणी न्यूज गुज़श्ता 12 साल में कलीदी शोबों में किए गए हुकूमत के इकदामात पर एक खुसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम किसानों की फलाह व बहबूद के लिए किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं।
2: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता 12 साल में किसानों की बहबूद और उनकी आमदनी में इजाफा करने के लिए मुतअद्दिद पहल कदमियों का आगाज किया है। इन इकदामात में सबसे नुमाया पीएम किसान स्कीम का आगाज रहा है, जो मुल्क में फलाह बहबूद से मुतालिक सबसे बड़ी पहलों में से एक है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बेहद सूदमंद है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: फसल बीमा योजना से तकरीबन 23 करोड़ किसानों 1,92,000 करोड़ रुपए मालियत के बीमा दावों से मुस्तफीद हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के छोटे और हाशिर बरादर किसानों को 3,000 रुपए की यकीनी माहाना पेंशन मिल रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के एक रिहायशी ने कहा कि मजकूरा स्कीम से किसानों को रोजगार में मदद मिलेगी।
4: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से,
2: कम से कम इमदादी कीमत MSP किसानों के लिए लाइफलाइन बन गई है, क्योंकि हुकूमत ने MSP को पैदावार से मुतालिक अखराजात का 1.5 गुना कर दिया है। आकाशवाणी न्यूज से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: मशहूर मारूफ गुलुकारा सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई में उनकी रिहायशगाह पर इंतकाल हो गया। वो 89 बरस की थी। उन्हें 1950 से 1970 की दहाई के दरमियान, जिसे फिल्म मौसीकी का सुनहरा दौर कहा जाता है, हिंदी, मराठी और बहुत सी दीगर भारतीय जबानों में उनकी गुलुकारी के सबब जाना जाता है। सुमन कल्याणपुर के बारे में कुछ तफसील।
0: सुमन कल्याणपुर 28 जनवरी साल 1937 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पैदा हुई थीं। उन्होंने हिंदी फिल्मों में पहली बार 1950 की दहाई के वस्त में गाना गाया था। उनकी आवाज लता मंगेशकर की आवाज से काफी मिलती जुलती थी। उन्होंने अपनी बेहद खूबसूरत आवाज में

को छू लेने के अंदाज में तारीख साज मौसीकारों, गुलूकारों, खासतौर पर मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गाने गाए। उनके मकबूल तरीन गानों में से कुछ गाने ये हैं।

0: महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे और सुनेत्र पवार, नीज मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में मौसीकी के मैदान में उनके तआवुन को उजागर किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला इंतजामिया, रिलीफ कमिश्नर दफ्तर और मुतालिका महकमों को हिदायत दी है कि वो रियासत के कई अजला में तूफान, बारिश और इंतहाई खराब मौसमी हालात पर मुसलसल नजर रखे, किसी भी हादसे की सूरत में फौरी इकदाम को यकीनी बनाए। कल राजधानी लखनऊ समेत कई अजला में मौसम में तब्दीली आई जिससे लोगों को शदीद गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसमियात महकमे ने रियासत के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में दिफाई एतबार से अहम ब्यूफोर्ट कासल इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। इसराइल की दिफाई फौजों ने बताया कि ब्यूफोर्ट रिज और वादी अल सलूकी में फौजी दाखिल हुए और इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिनमें यह कहा गया है कि ईरान के साथ उनके मुजवजा माहदे में न्यूक्लियाई मामलात का जिक्र नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने बताया कि इस माहदे में वाजे किया गया है कि ईरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करना नहीं दिया जाएगा और इस माहदे में न्यूक्लियाई सरगर्मियों से मुतालिक तफसीली कवानीन शामिल हैं। क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। बीसीसीआई सदर मिथुन मन्हास और सेक्रेटरी देवजीत साइकिया ने आईपीएल 2026 की बाबकार ट्रॉफी आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को पेश की। तफसील हमारे नमानिगार से।
1: For a second time running, Royal Challengers Bengaluru back-to-back winners of the Tata IPL.
2: कल रात उस वक्त आरसीबी के हर फैन का ख्वाब पूरा हो गया जब विराट कोहली ने गेंद को हिट करके बाउंड्री से बाहर पहुंचाकर टीम को जीत दिलाई। गुजरात टाइटंस की तरफ से दिए गए 156 रन के निशाने को आरसीबी ने विराट कोहली के 42 गेंद पर 75 रन की मदद से बआसानी हासिल कर लिया। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 8 विकेट के नुकसान पर महज 155 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर सबसे ज्यादा 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कोनैन हैदर।
0: आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे शदीद गर्मी के दौरान महफूज रहना, एहतियात, तैयारी और हिफाजत के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। यह मुजाकरा नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन से वाबस्ता डॉ रूपाली मलिक के साथ किया जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं नीतिका त्यागी।
3: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 134वीं किस्त से खिताब करने से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम ने मन की बात में समाजी खिदमत, तालीम और माहौलियात के मैदान में नुमाया काम करने वालों की सताइश की, साथ ही अवाम से अच्छे कामों से जुड़ने की अपील की। एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन बने बहरिया के 27वें सरबराह। इस खबर को सभी अखबारों ने अहमियत के साथ पहले सफे पर शाई किया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की जगह ली है। पीएम स्वनिधि स्कीम के 6 साल मुकम्मल, ये खबर भी तमाम उर्दू खबरों में नुमाया है। और अखबारात में शाये होने वाली अहम बैनुल अक्वामी खबर है कि अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का मुश्तरक दिफाई प्लान, साल 2027 तक जेरेआब ड्रोन्स तैयार करने का ऐलान।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिन आउलोंग से बातचीत करेंगे। राज्यसभा के 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। मरकज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेगा। 1 माह तवील इस मुहिम का मकसद कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल को फरोग देना है।

0: कई बार हम अपनी जिंदगी को जो है नहीं वाली लिस्ट से नापने लगते हैं, जैसे नया फोन नहीं है, वो मौका नहीं मिला, वैसी लाइफ नहीं है, और इसी चक्कर में जो पहले से हमारे पास होता है ना उसकी वैल्यू भी हम भूल जाते हैं। लेकिन जरा रुक कर देखिए, आप हेल्दी हैं, आप अपने कुछ लोगों के पास हैं जो सच में आपकी परवाह करते हैं, और हर दिन कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है अगर, तो ये सब कितनी बड़ी बात है ना। बात यह है कि खुशी हमेशा कुछ नया पाने से नहीं आती, बल्कि जो कई बार उस चीज को नोटिस करने से भी आती है जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। कभी कभी लाइफ को अपग्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका है जो है उसे वैल्यू करना। 8:46 और 30 सेकंड हो चुके हैं। म्यूजिकल दिल्ली में आप हैं और उर्वशी के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर।
1: 3, 2, 1, लेट्स स्टार्ट द फन।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता श्रीवास्तव, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पे मैं अपनी तरफ से बहुत सारा ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ आकाशवाणी को, क्योंकि आकाशवाणी का एक बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में। स्पेशली ड्यूरिंग माई यूथ डेज मैं युववाणी में अपनी कलम से लिखी हुई कुछ कविताएं पढ़ने जाती थी, और वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं अपने दिल की बात पूरी बोल पाती थी। बहुत लोग मुझे सुनते थे और मुझे बहुत सारी तारीफें भी मिलती थी, और तारीफ के साथ मुझे जो छोटा सा अमाउंट मिलता था, मैं 90s की बात कर रही हूँ, वो बहुत कीमती होता था। मुझे जो वहां से सम्मान मिला वो भी बहुत ही दिल को छू लेने वाला था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी को।

म्यूजिकल दिल्ली की सुन रहे हैं आप उर्वशी के साथ। 8:55 हो चुके हैं। मान लीजिए कल आपका टेस्ट है और किसी टॉपिक को आपको जल्दी से समझना है तो आप क्या करेंगे? एआई से पूछेंगे, है ना? कुछ ही सेकंड्स में नोट्स मिल जाएंगे, समरी भी, एप्लीकेशन भी। सुनने में तो बड़ा कमाल लगता है ना, लेकिन एक बात याद रखने वाली है यहाँ पर कि एआई हमको जवाब दे सकता है पर सोच और समझ हमारी अपनी ही होनी चाहिए। आज एआई पढ़ाई से लेकर कंटेंट क्रिएशन और ऑफिस के काम हर जगह पर टाइम बचा रहा है, लेकिन हर जवाब को आंख बंद करके मान लेना भी बिल्कुल सही नहीं है। एआई को अपना शॉर्टकट नहीं, स्मार्ट टूल बनाइए, क्योंकि असली अपग्रेड तब होगा जब टेक्नोलॉजी की स्पीड के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग भी काम करेगी।

0: एक से एक गाने आएंगे म्यूजिकल दिल्ली में, नीति रहेंगी आपके साथ, मैं चलती हूँ, नमस्कार। और अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमा भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमा के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा और उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स आज नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के दूसरे संवाद की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बैठक में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने, सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने, रक्षा उद्योग में साझेदारी, सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों पर चर्चा होगी। यह बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता है। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra.

101.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ आप आ गए हैं और ये है म्यूजिकल दिल्लगी। हर दिन बहुत कुछ खास लेकर आता है, बहुत कुछ खास देकर जाता है, तो आज के दिन से भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि आज हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक नरगिस की जयंती है। तो शुरुआत हम उन्हीं के एक बहुत ही प्यारे से गीत से करते हैं। ये गीत है फिल्म श्री 420 से और इस फिल्म को लिखा था और जिसमें संवाद और स्क्रीन राइटर जो थे, कहानीकार जो थे, वो थे ख्वाजा अहमद अब्बास, जो कि एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी थे लेकिन इस फिल्म के नहीं। उन्होंने और बहुत सारी खूबसूरत फिल्में बनाई लेकिन इस फिल्म को, यानी श्री 420 को उन्होंने ही लिखा था। इसके संवाद और इसके स्क्रीन प्ले और इसकी कहानी उन्हीं की है। तो इसी फिल्म से एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक गीत हम सुनते हैं, क्योंकि आज ख्वाजा अहमद अब्बास की

डरने की कोई बात ही नहीं है जिंदगी में, जो भी सामने आए बस उसको एक्सेप्ट करते जाइए, फिर डर अपने आप खत्म हो जाएगा। और आज का वक्त जो है वो ऐसा है कि बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं, बस उनसे हम कैसे डील करें अगर हम ये जान जाए ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये, और आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी, जिसमें अब बारी है आपसे सवाल पूछने की, क्योंकि हम आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। तो फिर 90 साल पूरे होने पर हम आपसे पूछते हैं सवाल आकाशवाणी से जुड़े हुए, क्योंकि आपका भी तो ज्ञान जांच लेना चाहिए थोड़ा बहुत। तो आज का सवाल ये है, बहुत ही आसान सवाल है, कि एफएम गोल्ड दिल्ली पर श्रोताओं की पसंद के गीतों पर आधारित कार्यक्रम का क्या नाम है? एफएम गोल्ड दिल्ली पर श्रोताओं की पसंद के गीतों पर आधारित कार्यक्रम का क्या नाम है? बस इस सवाल का जवाब आपको भेजना है, हमें मेल करिएगा fmgoldairdelhi@gmail.com पर, fmgoldairdelhi@gmail.com पर आपको मेल करना है और सवाल का जवाब भेजना है। मैं आपको गाने सुनवा रही हूँ, आप गाने सुनते जाइए और अपना जवाब हमें भेजते जाइए।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू है आपके साथ और आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी। आप सब जानते ही हैं कि भारतीय संगीत जगत की एक सुरीली आवाज सुमन कल्याणपुर अब हमारे बीच नहीं रही। उनकी शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो पर गीत गाने से ही हुई थी, उसके बाद मराठी फिल्म और फिर हिंदी फिल्म में। पहली हिंदी फिल्म थी मंगू जो कि 1954 में आई और उसके बाद तो उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत गाए जिनमें से बहुत से सुपरहिट रहे, पर अक्सर लोग उनकी और लता मंगेशकर की आवाज में अंतर नहीं कर पाते थे। पर सुमन कल्याणपुर के नाम सैकड़ों गीत हैं जो उन्होंने हिंदी, बांग्ला, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, राजस्थानी, उड़िया और पंजाबी भाषा में गाए हैं। बहुत सारे गीतों में से सिर्फ एक गीत अभी मैं आपको सुनवा रही हूं, क्योंकि इसके बाद कलाकार बेमिसाल जो होगा दोपहर में वो सुमन कल्याणपुर पर ही आधारित।

0: 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है म्यूजिकल दिल लगी और आप हैं नीतू के साथ और हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं मानव सेवा चैरिटेबल सोसाइटी के सीईओ और चीफ फंक्शनरी दलजीत लूथरा जी। नमस्कार दलजीत जी।
1: नमस्कार जी।
0: दलजीत जी, कल आपके ट्रस्ट ने मालवा क्वीन अहिल्याबाई होलकर की

0: 300वीं जयंती पर एक सफल कार्यक्रम का आयोजन किया। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। मैं जानना चाह रही थी कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था।
1: मेन उद्देश्य इसका ये था कि हमने जो इनकी जो अचीवमेंट्स थी, अहिल्याबाई होलकर जी की जो 1725 में बॉर्न हुई थी और उन्होंने इतने टेंपल्स बनाए, इतनी मराठा के जो धान नगर चरावा जाति की वो आती थी और उन्होंने उनके फादर भी जो थे उन्होंने कैसे उनको किया व्हेन शी वाज, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उसके बाद एक उनका बेटा चला गया और जिस तरीके से उन्होंने मंदिर बनाए, उन्होंने इतनी लोगों की सेवा की, वो एक एक आकर्षण का तो केंद्र है ये
0: जी। तो अहिल्याबाई होलकर जिन्हें अगर हम देखें तो उन्हें भारतीय इतिहास की सबसे आदर्श शासकों में से गिना जाता है। हालांकि उनका जीवन जैसा आपने भी बताया कि काफी चुनौतीपूर्ण रहा, तो आपको अहिल्याबाई होलकर के जीवन के किस पक्ष ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, कौन सा ऐसा पहलू था जो कि आपको इंस्पायर करता है?
1: इंस्पायर यही होता है कि एक औरत है जब उसका हस्बैंड चला जाए और उसका लड़का बीमार हो और उसके बाद में भी उसने एक प्रण किया हो कि मैं देश के लिए काम करूंगी और मैं एक ऐसा रोल अदा करूंगी, उसने फिर वो जो अदा किया दैट वाज अ वेरी बिग थिंग
0: जी। तो आपको लगता है कि आज की युवा पीढ़ी उनके जीवन से अगर कोई एक सबक सीख सकती है तो क्या होना चाहिए? वो सबक
1: सीख तो सकते हैं, पर आजकल का जो यूथ है वो उसके इस तरफ आना चाहिए। हम तो कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में भी यही बात बोली है कि यूथ को दे मस्ट कम फॉरवर्ड, उनके आदर्शों पे चलें ताकि उनमें से कोई एक भी चीज उनके हाथ में समझ में आ जाए तो वो बहुत बड़ा एक एग्जांपल बन सकता है
0: जी। तो दलजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह से जो हमारे देश के जो ऐसे लोग हैं, महान लोग जिन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ किया है और लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं, आप उनको उनके जीवन पे रोशनी डाल रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर अब बारी है एक छोटे से ब्रेक की और हम अभी लौट कर आते हैं।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर म्यूजिकल दिल लगी है और मैं हूं नीतू आपके साथ। बच्चे जो हैं बहुत ही शरारती होते हैं, कभी कभी उनकी शरारतें अच्छी भी लगती हैं, लेकिन शरारत जब हद से बढ़ जाए तो मुश्किल होती है। और ऐसे ही बच्चों को सुधारने के लिए चीन के एक स्कूल में एक नई तरह की सजा देना शुरू किया गया है। ये सजा है शरारती बच्चों को माता पिता की भूमिका देना। स्कूल प्रशासन ने उन्हें पूरे एक हफ्ते तक एक 2.5 किलो की गुड़िया दे दी, जिसका ध्यान उन्हें ठीक उसी तरह रखना था जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। अब ये सब बिगड़ैल बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए किया गया, और इस टास्क के बाद उनमें से कई बच्चों ने माना कि बच्चे संभालना वाकई मुश्किल काम है और इसमें पेरेंट्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपके पेरेंट्स ने भी कहा होगा ना कभी न कभी कि जब तुम माता पिता

सुनोगे तब समझोगे, अभी तो तुम कुछ भी बोल देते हो। और ये सही है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी बच्चों के बड़े होने के बाद भी खत्म नहीं होती। वो सिर्फ जन्मदाता नहीं होते, वो पहले गुरु होते हैं, हर कदम पर गाइड करते हैं। और सिर्फ माता पिता ही होते हैं जो बच्चों की जिंदगी के हर मोड़ पर उनके साथ खड़े रहते हैं और अंत तक अपने बच्चों का साथ देते हैं। पेरेंट्स के प्यार और समर्पण के प्रति कृतज्ञ होने के लिए आज का दिन चुना गया है, जो कि है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। इसी के नाम से मनाया जाता है, यानी कि वैसे तो हर दिन पेरेंट्स का दिन होना चाहिए, लेकिन ठीक है, एक दिन भी अगर हम उनको सम्मान देने के तौर पर मना सकते हैं तो क्या बुरा है।

0: मम्मी डैडी ने आपको भी बचपन में कहा होगा ना कि दूध पिया करो, दूध पीने से ताकत आती है। आप दूध पीते भी थे? हम सब पीते थे जब हम छोटे थे। घर में सख्त नियम होता था कि दूध तो पीना ही है, लेकिन आज बहुत सारे लोग दूध और दूध से बने प्रोडक्ट अवॉइड करते हैं। वक्त बदल गया है, माहौल बदल गया है, पर्यावरण बदल गया है, लोगों की शारीरिक अवस्था बदल गई है, लेकिन हम दूध की इम्पोर्टेंस को भूल नहीं सकते। कैल्शियम, प्रोटीन और कई जरूरी पोषक तत्व हमें दूध से मिलते हैं, और इसी महत्व को समझने समझाने और डेयरी उद्योग के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे, जो कि आज है। तो अगर आप भी दूध को अवॉइड करते हैं और आपको दूध सूट भी करता है लेकिन फिर भी आप अवॉइड करते हैं, तो फिर ऐसा ना करें। अगर सूट करता है तो जरूर पीने की कोशिश करें।
1: दिल में जो थोड़ी सी जगह मिल जाए

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ नीतू और ये है म्यूजिकल दिल्लगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक ऐसी राष्ट्रीय योजना है जो असंबद्ध गांवों को अच्छी सड़क संपर्क मुहैया कराने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का मकसद ग्रामीण इलाकों में ऐसी मजबूत सड़क बनाना है जो सभी मौसमों के अनुकूल हो। सड़कें मजबूत होना तो हर मौसम में आवाजाही और दूर दराज की बस्तियों में भी संपर्क आसान हो जाता है। सड़क संपर्क के कारण बेहतर रोजगार के अवसर मिलते हैं। पंचायती राज और चुने हुए स्थानीय प्रतिनिधि तय करते हैं कि कौन सी बस्तियों का चयन किया जाना है। वैसे सड़कें कोई भी हो, दूरियां मिटाने का काम करती हैं, लोगों को आपस में जोड़ते हैं और रास्ते हैं तो मंजिल भी कभी ना कभी मिल जाएगी। इस बात की जो श्योरिटी है वो

आज हम याद कर रहे हैं भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। वो देश के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश के एल्लूर में जन्मे नीलम संजीवा रेड्डी भारतीय राजनीति के एक दिग्गज थे। वो 2 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई विकास कार्यों को उन्होंने लागू किया, खासकर कृषि और सिंचाई के क्षेत्रों में उन्होंने बहुत काम किया। उन्हें 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। एक अथक लोक सेवक के रूप में भारत के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने बहुत से लोगों को प्रेरित किया है।

कुछ साल पहले तक ना लोगों में सेल फोन्स बदलने का बड़ा शौक हुआ करता था, खासतौर पर युवा हर दो साल में अपना महंगा फोन जो है वो बदल लिया करते थे। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि अब जो युवा हैं वो ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। अब वो कम से कम 4 साल तो अपना फोन चला ही लेते हैं, इससे ज्यादा अक्सर लोग चाहकर भी नहीं चला पाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही कुछ सालों में बदल जाती है और आप प्रोफेशनली आउटडेटेड फील करने लगते हैं, या फिर फोन में ही टेक सपोर्ट बंद हो जाता है और ना चाहते हुए भी आपको नया फोन खरीदना पड़ता है। पर यह भी बहुत सुखद है कि जेन ज़ी और उसके बाद वाली जनरेशन भी समझदारी भरे फैसले भी ले रही है। तो ऐसे फैसले और ऐसी जानकारी हम आपको पहुंचाते रहते हैं म्यूजिकल दिल लगी में, और उन्हीं के साथ साथ खूबसूरत सॉन्ग्स भी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो अगला जो गाना आप तक पहुंच रहा है ये कव्वाली है द बर्निंग ट्रेन की।

बात तो सही है। जिंदगी में कब कब हम किससे मिलते हैं, कब हम किससे दूर हो जाते हैं, हमें खुद नहीं पता होता। और ये जो यारी दोस्ती है, आप सोच के देखिए, अपने जीवन पे पिछले नजर डालिए, उसमें अगर आप देखेंगे तो कितने स्कूल फ्रेंड्स हैं जो आज भी आपके साथ हैं, या कितने कॉलेज फ्रेंड्स हैं जो आज भी आपके साथ हैं। तो ऐसा होता है ना, लोग आते हैं और उनका जितना रोल आपकी जिंदगी में होता है उसे अदा करते हैं और फिर आपकी जिंदगी से चले जाते हैं। हाँ, आपको शायद अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है, अब अच्छा लगे ना लगे, जो चीजें होनी होती हैं वो हो जाती हैं। अब जैसे आज के सवाल की बारी है, लगता है आज का सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा लोगों के लिए। मैंने बहुत ही सिंपल सवाल पूछा था कि FM गोल्ड दिल्ली पर श्रोताओं की पसंद के गीतों पर आधारित कार्यक्रम का क्या नाम है। आप श्रोताओं की पसंद के गीतों पर आधारित जो प्रोग्राम है, जो बहुत पहले से चला आ रहा है, पुराना प्रोग्राम है, वो है मन भावन। और बहुत ही आसान सा सवाल था, क्योंकि आप हमेशा ही इस तरह के प्रोग्राम्स में भरपूर शिरकत करते हैं और अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं कि आपकी पसंद का जो गाना है वो सुनवा दिया जाए। तो मनभावन जो जवाब दिया वो सज्जन कुमार जांगड़ा, कार्तिक वेदांश जांगड़ा, नवीन भाटिया, प्रकाश गोगिया, कमल कांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्प राणा, ऋषभ, मनोहर लाल गांधी, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी और रविंद्रनाथ वेदपल्ली ने बिल्कुल सही जवाब दिया। दिल का मेल बॉक्स भी कुछ लोगों ने जवाब दिया है, बिल्कुल, वो भी आपकी पसंद की फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम है, लेकिन वो प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है अक्टूबर 2025 में, लेकिन मन भावन बहुत पहले से चला आ रहा है। तो ये तो बहुत सिंपल जवाब था और मुझे लगा था कि बहुत सारे जवाब आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए कोई नहीं, रोज आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब आप देखते रहिए, कभी ना कभी तो आपका सही जवाब हम तक पहुंच ही जाएगा। अभी नीतू को इजाजत दीजिए, क्योंकि म्यूजिकल दिल्लगी का सफर यहीं तक है। आपसे मुलाकात होती है दिल का मेल बॉक्स में 10:30 बजे। सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात

0: करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा और मतगणना भी उसी दिन की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोक भवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था और इस विस्तार के साथ ही राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। सुमन 1950 से 1970 के दशक की फिल्म संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार तथा तुमने पुकारा और हम चले आए शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेप बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi today. The talks will be held on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. The President of Myanmar will also meet President Draupadi Murmu this evening at Rashtrapati Bhavan. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in New Delhi last evening.

0: 50% से अधिक वोट नहीं मिले दूसरे चरण का मतदान होने की संभावना। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति उम मिन औलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स आज नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद की दूसरी बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बैठक में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने, सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने, रक्षा उद्योग में साझेदारी, सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों पर चर्चा होगी। ये बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी सीडीसी, अफ्रीकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि यह सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजी गई। ये चिकित्सा सहायता कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी हिस्से में राहत कार्यों के लिए भेजी गई है। सीडीसी ने अफ्रीका के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भारत सरकार और लोगों का आभार व्यक्त किया है। भारत और बांग्लादेश 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में द्विवार्षिक महानिदेशक स्तरीय सीमा वार्ता का आयोजन करेंगे। ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद दोनों देशों के बीच पहली बैठक होगी। बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी करेंगे, जबकि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों के अधिकारियों के अनुसार सीमा पर बाड़बंदी, अवैध प्रशासन और कथित सीमा हत्याओं पर चर्चा होने की संभावना है। दोनों पक्ष मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, जल बंटवारे के मुद्दे, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे और ड्रोन घुसपैठ जैसी उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर भी चर्चा कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि दोनों देश व्यापार, जहाजरानी, काउंसुलर मामले और जल संसाधन सहयोग पर चर्चा फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिनमें से लगभग 860 किलोमीटर भौगोलिक बाधाओं के कारण बाढ़ रहित है। 4 दिवसीय बैठक के समापन पर 11 जून को चर्चाओं के संयुक्त अभिलेख पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: नेपाल के सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने 5 दिन की यात्रा पर आज भारत पहुंच रहे हैं। श्री लामिछाने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। उनका नई दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व सहित कई उच्चस्तरीय राजनीतिक और राजनयिक बैठकों में शामिल होने का कार्यक्रम है। वे भारत में नेपाली समुदाय से मिलेंगे और अयोध्या की भी यात्रा करेंगे। उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल में सांसद विपिन कुमार आचार्य, दीपक बोरा, निकिता पौडेल और प्रदीप आचार्य शामिल हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। कोलंबिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। ये चुनाव पिछले कई महीनों से जारी राजनीतिक तनाव के बीच हुआ। मौजूदा राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो संवैधानिक प्रावधानों के कारण दोबारा चुनाव नहीं लड़ सके, इसलिए उन्हें इवान सेपेडा को उत्तराधिकारी उम्मीदवार बनाया है।
2: प्रारंभिक रुझानों के अनुसार दक्षिणपंथी उम्मीदवार एबेलार्डो देला एस्प्रियेला सबसे आगे हैं, जबकि वामपंथी सीनेटर इवान सेपेडा दूसरे स्थान पर हैं। हालांकि किसी भी उम्मीदवार को

0: 50% से अधिक वोट नहीं मिले हैं, इसलिए 21 जून को दूसरे चरण का मतदान होने की संभावना है। इवान सेपेडा राष्ट्रपति पेट्रो की शांति वार्ता नीति को आगे बढ़ाने के पक्षधर हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी एबेलार्डो देला एस्प्रियेला और पालोमा वेलेंसिया अपराध और हिंसा से निपटने के लिए कड़े सैन्य रुख का समर्थन करते हैं। चुनाव परिणाम से कोलंबिया की सुरक्षा नीति, मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ रणनीति और अमरीका के साथ संबंधों की दिशा तय होने की उम्मीद है। विश्व दर्पण के लिए प्राची वाजपेयी।
1: इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में स्थित रणनीतिक महत्व वाले ब्यूफोर्ट किले पर कब्जे का दावा किया है। इजरायली रक्षा बल ने कहा कि ब्यूफोर्ट रिज और वादी अल सलूकी क्षेत्रों में प्रवेश के बाद इस स्थल पर कब्जा किया गया। उन्होंने बताया कि इस कार्यवाही का उद्देश्य क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना और हिजबुल्ला की क्षमताओं को कमजोर करना है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि सेना ने ब्लूफोर्ट किले पर इजरायल का ध्वज फहराया है। उन्होंने इस घटनाक्रम को सरकारी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव बताया। श्री नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने आईडीएफ को लेबनान में कार्रवाई बढ़ाने का निर्देश दिया है। इस बीच इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के निवासियों को चेतावनी दी है कि जहरानी नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों को खाली करने को कहा गया है। और अब खेल समाचार के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया।
3: फॉर अ सेकंड टाइम रनिंग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बैक टू बैक विनर्स ऑफ द टाटा आईपीएल।
2: विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की। वे 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। उधर भारत की महिला फुटबॉल टीम ने गोवा के मरगांव में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-0 से हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। वियतनाम में 17 वर्ष से कम आयु वर्ग की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण 3 रजत और 5 कांस्य पदकों सहित कुल 10 पदक जीते। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटराम ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। भारत की महिला एथलीटों ने 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण और 4x100 मीटर स्पर्धा में रजत पदक, जबकि पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक जीता।
1: वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज शुरुआती कारोबार में 2% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ताजा रिपोर्टों के अनुसार अमरीकी कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $89.73 प्रति बैरल और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $93.28 प्रति बैरल हो गई। इजराइल द्वारा लेबनान में सैन्य कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के फैसले के बाद तेल बाजार में ये उछाल देखा गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओम मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया संवाद की दूसरी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत बांग्लादेश के बीच द्विवार्षिक महानिदेशक स्तर की सीमा वार्ता 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में होगी। कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट नहीं मिले, दूसरे चरण का मतदान होने की संभावना। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं, बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना।

0: नागा है, भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है।
1: पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना,
0: अरे वापस नहीं जाना, जाना जाना, वापस नहीं।

पहली तारीख तो वाकई है, और इस गाने में ना वो पूरा माहौल एकदम से रिक्रिएट कर दिया है, जो कि एक जमाने में तनख्वाह मिलती थी एक तारीख को और तब हुआ करता था कि सिनेमा देखने जाना है तो भी तनख्वाह मिलेगी तब जाएंगे, बच्चों को साइकिल दिलानी है, खिलौने दिलाने हैं, गिफ्ट्स दिलाने हैं तो वो भी पहली तारीख को होगा, श्रीमती जी को साड़ी भी पहली तारीख को दिलाई जाएगी, या घर में कोई भी सामान आएगा तो पहली तारीख को जब तनख्वाह मिलेगी उसके बाद ही आएगा। अगर आपको भी ये गाना पसंद आया है तो फिर आप धन्यवाद दे सकते हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी को, क्योंकि इनकी पसंद पर सुना आपने ये बहुत ही प्यारा सा गाना, जो कि मैंने बहुत दिनों बाद सुना। तो आप सबकी पसंद पर अभी ये गाना हमने सुना। ये है दिल का मेल बॉक्स, आप भी अपनी पसंद हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो जल्दी से ईमेल कर दीजिए fmgoldairdelhi@gmail.com पर। और अब आ रहा है अगला गाना आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, नीतू के साथ हैं आप दिल का मेल बॉक्स में। अगला गाना है दिग्दर्शन कविता कर्ण शक्ति रिया जया और दर्शन भाई की पसंद का, और ये भी बहुत ही प्यारा सा चुलबुला सा गाना है, तो इस गाने का

0: मालूम नहीं है,
1: हमसे सुनो।
2: दिल का मेलबॉक्स सुन रहे हैं आप, और जो अगला गाना आने वाला है वो है मदर इंडिया फिल्म से नरगिस पर पिक्चराइज, और नरगिस के अलावा जितने भी कलाकार हैं उसमें उन सभी पर है, क्योंकि ये ग्रुप सॉन्ग है। बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और इस गाने को सुनना चाहा है राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, महिंदर मोदी और ठाकुर साहब ने।

0: अभी नहीं भूल रही हूँ कि किन लोगों ने ये फरमाइश भेजी थी। सुषमा, सुनील, अनन्या और राजवीर, आपने अपनी पसंद का गाना सुन लिया होगा उम्मीद करते हैं। और अब वक्त हो रहा है कि इस प्रोग्राम से को यहीं पर समेट लिया जाए। तो नीतू को इजाजत दीजिए, ये जो आखिरी गाना आप सुनने जा रहे हैं ये जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल की पसंद का है।
1: दिलों का न पूछो सनम आपका।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह लोकभवन में आयोजित हो रहा है। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स आज नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के दूसरे संवाद की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बैठक में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने, सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने, रक्षा उद्योग में साझेदारी, सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों पर चर्चा होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रूपये से लेकर 53 रूपये 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर शुरू हो गया है तस्वीर। मैं हूं आपके साथ नीतू और आज हम बात करेंगे उस भव्य मंदिर की, उस भव्य जगह की जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला है। गुजरात के प्रभास पाटन में समंदर किनारे है ये भव्य मंदिर, जिसे आक्रमणकारियों ने कितनी ही बार लूटा, लेकिन जितनी बार इसे ध्वस्त किया गया ये उतनी ही बार फिर से अपनी पूरी भव्यता के साथ उठ खड़ा हुआ। सोमनाथ मंदिर, जिसके बारे में माना जाता है कि सोमनाथ के शिवलिंग के उद्भव के साथ ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तो आज की तस्वीर में सोमनाथ को जरा और करीब से जानेंगे। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर

बात हो रही है गुजरात के सोमनाथ की। सोमनाथ मंदिर का जो उल्लेख है वो शिव पुराण में भी किया गया है। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने पहली बार इस मंदिर पर हमला किया था और बुरी तरह ध्वस्त करके इसके सारे कीमती रत्न लूट कर ले गया था। लेकिन जब इसका पुनर्निर्माण कराया गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। इसी तरह जो भी आक्रमणकारी बाहर से आया उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा और राजा महाराजाओं ने इसे फिर से बनवाया। 12 नवंबर 1947 को जब लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण की आज्ञा दी और इसके बाद सोमनाथ मंदिर की देखरेख और पुनर्निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया। 11 मई 1951 में नई संरचना का उद्घाटन हुआ। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, इस पर आप सुन रहे हैं तस्वीर नीतू के साथ।

सोमनाथ मंदिर की बातें हो रही हैं आज आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ तस्वीर में। सोमनाथ मंदिर चालुक्य शैली में बना है और इसके कई खंभे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर जैन वास्तुकला के तत्व भी देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि सोमनाथ के तटवर्ती प्राचीन मंदिर का निर्माण चार चरणों में हुआ था। भगवान सोम द्वारा सोने से, रवि द्वारा चांदी से, भगवान कृष्ण द्वारा लकड़ी से और राजा भीमदेव द्वारा पत्थर से। जो अभी वर्तमान मंदिर है उसके गर्भगृह में है ज्योतिर्लिंग, जिनके दर्शन के लिए आपको लाइन में लगना होगा। मगर लाइन जो है ना वो चलती रहती है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास आपको एक फोटो गैलरी भी मिलेगी, जिसमें प्राचीन मंदिर के खंडहरों, जीर्णोद्धार और उत्खनन की कहानी बताने वाली तस्वीरें हैं।

पौराणिक कथाएं कहती हैं कि सोम यानी कि चंद्रमा को राजा दक्ष ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से चंद्रमा की चमक घटने लगी थी और इसका पृथ्वी पर बहुत बुरा असर पड़ा। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और आखिरकार भगवान शिव यहां प्रकट हुए यानी सोमनाथ, और चंद्रमा को श्राप से मुक्ति दिलाई। कहते हैं कि चंद्रमा के घटते बढ़ते आकार के अनुसार ही समुद्र में ज्वार बढ़ता और घटता है। शहर का नाम भी प्रभास पाटन है। प्रभास का मतलब है चमक, जो कि चंद्रमा से जुड़ी हुई है।

0: मैं डॉक्टर ऋचा सूद, CBSE नेशनल अवार्डी प्रिंसिपल और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट हूँ। 15 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिसमें कि 4 स्वर्ण पदक भी हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होना एक बहुत बड़े गौरव की बात है और हम सभी श्रोताओं के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आकाशवाणी ने, मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर, हर छोटे बड़े पड़ाव पर साथ दिया है और हमें संगीत से जोड़कर जिंदा रखा है। अगर जिंदगी में संगीत की मिठास है तो वो आकाशवाणी की वजह से है, वरना शायद हम सब संगीत को जानते ही ना होते। आकाशवाणी ने हर उस मौके पर, हर उस अवसर पर, हर उस उत्सव पर हमें जिंदा रखा है एक लाइफ लाइन के जैसे, कि जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन है, दिवाली है, या भाई दूज है, या नया वर्ष है, या किसी का जन्मदिन है। कोई भी ऐसा उत्सव जिसमें आकाशवाणी ने हमारा साथ ना दिया हो ऐसा नहीं है। चाहे रोमांस हो या ब्रेकअप हो, पढ़ाई हो या अकेलापन हो, पहाड़ों पर हो, मैदानों पर हो, या घर में हो, और आजकल तो कार में भी आकाशवाणी हमारे साथ ही चलता है। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन ने, जो 70-80 के दशक के लोग हैं, उन्होंने तो संगीत आकाशवाणी से ही सुना है और आज भी हमारा पुराना नाता है। मुझे लगता है कि ये बताना बहुत जरूरी है कि हम भाई बहनों में आकाशवाणी पर गीत सुनने के लिए ट्रांजिस्टर को लेने में, चलाने में और छिपाने में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तो एक बचपन में जो खेल जैसा एक नाता है वो भी है हमारा आकाशवाणी से।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, वो आप अभी सुन रहे हैं नीतू के साथ और ये है तस्वीर। तस्वीर में हम बातें कर रहे हैं सोमनाथ की, और सोमनाथ की यात्रा में आपको कुछ और मंदिर भी मिलेंगे। इनमें गीता मंदिर, तुलसी श्याम मंदिर, भालका तीर्थ, ये सब शामिल हैं। भालका तीर्थ जो है वो जगह है जहां पर श्री कृष्ण को

जरा नाम के एक शिकारी का बाण लगा था और इसी के बाद वो पृथ्वी छोड़कर वैकुंठ लोक चले गए थे। गीता मंदिर वो जगह है जहां निजधाम जाने से पहले उन्होंने विश्राम किया था। गीता मंदिर में जहां 18 संगमरमर के खंभे हैं और उन पर श्रीमद्भगवद गीता का संदेश उकेरा गया है।

0: बताइए ना महाराज।
1: क्या देवी?
0: कौन सी दुविधा आपके चरणों में इनको ले आई? किस चिंता में मगन है दोनों, क्यों आंखें पथराई? ये मरे हुए हैं या जीवित?
1: बस मरने ही वाले हैं देवी। हा? इनका अंत निकट है।

गीता मंदिर के पास ही श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, बलराम जी की गुफा और परशुराम तपोभूमि है। तुलसी श्याम मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ जो काले पत्थर की मूर्ति है वो 3000 साल पुरानी बताई जाती है। इस मंदिर के पास एक गर्म गंधक का झरना है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसमें स्नान करने से त्वचा के रोग ठीक हो जाते हैं। आप जब जा रहे हैं सोमनाथ तो फिर वहां पर एक अहिल्याबाई मंदिर है, वहां भी जा सकते हैं। इसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1782 में कराया था। इस मंदिर में प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितियों में भी भगवान शिव की पूजन परंपरा को कायम रखा गया।

सोमनाथ मंदिर की बातें कर रहे हैं आज हम, सोमनाथ की बातें कर रहे हैं आज हम तस्वीर में। नीतू है आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। सोमनाथ मंदिर गिर सोमनाथ जिले में है। गिर के सुविख्यात जंगल और दुनिया भर में मशहूर सोमनाथ मंदिर से मिलकर गिर सोमनाथ जिले का नाम पड़ा। यहां आप प्रभास पाटन संग्रहालय भी देख सकते हैं जो कि 1951 में स्थापित किया गया था। ये पत्थर की मूर्तियों और पत्थर के शिलालेखों के लिए लोकप्रिय है। सोमनाथ बीच पर आप कई तरह की गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। सोमनाथ में एक त्रिवेणी घाट है जहां हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों का संगम मिलता है। इसी घाट के उत्तरी किनारे पर है सूर्य मंदिर जो कि सूरज देवता को समर्पित है। ये खासतौर पर अपनी वास्तुकला के लिए मशहूर है। इसकी दीवारों पर हाथी और शेर जैसे जानवरों की बेहतरीन मूर्तियां बनी हुई हैं और मंदिर के प्रवेश द्वार पर सूर्य देव की एक तस्वीर है जिसमें उनके सात घोड़े और दो पत्नियां हैं।

सोमनाथ एक तीर्थ है और तीर्थ यात्रा के लिए तो यूं भी कोई भी समय उपयुक्त होता है, मगर मौसम अच्छा होना तो यात्रा का जो मजा है और आनंद है वो बहुत ही आरामदायक हो जाता है, दुगना हो जाता है। और इसीलिए सोमनाथ जाने का सही समय अक्टूबर से मार्च माना जाता है, जब मौसम ठंडक की तरफ बढ़ने लगता है। हवाई यात्रा करना चाहें तो निकटतम हवाई अड्डे हैं जूनागढ़, दीव और राजकोट में। सोमनाथ में रेलवे स्टेशन तो है, तो आप ट्रेन से जा सकते हैं। देश के सभी प्रमुख शहरों से बस सुविधा भी है। आप जो चाहें तरीका अपनाएं और उस तरीके को अपनाकर आप पहुंच सकते हैं सोमनाथ मंदिर। पूरी तस्वीर में आज हमने सोमनाथ मंदिर की बातें की, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। और इसी तरह आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के साथ। अब बढ़ते हैं हम तस्वीर में अगले गाने की तरफ।

बिल्कुल, चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही तो जीवन है। और इसी के साथ नीतू को इजाजत दीजिए, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमा और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमा भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमा के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने मंत्रिपरिषद के 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन कोलकाता के लोकभवन में हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रूपये से लेकर 53.50 रूपये तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रूपये से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजा गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 41 अंक बढ़कर 74,816 पर

लता मंगेशकर की आवाज में भी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी अनुपमा। और श्रोताओं, सबसे पहले बात दिन विशेष की। आज नीलम संजीवा रेड्डी जी की पुण्यतिथि है और आप भारत के जो थे छठे राष्ट्रपति थे। वे देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्हें निर्विरोध चुना गया। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और जनसेवा का प्रतीक माना जाता है। वे आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे और लंबे समय तक भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। उनका व्यक्तित्व शांत, विनम्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित था। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनके योगदान को आदरपूर्ण स्मरण करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म थी जब प्यार किसी से होता है। श्रोताओं, विश्व भर में सभी माता पिता को सम्मानित और उनकी सराहना करने के लिए प्रतिवर्ष 1 जून को वैश्विक माता पिता दिवस मनाया जाता है, जो कि आज मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 में स्थापित यह दिवस बच्चों के पालन पोषण, संरक्षण और सामंजस्यपूर्ण विकास में परिवारों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। यह दिन इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि बच्चों के पालन पोषण की प्राथमिक जिम्मेदारी माता पिता और देखभाल करने वालों की होती है और बच्चे के पालन पोषण के लिए पोषणकारी स्थिर वातावरण प्रदान करने के महत्व पर यह दिन बल देता है। और श्रोताओं, जिस तरह अभिभावक परिवार की नींव होते हैं, उसी तरह बच्चे भी परिवार की नींव को सुदृढ़ बनाने में भागीदारी निभाते हैं, उसमें भागीदार होते हैं। उनकी रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा का ध्यान रखना भी बेहद अहम हो जाता है। और आज बच्चों के हित और उनकी रक्षा के लिए मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। इस दिवस की शुरुआत 1949 में मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की बैठक में की गई थी और इसे पहली बार 1 जून को ही मनाया गया था। यह दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा, बाल श्रम और शोषण को रोकने और उनके सुरक्षित व उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने का जो संकल्प लेने का अवसर वो प्रदान करता है। बच्चे देश के भविष्य हैं, सशक्त बच्चे सुदृढ़ समाज की बुनियाद रखते हैं। तो आइए हम सभी बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके अधिकारों की रक्षा हेतु संकल्प लें और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समाज को उनके अधिकारों, स्वास्थ्य, सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में जागरूक करें।

बूट पॉलिश। अभी आपने इस फिल्म से गीत सुना, आवाज थी मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और साथियों की। श्रोताओं, प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर अब हमारे बीच नहीं रही। उन्होंने हिंदी के साथ साथ मराठी, गुजराती, असमिया, बंगाली सहित विभिन्न भाषाओं में कई गीत गाए। और दोस्तों, खास तौर से 60 और 70 के दशक में उन्होंने अपनी सुरीली आवाज से संगीत जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ी। सुमन कल्याणपुर का जाना निश्चित तौर पर समस्त संगीत प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। भारतीय फिल्म संगीत में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। घर आंगन परिवार सुमन कल्याणपुर को नमन करता है और आइए उनको स्मरण करते हुए सुनते हैं उन्हीं का ही ये गीत।

बात एक रात की। इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज थी सुमन कल्याणपुर की। और श्रोताओं, एक और बात करेंगे दिन विशेष की ही। आज विश्व भर में मनाया जा रहा है दुग्ध दिवस। इसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को पहचानना और पोषण, आजीविका, कृषि और सतत विकास में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र के योगदान को उजागर करना है। प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाने वाला विश्व दुग्ध दिवस दूध के पोषण मूल्य के बारे में जागरूकता फैलाता है और विश्व भर में खाद्य प्रणालियों को सहयोग देने वाले दुग्ध उत्पादकों के प्रयासों को सम्मानित करता है। विश्व दुग्ध दिवस 2026 का विषय महिला किसानों का सम्मान है। यह विषय दुग्ध उत्पादन में महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित है और कृषि, ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा में महिलाओं के योगदान को मान्यता देने के वैश्विक प्रयास के अनुरूप है। यह एक वैश्विक आयोजन है जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने 2001 में की थी। इसका उद्देश्य दैनिक पोषण, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास में दुग्ध के महत्व को पहचानने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। तो श्रोताओं, आज हम उन सभी लोगों का सम्मान करते हैं जो डेयरी व्यवसाय में सतत प्रयासरत हैं और हमारे घरों तक इस संपूर्ण पोषण को लगातार पहुंचा रहे हैं।

प्रीति सागर की आवाज में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी मंथन। श्रोताओं, आकाशवाणी अपने 90 वर्षों का सफर पूरा करने जा रहा है। एक ऐसा सफर जो अथक रहा, जो निरंतर चलता रहा और चलता रहेगा। निरंतर विस्तार और विकास की इस यात्रा में 1990 के दशक तक आकाशवाणी ने देश के कोने कोने में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा दी थी। 2 मार्च 1990 को आकाशवाणी ने अपनी सफलता का एक ऐतिहासिक शतक पूरा किया और आंध्र प्रदेश के वारंगल में इसका 100वां स्टेशन स्थापित किया गया। महज 3 वर्षों के भीतर 1993 में आकाशवाणी ने ओडिशा के बहरामपुर में अपना 150वां स्टेशन भी स्थापित कर लिया। ये उपलब्धि देश में रेडियो प्रसारण के तेजी से फैलते नेटवर्क का प्रतीक थी, जिसने आकाशवाणी को हर कोने तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, जिसने आकाशवाणी को हर कोने तक पहुंचाया। और आज आकाशवाणी हम सभी के दिलों में धड़कता है। आवाजों को विस्तार देता आकाशवाणी आज देश के हर दिल की धड़कन है, धड़कन बन चुका है।

0: भाई भाई। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज थी गीता दत्त की।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
2: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
2: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।
0: श्रोताओं, अब बात एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने साज और सुरों को जीवन में शामिल कर खुद को दी एक नई पहचान और साबित कर दिया कि जीवन चुनौतियों का पर्याय है, पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण और रवैया आपको दे सकता है वो ताकत और हिम्मत जो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है। जी हां, बात करेंगे प्रोफेसर मंगला कपूर जी की। अब ग्वालियर घराने की एक प्रतिष्ठित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर हैं। श्रोताओं, मंगला कपूर जी का जीवन इतना सहज नहीं रहा। मात्र 12 साल की उम्र में पारिवारिक विवाद के चलते उन पर एसिड अटैक कर दिया गया और यहां से शुरुआत हुई उस संघर्ष की जो कठिन था, जिसका दर्द असहनीय था। उन्होंने 6 साल अस्पतालों में बिताए और 37 सर्जरी करवाई। आघात शारीरिक और मानसिक दोनों ही था। समाज की अवहेलना भी कहीं ना कहीं मानसिक कुठाराघात कर रही थी, पर मंगला जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी शिक्षा और संगीत के प्रति अपने जुनून को नहीं छोड़ा और सुरों को साधना शुरू किया। PhD की उपाधि प्राप्त की और BHU में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हो गई। अब जीवन संगीत, सुर साधना, राग आलाप के साथ चलने लगा। उन्होंने दुर्लभ भारतीय रागों का संरक्षण करना शुरू किया और उनके इस काम को सराहना मिली और सम्मान भी। इस उपलब्धि ने उन्हें काशी की लता की उपाधि दिलाई। उन्होंने संगीत को केवल आत्मसंतुष्टि और प्रस्तुति का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का साधन भी बनाया। मंगला कपूर जी बच्चों को मुफ्त संगीत शिक्षा प्रदान करती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि बच्चों की संगीत सीखने के मार्ग में कोई रुकावट ना आए। उनकी असाधारण दृढ़ता, साहित्यिक उपलब्धियां और संगीत क्षेत्र में योगदान को सराहाया गया और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मंगला जी का जीवन श्रोताओं एक मिसाल है और हम सभी के लिए

प्रेरणा का स्रोत भी है कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, पर उन चुनौतियों का सामना करने वाला व्यक्ति ही आसमान की बुलंदियों को छूता है, जैसा कि मंगला जी ने किया। आप वाकई हमारे लिए एक प्रेरणा हैं।

मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी लाल पत्थर। श्रोताओं, हमारी संस्कृति और परंपराओं में भगवान की पूजा, उनके विग्रह की पूजा की जाती है। हम अपने ईष्ट की प्रतिमा को घर में, अपने मंदिर में प्रतिष्ठित करते हैं, उन्हें एक निश्चित स्थान देते हैं। पर इन प्रतिमाओं के खंडित होने पर हम इन्हें जल प्रवाहित या किसी पेड़ के नीचे या फिर मंदिर में अपने ईष्ट को छोड़कर आ जाते हैं, जो कहीं ना कहीं ठीक बात नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार ने अब एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि अब खंडित मूर्तियों को आपको इधर उधर छोड़ने की जरूरत नहीं है और मूर्तियों को

जो है अब इन मूर्तियों को रिसाइकिल किया जाएगा और जिसके लिए विशेष सेंटर बनाने की घोषणा की है। श्रोताओं, इन सेंटर्स को मुख्य रूप से मंदिरों, नदियों और नहरों के पास खोलने की योजना बनाई जा रही है ताकि हम आसानी से अपनी मूर्तियों को वहां पर जमा कर सकें। अब भविष्य में आपको अपने घर की जो मूर्तियां हैं, जो विग्रह टूट गए हैं, वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनको इधर उधर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये बता दें कि इस योजना के अंतर्गत क्या क्या होने वाला है। जैसा कि बताया कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर विशेष कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे और लोग अपनी मूर्तियों को वहां पर जमा कर सकेंगे। इन मूर्तियों को आप इधर उधर फेंकेंगे नहीं, तो जहां पर आप इन्हें जमा करेंगे, जिस संग्रह सेंटर में आप इनको जमा करेंगे, वहां पर वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकिल करके इन मूर्तियों को उपयोगी चीजों में बदला जाएगा। सरकार आम जनता से कलेक्शन सेंटर के लिए जगह और बेहतर सुझावों पर भी राय ले रही है, तो अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने सुझाव वहां पर दे सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं।

आशा भोंसले की आवाज में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी काजल। और श्रोताओं, कार्यक्रम घर आंगन है। हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और आपको हमारा ईमेल आईडी मालूम है, एक बार फिर से मैं

बता देती हूँ हमारा ईमेल आईडी जो कि है fmgoldga@gmail.com। जी हाँ, fmgoldga@gmail.com। और श्रोताओं, अब बात कुछ मौसम की, गर्मी के मौसम से जुड़ी हुई और हमारे खान पान से जुड़ी हुई, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो खान पान होता है उसका बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में हम गरिष्ठ भोजन यानी कि जो भारी खाना होता है उसको खाने से बचते हैं और हमें जरूरत होती है हल्के पौष्टिक भोजन की। स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज एक बेहतर विकल्प होता है इस मौसम के लिए, क्योंकि सुबह सुबह अगर आपको नाश्ते में स्प्राउट्स का एक बॉल मिल जाए तो वो एक कंप्लीट मील भी होता है और जो आपको पूरा दिन एनर्जी से, ऊर्जा से भर के रखता है। और साथ ही साथ ये पोषण से भरपूर तो होते ही हैं जो अंकुरित अनाज होते हैं, तो इनकी इस खासियत को देखते हुए अंकुरित अनाज को अगर सुपर फूड कहा जाए तो वो कोई दोहराए वाली बात नहीं होगी। और कहा भी जाता है कि स्प्राउट्स खाना जो है वो सेहत के लिए काफी अच्छा है। सबसे खास बात ये कि इनमें जो प्रोटीन होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, साथ ही साथ मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और फाइबर भी होते हैं इन अंकुरित अनाजों में, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। और एक उम्र के साथ हमें अपने डाइट में, अपने भोजन में प्रोटीन की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो जो हमारा वियर टियर होता है कोशिकाओं का, यानी कि जो हमारी कोशिकाएं बनती बिगड़ती हैं उनको रीजेनरेट करने में, उनके पुनर्निर्माण में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। अंकुरित अनाज में आप मूंग दाल को अंकुरित करके खा सकते हैं, मोठ दाल को खा सकते हैं, चना, काला चना भी बहुत अच्छा प्रोटीन का स्रोत होता है, क्योंकि इनमें हाई लेवल का फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ स्प्राउट्स में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है वो बढ़ती है। और सबसे खास बात यह है श्रोताओं कि वेट लॉस की इच्छा रखने वाले लोग इसे अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलोरीज कम होती है। जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि फाइबर से भरे हुए होते हैं, तो वेट लॉस जर्नी में आपके लिए बहुत ज्यादा सहायता करने में ये काम आ सकते हैं। और क्योंकि फाइबर आप जितना खाएंगे तो आपको भूख कम लगेगी और आपका वजन कम होता जाएगा। और जरूरी बात यह कि अंकुरित अनाज ब्लड शुगर लेवल को सही रखने में भी मदद करते हैं। अंकुरित अनाज में प्रोटीन तो है ही है, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट भी है जो दिन भर शरीर में एनर्जी बनाए रखते हैं। तो देखा है ना कमाल कि ये अंकुरित अनाज, तो आज से ही अपनी डाइट में अंकुरित अनाज को जगह दें और पाएं एक बेहतर सेहत।

हीर रांझा फिल्म से आप ये गीत सुन रहे हैं, आवाज है लता मंगेशकर की। और श्रोताओं, वक्त हो गया है मेरे चलने का, तो मुझे दीजिए

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रूपये से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रूपये से लेकर 53 रूपये 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President Aung San Suu Kyi are holding bilateral talks in New Delhi. The talks aim to further strengthen the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, is likely to come up for discussions during their talks. The Myanmar President arrived in Gaya in Bihar on Saturday on a 5-day visit to India. He will also travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. Our correspondent has the details.
1: The President of Myanmar will meet President Draupadi Murmu today evening at Rashtrapati Bhavan. He is also scheduled to visit to the Light and the Lotus, relics of the Awakened One exhibition at Rai Pithora Cultural Complex in the National Capital. The exhibition is showcasing the sacred Piprahwar relics associated with Lord Buddha along with significant associated antiquities. The official visit of the President of Myanmar to India is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries. With Suparna Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
2: The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. In an article published in a national daily, Mr. Goyal said the agreement immediately gives 100% duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines, covering 99.38% of exports. Gross goods and services tax, GST, collections rose 3.2% to over 1,94,000 crore rupees last month on improved supplies of goods and services and continued expansion of collection from imports. The gross GST collection in May last year was 1,88,000 crore rupees. Gross central GST collection from domestic transactions last month stood at 37,397 crore rupees, state GST at 45,143 crore rupees, and integrated GST at 51,990 crore rupees. Taxable supplies of goods grew 26.9% during the reported period, reflecting domestic demand, while the same for the services sector grew 22.2%, demonstrating structural resilience in domestic consumption. Notification was issued today for biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज कलाकार बेमिसाल में हम याद कर रहे हैं एक ऐसी गायिका को जिन्होंने उस दौर में अपनी पहचान बनाई जब लता मंगेशकर का सितारा बुलंदी पर था। आज हम सुमन कल्याणपुर की बातें करने वाले हैं, साथ ही सुनेंगे उनके गाए कुछ बहुत ही खूबसूरत गीत।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में जब जब फूल खिले फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना बिल्कुल अभी। दोस्तों आज हम बातें कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर की। सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को हुआ था। उनके जीवन का एक बहुत ही लंबा वक्त ढाका में बीता, लेकिन उनका जो पैतृक गांव है वो कर्नाटका में है जिसका नाम है हेमाड़ी। वैसे शायद आप जानते हो कि सुमन कल्याणपुर को बचपन में सुमन हेमाड़ी नाम दिया गया था और बाद में उनकी शादी मुंबई के रामानंद कल्याणपुर से हुई, जिसके बाद उन्हें सुमन कल्याणपुर के नाम से जाना जाने लगा। और भी कई बातें हैं जानी अनजानी उनके बारे में बताऊंगी, लेकिन साथ ही साथ उनके गाए बहुत ही खूबसूरत गाने सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड 90.4।

सुमन कल्याणपुर की बात हम कर रहे हैं कि किस तरह से उनके करियर की शुरुआत हुई। दोस्तों, सुमन कल्याणपुर की जो परवरिश है वो एक बेहतरीन माहौल में हुई। उन्हें गाने का शौक था, इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें संगीत की शिक्षा दिलवाई। सुमन कल्याणपुर ने उस्ताद खान अब्दुल रहमान खान और गुरुजी मास्टर नारंग से संगीत सीखा। वैसे ये जानने के बाद शायद आपको हैरानी हो कि सुमन कल्याणपुर को संगीत में करियर नहीं बनाना था, वो बस सीखना चाहती थी संगीत, क्योंकि उन्हें तो चित्रकार बनना था। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि संगीत सीखते सीखते उन्हें सुर और ताल से मोहब्बत हो गई और उनका झुकाव पूरी तरह से संगीत की तरफ हो गया।

0: Daily Law के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme, Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
7: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
6: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी, आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बातें कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर की। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सुमन कल्याणपुर को गायिका बनने के लिए अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ा। मसला सीखने और गाने का नहीं था, बल्कि मसला था परिवार की तरफ से इजाजत मिलने का। उनके परिवार में संगीत सीखने पर कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन पब्लिक के सामने गाना गाना बिल्कुल मना था। सुमन शुरू से ही बहुत अच्छा गाती थी। अब ऐसे में

ये गाना कभी भी आप शाम के वक्त सुनिएगा, आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा इस गाने में। वैसे तो इसे कभी भी सुन सकते हैं, सुबह भी अच्छा लगता है, दोपहर में भी अच्छा लगता है। ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। शगुन है फिल्म का नाम जिससे इस गीत को लिया है मैंने आज, और बहुत ही प्यारा गीत है ये। फिल्म ये 1964 में रिलीज़ हुई थी। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर के करियर के बारे में, कैसे वो आगे बढ़ी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके परिवार में सख्त मनाही थी पब्लिक में गाने की, लेकिन रास्ता बनता है, जहां चाह होती है वहां राह भी मिलती है। तो दोस्तों, आकाशवाणी से उन्हें गाने का न्योता मिला। इसके बाद सुमन कल्याणपुर के परिवार ने उन्हें परमिशन दे दी इस दिशा में आगे बढ़ने की। ये साल 1952 की बात है। यहां तो जैसे किस्मत इंतजार में थी, आकाशवाणी पर गाने के तुरंत बाद सुमन को एक मराठी फिल्म में गाने का मौका मिला। फिल्म का नाम था शुक्राची चांदनी। गाने लोकप्रिय रहे, जिन्हें सुनने के बाद उस जमाने के जाने माने फिल्मकार शेख मुख्तार ने सुमन को मंगू नाम की हिंदी फिल्म में गाने के लिए बुलाया। सुमन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस तरह से सुमन कल्याणपुर हिंदी सिनेमा से जुड़ गई। अब एक गाना इस प्रोग्राम में मैं जोड़ने वाली हूँ, आपको सुनाने वाली हूँ। ये एक ऐसा गाना है जो खास तौर से सुमन कल्याणपुर के लिए याद किया जाता है। उनका एक आइकॉनिक गाना है नूर महल फिल्म से। वैसे आप समझ गए होंगे कौन सा गाना है।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बातें कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर की।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक और बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना, मोहब्बत मोहब्बत इसी को कहते हैं फिल्म से। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर की। सुमन कल्याणपुर ने अपने दौर के करीब करीब हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया। उन्होंने शंकर जयकिशन, रोशन, ओपी नैयर, एसडी बर्मन साहब, एन दत्ता, हेमंत कुमार और गुलाम मोहम्मद आदि के साथ यादगार गीत रिकॉर्ड किए। हिंदी फिल्म संगीत से जुड़ी कई हस्तियां सुमन कल्याणपुर को बहुत पसंद करती थीं। तलत महमूद तो उनसे खासे प्रभावित थे। वैसे सुमन कल्याणपुर खुद लता मंगेशकर की प्रशंसक रहीं और मोहम्मद रफी उनके पसंदीदा सिंगर रहे।

हम भी यूं ही प्यार करते रहेंगे सुमन कल्याणपुर को। दोस्तों 1964 में रिलीज हुई फिल्म अप्रैल फूल से ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। जरा सोचिए कि जिस जमाने में लता मंगेशकर गा रही हो उस जमाने में अपनी जगह बनाना कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा, लेकिन सुमन कल्याणपुर ने अपनी अलग पहचान बनाई। अपने संपूर्ण करियर में उन्होंने 740 के करीब गाने गाए जिनमें फिल्मी और नॉन फिल्मी दोनों शामिल हैं। हिंदी के अलावा उन्होंने मराठी, बंगाली, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, राजस्थानी, उड़िया और पंजाबी भाषा के गीतों को भी आवाज दी। हिंदी फिल्म संगीत के लिए अपने योगदान के लिए सुमन कल्याणपुर को साल 2025 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही, लेकिन अपने गीतों के जरिए वो हमेशा हमें याद आती रहेंगी।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फर्स्ट फिल्म का एक गीत आपको सुनाया मैंने बिल्कुल अभी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। फिलहाल तो वक्त हो चला है मेरे जाने का, लेकिन आप जुड़े रहें आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू में खबरें। अपना ख्याल रखिएगा।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में दोतरफा बातचीत की है। भारत और ओमान के दरमियान जामे इक्तसादी साझेदारी समझौता नाफिज हो गया है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शोभेंदु अधिकारी ने 35 नए वजीरों को शामिल करके काबीना में तौसी की है। मई के महीने में जीएसटी की मजमुई वसूलियाबी बढ़कर 1,94,000 करोड़ रूपये तक पहुंच गई, जिसमें बरामदात से होने वाली वसूलियाबी में इजाफे का अहम रोल है। पीएम स्वनिधि स्कीम को 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मस्कूरा स्कीम से रेहड़ी पटरी वालों के लिए तरक्की के नए मौके दस्तियाब हुए हैं। अमरीका ने ईरान में रडार और ड्रोन कंट्रोल मराकज पर हमले किए हैं, जिससे मगरबी एशिया खत्ते में कशीदगी फिर से बढ़ गई है। और हांगकांग में 20 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 10 तमगों समेत 19 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में दोतरफा बातचीत की है। इस बातचीत का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी राब्तों को मजीद मुस्तहकम करना है। भारत और म्यांमार के दरमियान वसीतर शोबों में अच्छे ताल्लुकात हैं, जिनमें सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी शामिल हैं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कल शाम नई दिल्ली में म्यांमार के सदर से मुलाकात की थी। म्यांमार के सदर ने म्यांमार भारत कारोबारी फोरम से भी खिताब किया था। वह भारत के 5 रोजा दौरे के तहत हफ्ते के रोज बिहार के गया पहुंचे थे। म्यांमार के सदर कल मुंबई भी जाएंगे, जहां वो कारोबारियों और सनअतकारों से बातचीत करेंगे और मुख्तलिफ मकामात देखने जाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: म्यांमार के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। उनका कौमी राजधानी के राय पिथौरा सकाफती कॉम्प्लेक्स में एक नुमाइश देखने का भी प्रोग्राम है। इस नुमाइश में गौतम बुद्ध से वाबस्ता पवित्र पिपरावा बाकियात को रखा गया है और उसके साथ साथ इससे वाबस्ता कुछ कदीमी चीजें भी नुमाइश के लिए रखी गई हैं। म्यांमार भारत की पड़ोस मुकदम मशरकी मुल्कों से रबते बढ़ाने और महासागर पॉलिसियों के सिलसिले में अहम मकाम रखता है। सदर ऊ मिन आउं लाइन के भारत के दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर रुखिस ताल्लुकात के मजीद मुस्तहकम होने का इम्कान है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: भारत ओमान जामे इक्तसादी शराकतदारी मुआहिदा सेपा आज से नाफिज हो गया है। कॉमर्स और तिजारत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि यह मुआहिदा दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तसादी और किलीदी राबतों को मुस्तहकम करेगा। एक कौमी रोजनामे में शाये एक मजमून में जनाब गोयल ने कहा कि इस मुआहदे से खासतौर से मुल्क के तलबा, दस्तकारों, खवातीन, किसानों, माहीगीरों और एमएसएमई इदारों को फायदा होगा और इसके तहत नए बाजारों तक रसाई मुमकिन हो पाएगी, बरामदात को फरोग हासिल होगा, सरमायाकारी रागिब होगी और रोजगार के मौके पैदा होने में तेजी आएगी। भारत के ओमान के साथ गहरे इक्तसादी और अवाम से अवाम के दरमियान रबते हैं, जहां तकरीबन 7 लाख भारतीय आबाद हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि ओमान में आबाद भारतीय शहरी सालाना $2 अरब की रकम अपने घरों को भेजते हैं, जबकि 6,000 से ज्यादा भारतीय कंपनियां वहां काम करती हैं।

0: रही हैं। 10 रियासतों में राज्यसभा की 24 सीटों के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हर 2 साल बाद होने वाले इस चुनाव के तहत पोलिंग इस महीने की 18 तारीख को होगी। इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट शामिल है। साबिक वजीर आजम और जेडीएस के रहनुमा एचडी देवेगौड़ा, मरकजी वजीर और बीजेपी के लीडर जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह, राज्यसभा में ओपोजिशन के रहनुमा और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे उन अरकान में शामिल हैं जिनकी रुकनियत की मुद्दत इस महीने मुकम्मल हो रही है। होटलों, रेस्तरां और दीगर कारोबारी इदारों में इस्तेमाल होने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 4 बड़े शहरों में 42 रूपये से लेकर 53 रूपये 50 पैसे का इजाफा किया गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की शरहों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रूपये का इजाफा किया गया है और अब यह 3,113 रूपये 50 पैसे का मिलेगा। मुंबई में इसकी कीमत 43 रूपये 50 पैसे बढ़ गई है और वहां कमर्शियल सिलेंडर के लिए 3,067 रूपये 50 पैसे देने होंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की सरबराही वाली काबीना ने 35 नए वजीरों को शामिल करके तौसी की गई है। रियासत के गवर्नर आर एन रवि ने कोलकाता में लोकभवन में वजारती कौंसिल के नए अरकान को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तपस रॉय और शंकर घोष उन अरकान असेंबली में शामिल हैं जिन्हें काबीना वजीर की हैसियत से हलफ दिलाया गया है। नए वजीर रियासत के मुख्तलिफ खित्तों की नुमाइंदगी करते हैं और इसमें तजुर्बेकार अरकान असेंबली के साथ साथ पहली बार वजीर का ओहदा संभालने वाले अरकान भी शामिल हैं। सामान और खिदमात टैक्स जीएसटी की मजमूई वसूलियाबी में गुज़श्ता महीने 3.2% का इजाफा हुआ और यह 1,94,000 करोड़ रूपये से तजावज कर गई। सामान और खिदमात की फराहमी में बेहतरी, नीज दरामदाज से होने वाली वसूलियाबी लगातार बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है। पिछले साल मई के महीने में जीएसटी की मजमूई वसूलियाबी 1,88,000 करोड़ रूपये थी। रेहड़ी पटरी वालों से मुतालिक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि स्कीम को आज 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। मस्कूरा स्कीम से पिछले 6 साल में लाखों रेहड़ी पटरी वालों को कर्ज हासिल करने और अपनी रोजी रोटी को बरकरार रखने में सहूलत हुई है। मस्कूरा स्कीम की सताइश करते हुए वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आसान कर्जों की फराहमी, माली शमूलियत और तरक्की के लिए नए मौकों को यकीनी बनाकर पीएम स्वनिधि स्कीम से बेशुमार रेहड़ी पटरी वालों की जिंदगी बदल गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मस्कूरा स्कीम के तहत सूद में सब्सिडी और कर्ज गारंटी मदद के साथ 3 मरहलों में 15,000, 25,000 और 50,000 रूपये के कर्जे फराहम किए जाते हैं। इस पहल से मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में 75 लाख से ज्यादा मुतालिक अफराद को फायदा हुआ है। मस्कूरा स्कीम के तहत 17,800 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत के कर्जे फराहम किए गए हैं। इस स्कीम के तहत 55 लाख से ज्यादा अफराद डिजिटल तरीके से इसमें शामिल हुए हैं। मजमूई तौर पर मुस्तफीद होने वाले अफराद ने 841 करोड़ से ज्यादा डिजिटल लेन देन किए हैं जिनकी मालियत तकरीबन 8,96,000 करोड़ रूपये है। पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत मुतालिक अफराद को डिजिटल कैश बैक तरगीबात और सूद में रियायत के जरिए तकरीबन 800 करोड़ रूपये भी मौसूल हुए हैं। स्कीम की मुद्दत मार्च 2030 तक के लिए बढ़ा दी गई है। दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए शमीम इरफान।
0: अमरीका ने खत्म हफ्ता पर ईरान के रडार और ड्रोन कंट्रोल मराकज पर हमले किए हैं जिससे मगरबी एशिया खत्ते में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। बैन अल्कवामी आबी हदूद के ऊपर परवाज करने वाले अमरीका के MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन को ईरान की जानिब से मार गिराए जाने के बाद अमरीका ने यह फौजी कार्रवाई की है। ईरान ने जवाबी हमला करने की बात कबूल की है और उधर कुवैत ने कहा है कि उसके फिजाई दिफाई निजाम के जरिए मिजाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया जा रहा है। हालिया हमलों से जंगबंदी के कमजोर होने का इशारा मिलता है। कशीदगी में लगातार इजाफा हो रहा है क्योंकि इसराइल ने लितानी दरिया से भी आगे तक लिबनान में अपना कब्जा बढ़ा दिया है। हांगकांग में 20 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 10 तमगों समेत 19 तमगे जीते हैं। इस तरह भारत ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया और मजमू एतबार से दूसरे मकाम पर रहा। भारत को चांदी

के 5 और कांसे के 4 तमगे भी मिले। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19 तमगे जीतने पर भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर ऊ मिन आउंग लाइन ने नई दिल्ली में दोतरफा बातचीत की है। भारत और ओमान के दरमियान जामे इकतसादी साझेदारी समझौता नाफिज हो गया है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने 35 नए वजीरों को शामिल करके काबीना में तौसी की है। मई के महीने में जीएसटी की मजमूई वसूलियाबी बढ़कर 1,94,000 करोड़ रूपये तक पहुंच गई, जिसमें दरामदाज से होने वाली वसूलियाबी में इजाफे का अहम रोल है। पीएम स्वनिधि स्कीम को 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मस्कूरा स्कीम से रेहड़ी पटरी वालों के लिए तरक्की के नए मौके दस्तियाब हुए हैं और हांगकांग में 20 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 10 तमगों समेत 19 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement comes into force, gives Indian exporters duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari expands cabinet with induction of 35 new ministers. Gross GST collection rises to over 1,94,000 crore rupees in May. PM Swanidhi scheme completes 6 years. Prime Minister Narendra Modi says scheme opened new growth opportunities for street vendors. And India ends impressive campaign at Asian Under 20 Athletics Championships with 19 medals, including 10 gold in Hong Kong. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रूपये से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
2: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
3: यह मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताएं, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफिन नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
1: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक

0: साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष।

0: प्राची वाजपेयी।
1: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देशभर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रूपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113 रूपये 50 पैसे होगी। मुंबई में 43 रूपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067 रूपये 50 पैसे होगी। कोलकाता में 53 रूपये 50 पैसे की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255 रूपये 50 पैसे होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रूपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रूपये होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमरीका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमरीका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
3: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
1: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी का ये FM गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं इसे। और अब कार्यक्रम उन्नत किसान में स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं हूँ आपके साथ आरती।
1: और मैं हूँ आपके साथ राहुल।
0: जी बिल्कुल। और देखिए, हमारे किसान मित्रों की अगर हम बात करें तो जो धान की फसल होती है उनके लिए बहुत ही ज्यादा अहम होती है, क्योंकि एक बड़े क्षेत्र में उसे उगाया जाता है। बहुत से किसान इस खेती के साथ जुड़े होते हैं, तो धान से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं, किस तरह से खेती कर सकते हैं, कौन कौन सी किस्में होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, आज इसी विषय पर हम लेकर आए हैं, बातें होने वाली है।
1: क्योंकि आज का विषय है धान की उन्नत किस्में, नर्सरी और पोषक तत्व प्रबंधन। और जैसा कि आपने धान की बात की, महत्वपूर्ण फसल है और बहुत बड़े इलाके में इसकी जो है इसको उगाया जाता है, तो हमारे लिए ये भी जानना बहुत गौरवान्वित करने वाला होगा कि वर्तमान समय में भारत जो है धान का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है। बहरहाल, हम आपको ये भी बता दें कि आज हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर यशवीर सिंह शिवे जी। आप सहायक महानिदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार जी, मेरी तरफ से भी सभी किसान बहनों भाइयों को नमस्कार।
0: और साथ ही आपको बता दें, फोन इन कार्यक्रम है जिसमें आप फोन करके धान से जुड़ी जो भी चीज है, अगर आपको खेती करने में कोई समस्या आ रही है या आप शुरू करना चाहते हैं या इस समय पे आपको क्या करना चाहिए धान से जुड़ा हुआ अपने खेतों में, इस विषय पे कोई पूछताछ करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप फोन कर सकते हैं 011 दिल्ली का स्टडी कोड, इसके बाद आप नंबर डायल करें 2342108183। एक और फोन नंबर है
1: 2342108183।
0: जी बिल्कुल। और राहुल, वैसे हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत अपने विषय पर आए, इससे पहले एक और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज है।
1: बिल्कुल, आज है विश्व दुग्ध दिवस
0: जी,
1: और वर्ल्ड मिल्क डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम क्या दुनिया कर रही है, और मैं चूंकि यहाँ पर डॉक्टर यशवीर जी भी हमारे साथ हैं, सर आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए। और मैं सर जब हम पढ़ते थे जनरल नॉलेज, तो एक हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था, मिल्कमैन ऑफ इंडिया का नाम बताइए, तो वो मुझे बस केवल याद है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम मुझे याद आ रहा है उस जीके के क्वेश्चन की वजह से, कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन भारत के लिए।
2: देखिये, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर वर्गीस कुरियन जो थे, मिल्कमैन ऑफ इंडिया जाना जाता है
1: जी,
2: उन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत रिवोल्यूशन किया
1: जी,
2: और आज की डेट में हम सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं और कंजम्पशन भी करते हैं
1: जी,
2: दोनों तरीके से ही जो है, मतलब वो हमारा इम्पोर्टेंस है दूध की। और इस तरीके से भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि मिल्क के जो बहुत सारे उत्पाद आजकल मिलते हैं
1: जी,
2: जो पहले नहीं बनते थे, तो मिल्क ने जो है, हमारे मिल्क के प्रोडक्शन ने हमारे जो खाद्यान्न के साथ साथ जो है मिल्क प्रोडक्शन में भी आत्मनिर्भरता की है, तो उसके पीछे प्रोफेसर वर्गीस कुरियन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने एक कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू किया था
1: जी,
2: वो सभी जगह रेप्लिकेट हो गया है
1: जी,
2: वो गुजरात से शुरू हुआ था लेकिन अब हर एक स्टेट में जो है अपना एक ब्रांडिंग है, अपना एक मिल्क का पूरी चेन है
1: जी,
2: तो उस हिसाब से मिल्क का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस उनको जाता है।
1: और मुझे लगता है आप जैसा कह रहे हैं, ये पूरा मॉडल जो है भारत के साथ साथ अब दुनिया भर के और भी देशों में अपनाया जा रहा है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब भारत शायद डेफिशिएंट कहलाता था दूध के क्षेत्र में, और डॉक्टर वर्गीस के प्रयासों से ये बेहतर हो पाया जैसा आपने बताया। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। और अब आरती, हमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए क्योंकि धान की उन्नत किस्मों के बारे में भी हमें जानना है।
0: बिल्कुल, बहुत सारी बातें हम अपने कार्यक्रम उन्नत किसान या किसान की बात इनमें लेकर आते हैं, और यही जानकारी हमारे सभी श्रोताओं को जरूर भाती है, तो आप फोन कर सकते हैं। फोन नंबर आपको बता चुके हैं, जब तक आपके फोन कॉल्स आते हैं सर आपसे हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि हमें भी बहुत जिज्ञासा रहती है कि अगर धान की उन्नत किस्में, नर्सरी, पोषक तत्व प्रबंधन, इस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम धान की जो एक सर कितने किस स्तर पर इसे नापा जाए कि जो खेती में हमारे किसान मित्र जुड़े हैं, तो क्या पैमाना है इसका कि कितने परसेंट अगर कहें जुड़े हैं, और इसकी खेती कितने हद तक भारत में बहुत ज्यादा होती है, मध्यम होती है, किस स्तर पर है?
2: देखिए, धान जो है एक जीवन का अभिन्न अंग है
0: जी।
2: जैसे मैं कहूँ कि मतलब जन्म, शादी, मृत्यु, तीन जो स्टेज होती हैं उसमें धान का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो हम जो है खील बतासे बांटते हैं
1: जी।
2: और शादी होती है तो चावल मतलब बखेरते हैं, और फिर अंतिम संस्कार में भी, तो एक मैं ये कह सकता हूँ चावल जो है हमारी जो है एक भारत के अंदर जो है बहुत महत्वपूर्ण खाद्यान्न की क्रॉप है। इसके साथ साथ हमारे रिचुअल्स और इन सब में जो है इसका महत्वपूर्ण योगदान है या महत्व रखता है। और चावल की जो लास्ट ईयर जो अभी एस्टिमेट आया हमारा 156 मिलियन टन के आसपास हमारी पैदावार हुई है, तो ये हम नंबर वन है आज की डेट में चावल में पैदावार में
0: जी।
2: और लगभग ये 44-45 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसकी खेती की जाती है और हर एक प्रदेश के अंदर इसकी खेती की जाती है लगा के, मतलब हमारे जो है राजस्थान से लेकर केरल तक सब जगह इसकी खेती की जाती है, कोई स्टेट ऐसा नहीं है कि जहां इसकी खेती ना की जाती हो
1: जी।
2: और 2-3 सीजन में इसकी खेती की जाती है, लेकिन ये जो सीजन है खरीफ का सीजन ये मुख्य सीजन माना जाता है, दूसरे सीजन्स में भी उगाते हैं और सैमन राइस वगैरह उधर नॉर्थ ईस्ट में, थोड़ा असम वगैरह वेस्ट बंगाल में करते हैं, लेकिन जो खरीफ का धान है इसकी अलग ही महत्व है। और इसमें जो है लगभग ये समझ लीजिए कि मैं ये कह सकता हूँ 80% इसी का कंट्रीब्यूशन होता है, 80-85%, बाकी जो दूसरे सीजन में धान होता है वह उसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये एक हमारा खाद्यान्न के लिए नहीं बल्कि हमारे को विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भी धान एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और हर साल जो लगभग हम 50-60 करोड़ रुपीज का हम जो है चावल एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब विदेशी मुद्रा भी अर्जित करते हैं हम
1: जी।
2: तो धान जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है भारत में और इसके लिए जरूरी है कि किसान भाई जो इसको अच्छे ढंग से अपनी प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करते हुए और जहां जैसी स्थिति हो उसी के अनुसार इसकी खेती करने की जरूरत पड़ती है
0: जी। जी, जी
1: तो ऐसे में तो फिर हमें ये भी जान लेना चाहिए कि इसकी उन्नत किस्में कितने प्रकार की हो सकती हैं।
2: हाँ, उन्नत किस्में देखिए इसकी जो है बासमती टाइप की होती है, नॉन बासमती टाइप की होती है और हाइब्रिड भी होती है और लंबी अवधि की भी होती है, मध्यम अवधि की भी होती है, कम अवधि में भी पकने वाली होती है। डिफरेंट तरीके से इनको क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में ज्यादातर जो है बासमती पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जम्मू कश्मीर यहाँ पर बासमती की खेती ज्यादा होती है। और बासमती में बहुत सारी किस्में आती हैं जो हमारे पूसा संस्थान ने भी निकाली हैं और अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग कृषि विश्वविद्यालयों से भी निकाली गई हैं। विशेषकर पूसा बासमती हमारी नंबर वन है, पूसा बासमती हमारी 1121 है, पूसा बासमती 1509 है, पूसा बासमती 1692 है, पूसा बासमती 1847 है, पूसा बासमती 1885 है, पूसा बासमती 1886 है। और इसके साथ साथ दो ऐसी किस्में निकाली गई हैं वो नॉन जीएम क्रॉप है लेकिन वो जो हर्बिसाइड टॉलरेंट है, पूसा बासमती 1979, पूसा बासमती 1985 जो एमेटोपायर को मतलब रेसिस्टेंट है, एक हर्बिसाइड है उसका हम स्प्रे करते हैं तो वीड तो मर जाते हैं क्रॉप बच जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारी किस्में निकाली गई हैं बासमती की और क्योंकि हम लोग भी खाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं पुलाव के लिए बिरयानी के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड तो ये हमारी कमोडिटी है जिसमें हमको काफी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। तो किस्म को कई तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब अगर अभी हम देखें समय की जून शुरुआत हो गई है आज, तो ऐसे में हमारे किसान मित्रों को कौन सा समय है जो चुनाव करना चाहिए कि अब इस फसल के लिए धान की फसल उगाने की उनको तैयारी करनी चाहिए या किस स्टेज पे क्या काम करना चाहिए अभी के लिए?
2: हाँ देखिए दो तरीके से है, एक तो सीडी बिजाई भी कर सकते हैं डायरेक्ट सीडी, बिल्कुल सही समय चल रहा है इस समय पलेवा करके और उसकी सीधी बिजाई कर दें। और तो सीधी बिजाई के लिए आजकल कस्टम हायर बेसिस पे मशीनें आई हैं जिनमें बीज बहुत कम लगता है, अर्थात बीज

0: जो है मतलब डायरेक्ट सीड में यदि मैं एक हेक्टेयर की बात करूं तो करीब 23-24 किलोग्राम बीज जो काफी होता है एक हेक्टेयर में बिजाई करने के लिए।
1: जी डॉक्टर साहब, सीधी बिजाई को बहुत और डिटेल में विस्तार से जानना चाहेंगे, लेकिन एक कॉलर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार सर, स्वागत है कार्यक्रम उन्नत किसान में। जी
2: नमस्कार
3: जी, जी प्रश्न करें अपना।
2: जी मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ, जो धान बीवी के बारे में आप बता रहे हैं, जो इससे पीली डोडी आती है इसका क्या इलाज किया जाए, जो हल्दी वर्गी आती है।
0: है जी,
2: जो पीली डोडी आती है ना, हल्दी बन जाती है जीरी की,
0: हल्दी बन जाती है,
2: उसके बारे में पूछा, उसके लिए क्या किया जाए।
0: हाँ देखिए, हाँ वो सभी किस्मों में नहीं आती है, कुछ किस्मों में वो बीमारी आती है और उसको जो है मतलब हमारे फंगस के स्पोर भर जाते हैं, विशेषकर जब हमारी फसल पकती है तो उस समय कुछ किस्मों में इस तरीके की समस्या देखी गई है, और सभी किस्मों में ऐसी नहीं है, लेकिन जो इस तरीके की बीमारी से वो रोधित हैं ऐसी किस्मों को उगाने के लिए मैं ये कहूंगा, क्योंकि जब वो आ जाती है फिर उसका निदान मुश्किल होता है, तो बीज को ट्रीटमेंट करके यदि बोएंगे तो उसमें कम आती है, विशेषकर जब हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो कार्बन रजिम से सीड ट्रीटमेंट करके ही बोएं तो उसमें बीमारी आने के चांस कम हो जाते हैं, और लगातार क्रॉप रोटेशन को भी हमको अपनाने की जरूरत है, लगातार धान न उगाएं, धान की जगह किसी दूसरी क्रॉप को उगाएं, इस तरीके से ध्यान रखने की जरूरत है।
1: जी डॉक्टर साहब, कॉलर लगातार बने हुए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी,
0: हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार जी,
2: नमस्कार
3: जी, थोड़ा पूछे अपना,
1: जी अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछे अपना, थोड़ा जल्दी करें डॉक्टर साहब, इनसे संपर्क टूट गया है, एक कॉलर और है उनसे पूछ लेते हैं अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो। हेलो
2: हेलो
1: जी, नमस्कार सर।
2: हाँ जी नमस्कार जी, मैं पीली डोडी के बारे में पूछना था डॉक्टर साहब से।
0: हाँ मैंने वही बताया ना आपको, सी ट्रीटमेंट करके बोएंगे तो उसमें नहीं आएगा, और दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसी किस्में हैं जिनमें वो बीमारी नहीं आती है, तो ऐसी किस्मों को बोएं, विशेषकर जो है हमारी 1509 है पूसा बासमती, या 1692 है, या पूसा बासमती 1979-1985, इन किस्मों में वो बीमारी नहीं आती है।
1: जी तो किस्मों का सही चुनाव करना साथ ही, और साथ ही साथ उसमें उसका उपचार करना, बीज उपचार करना ये भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब अभी कॉल से पहले हम बात कर रहे थे कि सीधी बिजाई, आपने कहा कि एक तरीका ये भी है, तो इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझना चाहेंगे, सीधी बिजाई या दूसरा ऑप्शन क्या है और इन दोनों में किस तरह से।
0: देखिए सीधी बिजाई का मतलब ये है कि हम नर्सरी न तैयार करके हम सीधी बिजाई कर सकते हैं धान की, लेकिन पहले मशीनें नहीं थी क्योंकि तो बीज ज्यादा लगता था, किसान उसको अफोर्ड नहीं करते थे, और उसमें थोड़ा बीज जो अनइवन गिरता था, कहीं एक गिर गया कहीं दो गिर गया इस तरीके से, लेकिन अभी जो है प्रिसाइज सीडलिंग मशीन आ रही हैं जो हमको बहुत ही अच्छे ढंग से सीड को डालती हैं, कस्टम हायर बेसिस पर, हर एक किसान तो नहीं खरीद सकता, वो महंगी होती हैं थोड़ी, लेकिन आजकल मैंने देखा क्योंकि हम अभी खेत बचाओ अभियान में गए थे एक दिन, तो उस समय हमने देखा था इस हापुड़ के क्षेत्र में कुछ किसान जो सीधी बिजाई कर रहे हैं, तो उसको सीधी बिजाई का मतलब ये है बिना नर्सरी के आप धान की सीधी बिजाई जैसे गेहूं की कर सकते हैं ऐसे करते ही है, लेकिन उसमें ध्यान रखने की बात यह है कि बिजाई के एक दो दिन बाद ही जो है पंडा मेथिलीन का स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि प्रीमर्जेंस हर्बिसाइड का डालना जरूरी है, क्योंकि खरपतवार उसमें विशेष कराते हैं तो उनका नियंत्रण जरूरी है, और एक दूसरी बात यह है कि जैसे हम नर्सरी तैयार करके फिर पटलिंग करके फिर धान की रोपाई करते हैं, वो जो हमारा एक कन्वेंशनल मेथड है
3: जी,
0: तो उसमें ऐसा करते हैं पहले कोई भी किस्म को जिसको उगाना है हमको, क्योंकि बहुत से किसान जो है ऐसी किस्में चाहते हैं जो लंबी अवधि में पकती हैं, बहुत से किसान जो है जल्दी पकने वाली विशेषकर जो 120-125 दिन में पक जाती है, फिर आलू वगैरह बोते हैं या लाही या तोरिया या मस्टर्ड वगैरह बोते हैं, तो उनको जल्दी खेत खाली करना होता है, तो इस तरीके से जो है आप नर्सरी तैयार करें, नर्सरी तैयार करने के लिए जो खेत का चुनाव बहुत जरूरी है, खेत का चुनाव ऐसे जगह करना चाहिए जहां पर पानी का साधन होना चाहिए, विशेषकर या तो पंप सेट हो, ट्यूबवेल हो या कैनाल हो या इसके साथ साथ कोई और टुल्लू पंप वगैरह हो तो ऐसी जगह नर्सरी का क्षेत्र का चुनाव करें, फिर उसकी जुताई करें। जुताई करने के बाद में फिर उसमें गली सड़ी गोबर की खाद डालें और उसके बाद जो समतल करके फिर पानी भर के दो से तीन बार उसकी जुताई करके फिर क्यारियां

वर्मी कंपोस्ट बनाने में 1.5-2 महीना लगाता है। उसके लिए पिट बनते हैं, गोबर डालते हैं, काष्ठ डालते हैं, उसमें छोड़ते हैं, फिर उसको छानते हैं, और 1.5-2 महीने का प्रोसेस है। इसमें ना मेहनत कम होती, ना खर्चा कम होता, ना उत्पादन पूरा मिलता। मैंने स्वयं अपने खेत में जैविक खेती की है, 3 साल लगातार की, और उसमें मैं आप जैसे कृषि वैज्ञानिक बंधुओं से मिलता रहा कि इसमें उत्पादन पूरा क्यों नहीं मिलता, तो उन्होंने बताया 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। जो आप सभी ने प्रेजेंटेशन दिया उसमें आप सबका ध्यान इस दिशा में था कि भारत खाद्यान्न की दृष्टि से कमजोर नहीं रहना चाहिए। यदि 1 एकड़ में गेहूं और धान की भरपूर फसल लेनी है तो 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए, यह आप लोग निर्देशित करते हैं। अब यदि रासायनिक खेती करनी है तो आप यूरिया खरीदो, 60 किलो डाल दो, कुछ समय के अंतर से 60 किलो नाइट्रोजन भी पूरा और उत्पादन भी पूरा, समझ में आई। लेकिन जैविक खेती में 60 किलो नाइट्रोजन पूरा करना है तो 300 क्विंटल गोबर की खाद 1 एकड़ को चाहिए। अब क्या इतना पशुधन भारत में है कि 300 क्विंटल गोबर की खाद प्रति एकड़ डाल करके 60 किलो नाइट्रोजन पूरा किया जा सके? नहीं। कृषि वैज्ञानिक ही बताते हैं कि आप यदि 300 क्विंटल गोबर की खाद नहीं डाल सकते तो 150 किलो वर्मी कंपोस्ट उतना ही काम कर देगा। हमने मान लिया 150 क्विंटल कर देगा, लेकिन इस 150 क्विंटल और 300 क्विंटल के लिए पशुधन कितना चाहिए? कम से कम 30-40। अब 30-40 पशु की एकड़ एक पशु 30-40, किसान पशु पालेगा या परिवार पालेगा? ये कतई अव्यवहारिक बात है जिसका हम 40 साल से प्रचार कर रहे हैं। दूसरी बात, इतनी गोबर की खाद जिस खेत में पड़ेगी वहां मीथेन जैसी गैसेज पैदा होंगी, और मीथेन आप सब जानते हैं, साइंटिस्ट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से 22 गुना खतरनाक है पर्यावरण के लिए। तो ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देने में जैसे रासायनिक खेती खतरनाक है, उसी प्रकार से जैविक खेती भी खतरनाक है। तीसरी बात, आप सब जानते हैं 2 तरह के कीट हैं खेत में, एक मित्र कीट है और एक शत्रु कीट। शत्रु कीट का भोजन मित्र कीट से 2 गुना है। अब जब इतनी जैविक खेती में गोबर की खाद खुली मिलेगी तो शत्रु कीट को खुला भोजन मिलेगा तो उसका परिवार बढ़ेगा, वो मित्र कीट को खाएगा, जैविक खेती की बीमारी को नष्ट कर ही नहीं सकते। उस पर दुनिया भर का खर्चा आता है, किसान को कुछ नहीं मिल पाता। अगली बात, जब इतनी गोबर की खाद एक खेत में पड़ेगी तो इसमें इतना खरपतवार वीड्स पैदा होगा, किसान सारा दिन उस लेबर पर लगा रहेगा। तो ये जैविक खेती का जो प्रचार इतने दिन से चल रहा है और 40 साल में उसके मॉडल नहीं बन पाए, तो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं, एक ही जगह जैविक खेती, वहीं पर प्राकृतिक खेती, किसान को कंफ्यूज किया जा रहा है। इसको हमने बंद करना चाहिए, और इसलिए बंद करना चाहिए कि प्राकृतिक खेती से ज्यादा उसमें कुछ भी अलग से नहीं। अब मैं प्राकृतिक खेती की चर्चा आपके बीच में करता हूं। प्राकृतिक खेती क्या है? यह शुद्ध सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। हम जंगल में जाते हैं, हजारों तरह के पेड़ पौधे होते हैं, वहां यूरिया कौन देता है, वहां डीएपी कौन डालता है, वहां जंतुनाशक कौन देता है, वहां गोबर की खाद कौन देता है, वहां पानी देने कौन जाता? कोई भी नहीं जाता। और जंगल के पेड़ सारे हरे भरे हैं। जंगल का पेड़ के किसी भी एक पत्ते को तोड़ो, लेबोरेटरी में ले जाओ, उसमें फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जो तत्व आप चाहते हैं वो सारे उन पत्तों के अंदर हैं। और जंगल का पेड़ समय आने पर फलों से लद जाता है। जब प्रकृति सारे पोषक तत्वों की पूर्ति वहां करती है तो हमारे खेत में क्यों नहीं करेगी? और उस

0: स्फूर्ति का आधार है बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु, अर्थवर्म, मित्र कीट। जंगल को मेरे और आप जैसे समझदार लोगों ने छेड़ा नहीं है, हमारी वहां पहुंच नहीं है, इसलिए वहां सब कुछ ठीक ठाक है। अब हमारे खेतों में कुछ मंच पर चर्चाएं हो रही थी, आप करते हैं, जिंक अलग से दो, फास्फोरस अलग से दो, पोटास अलग से दो, इनकी क्यों जरूरत पड़ रही खेत में अलग से देने की? जब जंगल में जरूरत नहीं तो हमारे खेत में क्यों जरूरत है? इसका कारण है, और इसका कारण है लंबे समय से की जा रही रासायनिक खेती।
1: जी साथियों, अभी आप सभी सुन रहे थे गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी को, जिन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ बताया कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और किस तरह से प्रकृति बिल्कुल पूरी तरह से सक्षम है सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करने में, और बहुत सारी बातें कि किस तरह से हमारे किसानों को जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, इस पर अधिक जोर देना चाहिए। जी
2: जी, तो अब जब चूंकि बहुत कम समय रह गया है बातचीत का और सर चूंकि स्टूडियो में है, तो एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात कर लेते हैं। सर, पोषक तत्व प्रबंधन की भी हमें बात करनी थी, और चूंकि हम धान की बात कर रहे हैं, जैसा आपने बताया उसके महत्व पर भी आपने जो है प्रकाश डाला, तो कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जो धान की जो रोपाई है या जो जो जो जब बिजाई वगैरह हो रहा है या उसकी फसल हो रही है, तो उसमें वो महत्वपूर्ण अपना किरदार अदा करते हैं?
3: देखिए, मैं किसानों से अनुरोध करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि यदि हमको धान से एक अच्छी पैदावार लेनी है तो हमको हरी खाद जो है जरूर अपनाना चाहिए। हरी खाद जो है, क्योंकि ये हमारी कोई भी फसल काटते हैं हम रबी की, विशेषकर जैसे हमने गेहूं काटी या चना मटर मसूर काटा या आलू खोदा, तो खेत खाली रहता है। उसके बाद जो है आसानी से हम हरी खाद ढेंचे की या सनई की लगा सकते हैं, काउपी, मूंग बीन, उड़द बीन, ये लगा सकते हैं, तो उनको लगाना चाहिए। उनकी जो है फिर मिट्टी में मिला के जुताई करके और अच्छे ढंग से, क्योंकि वो दो तीन कारण से अच्छा माना जाता है, विशेषकर मिट्टी की हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ता है। अभी देवव्रत जी बता रहे थे कि ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बहुत जरूरी है, तो उसी हिसाब से यदि हम कोई भी ग्रीन मैन्योरिंग का यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का एक अहम मतलब किरदार निभाता है ये, क्योंकि इससे माइक्रोबियल एक्टिविटीज भी बढ़ती है और हमारे अर्थवर्म और ये सारे बढ़ जाते हैं। अब आती है बात, ये तो मैंने जनरल धान के लिए कहा कि भी ऐसा करना चाहिए, नर्सरी में पोषक तत्व प्रबंधन जरूरी है, क्योंकि बहुत से ज्यादातर किसान जो है नर्सरी के द्वारा ही धान की रोपाई करके खेती करते हैं, तो वहां पे ऐसा क्षेत्र चुने जहां पे जो है पानी का नजदीक हो, पानी का स्रोत हो, और हम जो है उसमें गोबर की गली सड़ी खाद भी जरूर डालें, और एक हेक्टेयर में रोपाई करने के लिए लगभग हमको जो है 600 से 700 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नर्सरी उगानी पड़ती है, तो उसमें जो करीब करीब जो हम एक टन गोबर की गली सड़ी खाद डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके दो फायदे हैं, एक तो हमारा जो है धान की नर्सरी अच्छी होगी, और दूसरे जब हम उखाड़ेंगे तो जड़ें टूटेंगी नहीं, तो ये बहुत जरूरी होता है कि जब हम नर्सरी को उखाड़ें तो आसानी से उखड़ जाए, उसकी जड़ें ना टूटें, तो गोबर की गली सड़ी खाद को डालें, वो ना हो तो वर्मी कम्पोस्ट को डालें, लेकिन ऑर्गेनिक स्रोत जो जरूर होना चाहिए। और फिर उसके बाद में जो है आप पोषक तत्व में यदि जरूरत है तो हम कुछ सिंगल फॉस्फेट वगैरह डाल सकते हैं, फॉस्फोरस की कमी है। हाँ जी बोलिए।
1: जी जी, डॉक्टर साहब, चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे हमारे किसान मित्रों को, ऐसी कौन सी अहम सावधानियां हैं जो इस समय पर जरूर रखनी चाहिए?
3: हाँ देखिए, किसान मित्रों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र के लिए अनुमोदित जो भी किस्में हैं उन्हीं का चुनाव करें, और नर्सरी का सही समय चल रहा है, नर्सरी अभी लगा दें, और जब समय ये लगभग 20 से 25 दिन की हो जाए तब रोपाई के लिए उपयुक्त मानी जाती है, और ज्यादा अवधि की जो हमारी नर्सरी होती है उसमें कल्ले थम बनते हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है।
1: जी जी, डॉक्टर साहब, बहुत सही जानकारी आपने हमारे किसान मित्रों के साथ और हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद जी, नमस्कार।
1: साथ ही हमारे साथ जुड़े रहे डॉक्टर यशवीर सिंह शिवी जी, जो सहायक महानिदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में, और उम्मीद है आपका कार्यक्रम, आज का आपका कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। फिलहाल आज के कार्यक्रम से मैं आरती
2: और मैं राहुल
1: विदा लेते हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए चर्चा हुई। बातचीत के दौरान म्यांमा और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तु की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि उसने सप्ताहांत में दक्षिणी ईरान में रडार और कमान तथा नियंत्रण स्थलों पर आत्मरक्षा के लिए हमले किए। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमत में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरेलू उपयोग के सिलेंडरों की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। वियतनाम के दानांग में आयोजित अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi and Myanmar President U Myint Aung Hlaing held bilateral talks in New Delhi today. The talks aimed to further strengthen the historical and civilizational ties between the two countries. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, came up for discussion during their talks. The Myanmar president arrived at Gaya in Bihar on Saturday on a 5-day visit to India. He will travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. In an article published in a national daily, Mr. Goyal said the Comprehensive Economic Partnership Agreement immediately gives Indian exporters 100% duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines covering 99.38% of exports. This marks a dramatic improvement over the pre-CEPA system that allowed only 15.3% of India's exports to enter Oman at zero duty. The second India-Australia Defence Ministers' Dialogue held in New Delhi today. Defence Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defence Richard Marles co-chaired the dialogue. In a social media post, Mr. Singh said they reviewed the full range of bilateral defence cooperation and discussed ways and means to enhance it further. He added that the India-Australia Defence Partnership is poised to make steady progress in the years to come. In his initial remarks, Mr. Singh said the defence ties between India and Australia have strengthened significantly.
3: In the coming years, we work with a renewed momentum, effectively contributing to growth of bilateral defence relations. Excellency, today is the 5th anniversary of elevation of our relations to comprehensive strategic partnership. I appreciate the significant strides made in our bilateral relationship across a wide range of sectors, from political exchanges to defence partnership.
2: Mr. Marles said Australia and India have elevated their defence partnership and both sides are doing a lot of work in the maritime domain. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan today launched the nationwide Khet Bachao Abhiyan campaign at Ramsia village in Raisen district of Madhya Pradesh. The campaign will be operational for 1 month. It is aimed at protecting farmland and encourage scientific farming among farmers. Addressing farmers at the event, Mr. Chauhan said the Khet Bachao Abhiyan is meant for protecting soil and farmlands. He urged the farmers to restrict the use of chemical fertilizers. The West Bengal cabinet, headed by Chief Minister Shubhendu Adhikari, was expanded today with the induction of 35 new ministers, taking the strength of the Council of Ministers to 41. Governor R. N. Ravi administered the oath of office in secrecy to 35 BJP MLAs at a swearing-in ceremony held at Lok Bhavan in Kolkata. Gross goods and services tax, GST, collections rose 3.2% to over 1,94,000 crore rupees last month on improved supplies of goods and services and continued expansion of collection from imports. The gross GST collection in May last year was 1,88,000 crore rupees. Gross central GST collection from domestic transactions last month stood at 37,397 crore rupees. Tensions have flared up once again in West Asia after the United States carried out strikes on Iranian radar and drone control sites. The strikes targeted facilities in Gorok

नमस्ते, आज है 1 जून, खुश है जमाना, आज 1 तारीख है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपके मन पसंद मन भावन ऑन मंडे को। जी हाँ, आपके साथ है हम रूमी मलिक। आशाएं ऐसी हों जो मंजिल तक ले जाएं, मंजिल ऐसी हो जो जीवन जीना सिखा दे, जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे, और संबंध ऐसे हों जो याद करने को मजबूर कर दें। हाँ जी, तो याद किया कि नहीं किया आपने हमको? चलिए, हमने तो आपको याद किया और ढेर सारे आपके संदेश भी आ गए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम इस खूबसूरत गीत के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका।

0: KIR at 90.
1: जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता श्रीवास्तव, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पे मैं अपनी तरफ से बहुत सारा ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ आकाशवाणी को, क्योंकि आकाशवाणी का एक बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में। स्पेशली ड्यूरिंग माई यूथ डेज मैं युववाणी में अपनी कलम से लिखी हुई कुछ कविताएं पढ़ने जाती थी और वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं अपने दिल की बात पूरी बोल पाती थी। बहुत लोग मुझे सुनते थे और मुझे बहुत सारी तारीफें भी मिलती थी और तारीफ के साथ मुझे जो छोटा सा अमाउंट मिलता था, मैं 90s की बात कर रही हूँ, वो बहुत कीमती होता था। मुझे जो वहां से सम्मान मिला वो भी बहुत ही दिल को छू लेने वाला था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी को।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। और ढेर सारे हमारे साथ मोहम्मद यूनुस खत्री साहब, देखो मैंने आपका गीत मोहब्बत बड़े काम की चीज है सबसे पहले बजा दिया है ना, तो इनकी भी फरमाइश थी। और मजे की बात यह है, त्रिशूल फिल्म से मैंने भी एक गीत निकाल के रखा था, फिर मुझे लगा अपनी पसंद को मैं होम कर देती हूँ आपकी पसंद के वास्ते। खुश होना खत्री साहब। हाँ जी, उत्तम सिंह जंगेल, जय धर्मेंद्र छिप्पा, गुरमीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ में अल्तमश खत्री, सरफुद्दीन अंसारी, जगन्नाथ पटेल, सुदर्शन शाह, मुकेश गोस्वामी, भाई मूसा शेख, अनंत वाडे, जय सुखविंदर सिंह जोड़ा, फारूक अली खान, गगनदीप थांदी, हरजिंदर शिंडा, अच्छा हरजिंदर शिंडा भी हैं और एक हरजिंदर सिंह भाटिया भी हैं, प्रकाश बोरगांवकर, विजय सुरलकर, सरिता अभिजीत गवघंकर, कमल कांत गुप्ता, एच आर पांड्या और अकीति के दिग्दर्शन कौर जी भी चिट गई हैं हमारे साथ में। और सतीश अनेजा जी क्या लिख रहे हैं, वेलकम टू द प्रोग्राम, आई अप्रिशिएट योर प्रेजेंटेशन विच एनहांसेस द प्रोग्राम। क्या बात है बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर अशोक कुमार सुनना चाहते हैं फिल्म सत्ते पे सत्ता का गीत, मौसम मस्ताना, ला ला ला ला। अच्छा है ना, ठंडे ठंडे गीत सुन के ठंडे ठंडे फील करो, साथ में ORS का घोल रखते हो ना, है ना। देखो कल प्रधानमंत्री जी ने भी बोला मन की बात में, सत्तू पियो, आम का पन्ना पियो, नींबू पानी पियो, नहीं तो वो तरबूज और खरबूजे खाओ। सचमुच में नौतपा था, है ना, पता है ना नौतपा, तो आज आखिरी दिन है भाई नौतपा का। 9 दिन जब सूर्य जाता है रोहिणी नक्षत्र में, साल के सबसे ज्यादा तपते हुए दिन होते हैं, कहते हैं नौतपा जितना तपेगा वर्षा उतनी अच्छी होगी। चलो जी, तप लिए हम तप भी हो गया, जप भी हो गया, गप भी हो गई, अब हो जाए ये गीत।

जी हाँ, बहुत मस्ताना ही मौसम है। और अगली पेशकश विजय सुरलकर मोताला महाराष्ट्र से लिख रहे हैं रत्नमाला जी के साथ में, और कुमकुम कुमकुम कह रहे हैं कुमकुम एक गुड़िया है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि सुमन कल्याणपुरी जी की याद में एक गीत सुनवा दीजिए, और बड़ा ही प्यारा गीत है, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे। अरे वाह, क्या याद दिलाई है, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एफएम गोल्ड पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य श्रोताओं को आकाशवाणी की समृद्ध विरासत, सांस्कृतिक योगदान और ऐतिहासिक यात्रा से जोड़ना है। इस कार्यक्रम में हम आकाशवाणी से जुड़े विभिन्न संवर्गों के व्यक्तित्व से बात कर उनके संस्मरण, अनुभव, यादें अपने श्रोताओं से बांटते हैं। और इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं आकाशवाणी के पूर्व महानिदेशक लीलाधर मंडलोई जी, जिन्होंने आकाशवाणी की कार्यप्रणाली, विकास और बदलते दौर को बहुत नजदीक से देखा, समझा और दिशा दी। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। सर, इस 8 जून को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आप आकाशवाणी के इस 90 वर्षों की यात्रा को किस दृष्टि से देखते हैं?
1: आकाशवाणी का जो 9 दशक का सफर है
0: जी,
1: उस सफर को निश्चित रूप से मैं, चूंकि आकाशवाणी में काम कर चुका हूं, तो मैं ही नहीं, जितने भी हमारे रेडियो को सुनने वाले लोग रहे हैं, उनके बीच इस लंबे सफर में पहली चीज जिसको सबसे पहले रेखांकित किया जाना चाहिए वो ये है कि आकाशवाणी में एक ऐसी शक्ति थी कि वो दूर दराज के ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं भी हैं उनसे जुड़ सके। और जुड़ना इस अर्थ में हुआ कि हम उनकी भावनाओं, उनके विचारों, उनकी जरूरतों और उनकी सोच के हिसाब से अपने कार्यक्रमों का निर्माण करते थे
0: जी।
1: चाहे वो खेती किसानी का कार्यक्रम हो, चाहे महिलाओं के कार्यक्रम हो, चाहे बच्चों के कार्यक्रम हो। पहले आउटडोर रिकॉर्डिंग बहुत होती थी
0: जी,
1: और आउटडोर रिकॉर्डिंग्स में जो हमारी टीम जाया करती थी वो एक तरह से पुल का काम करती थी श्रोताओं के बीच में और आकाशवाणी के बीच में,
0: वो डायरेक्ट जोड़ती थी
1: जी। तो वो जो फीडबैक वो लेकर आते थे तो उसके हिसाब से हम अपने कार्यक्रमों की भाषा, उसके विषय और जो सामयिक जरूरत होती थी
0: जी,
1: चाहे वो खेती बाड़ी की हो, चाहे पढ़ाई लिखाई की हो, चाहे मनोरंजन की हो, चाहे ऋतु हो, चाहे पर्व हो, तो उसके हिसाब से हम अपने कार्यक्रमों का निर्माण करते थे। और मुझे लगता है कि इस पद्धति से जो हमने प्रोग्रामिंग शुरू की थी उसकी वजह से एक विश्वसनीयता श्रोताओं में बनी और वो जो विश्वसनीयता थी उसी ने 90 साल तक हमें एक तरह से

0: ने उनके साथ रखा और वो हमारे साथ रहे। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा फैक्टर है
1: जी,
0: कि हम इस देश को जोड़ सके।
1: आपका बहुत लंबी यात्रा रही है आकाशवाणी में, तो पहला आपने आकाशवाणी को जब सुना होगा या रेडियो को सुना होगा, वो कौन सा समय था आपका, बचपन का वो समय या आप घर पर आपने सुना होगा, इसके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका आकाशवाणी से परिचय कैसे हुआ।
0: देखिए, इसको जानने के लिए पहले ये जानना होगा कि मैं किस इलाके से आता हूँ। मैं छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी इलाके से आता हूँ और वहां पर कोयला की बहुत सारी खदानें खुली हुई थी। हिंदुस्तान के चुने हुए जो राज्य थे, जो नजदीक थे हमारे इलाके से, तो वहां के लोग यहाँ काम करने आए, तो वो एक समन्वित संस्कृति को लेके आए। मतलब तमिलनाडु से भी आए और आंध्रा से भी आए और महाराष्ट्र से आए, गुजरात से आए, मध्य प्रदेश तो था ही, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, तो वो एक समन्वित संस्कृति थी। और उसके साथ साथ वो एक आदिवासियों का वहाँ बड़ा समाज था। तो ये तो हुआ बैकग्राउंड। जो खदान में जो मजदूर काम करते थे, वो अपने मनोरंजन के साधनों के लिए स्थानीय गाना बजाना करते थे। और उस समय हमारे गांव में सिर्फ एक जगह, एक रामप्रसाद नाम के मजदूर थे
1: जी,
0: उनके पास रेडियो था मर्फी का।
1: ये सर किस समय की बात है?
0: ये बात है 1960 के आसपास। तो मैं उस समय स्कूल में ही हुआ करता था, तो उनके यहाँ वो मर्फी का रेडियो हुआ करता था। उनकी शादी नहीं हुई थी तो वो हमेशा रेडियो के साथ ही रहते थे। जब घर से भी निकलते थे तो साइकिल में वो रेडियो टंगा होता था, तो जहाँ वो रुकते थे, जहाँ वो बैठते थे, तो वहाँ भीड़ लग जाती थी। तो हम भी उसी में से एक थे। तो हमारी स्कूल लाइफ में हमने वो तमाम रेडियो के कार्यक्रम सुने जो वो सुना करते थे। तो उनके सुनने में एक तो विविध भारती की सेवाएं उनको बहुत प्रिय थी, वो समाचार सुना करते थे। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स के कुछ कार्यक्रम होते थे वो सुनते थे। और चूंकि हमारा जो इलाका था, उस इलाके में वो सतपुड़ा की रेंज है, तो मौसम बदला करते थे, तो मौसम के समाचार जानने के लिए हमारे दूसरे कार्यक्रम भी सुना करते थे
1: जी।
0: तो उनको बहुत ज्ञान था, वो एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया थे। तो सबसे पहले उन्हीं ने हमको दीक्षित करना शुरू किया और हमने बॉलीवुड को अच्छे से जाना। और इसके अलावा जो हमारी जो देश की जो सरकारें थी, जो राजनीति थी
1: जी,
0: जो प्रमुख लोग थे, उनके बारे में भी इसलिए जाना कि जब ऐसे कोई प्रसारण होते थे, जैसे पंडित नेहरू के हुए या गांधी के हुए, दूसरे लोगों के हुए, तो वो कहते थे कि सुनो आवाजें, सुनो आवाजें, सुनो। तो वो सारी आवाजें हमारे चेतना में घर कर गई। तो हमारा मन तभी से बना कि अगर हुआ तो हम कभी ना कभी रेडियो की नौकरी करेंगे। तो ये तो बचपन का वो किस्सा था
1: जी।
0: और उसके बाद हमने भोपाल में रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन भोपाल में पढ़ाई की, वो शिमला हिल्स पर है हमारा कॉलेज और रास्ते में आकाशवाणी पड़ता है, तो हम बड़े हसरत के साथ आकाशवाणी को देखा करते थे और कल्चरल एक्टिविटीज में भाग लिया करते थे। तो हमने एक अनसंट ऑर्केस्ट्रा बनाने का,
1: अच्छा,
0: हमारे यहाँ एक हारमोनियम भर था और डेनिस नाम का हमारा एक साथी था, वो हारमोनियम बजाता था, तो वो एक धुन बनाता था। और उसके बाद परकसन इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तो कभी टेबल, कभी मेज, कभी थाली
1: जी बजाते थे,
0: इससे करके हमने वो ऑर्केस्ट्रा बनाया था। किसी तरह से उस ऑर्केस्ट्रा की खबर रेडियो को पता चल गई।
1: अच्छा,
0: तो रेडियो से लोग आए, उन्होंने वो ऑर्केस्ट्रा सुना और कहा कि हम इसको युवाणी कार्यक्रम में
1: प्रसारित करेंगे जी जी।
0: तो इस तरह से कॉलेज में हमारा रेडियो से एक संपर्क हुआ और फिर उस युवाणी के कार्यक्रमों में कभी कभार जाने भी लगे। और स्कूल ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम हुआ करते थे, तो जो लैंग्वेज लेसन तैयार होते थे उसमें विद्यार्थियों की जरूरत पड़ती थी
1: जी।
0: एक क्लासरूम स्टूडियो में क्रिएट किया जाता था जिसमें बच्चे हैं, टीचर है, और स्कूल का एक माहौल बनाया जाता था और पार्ट रिकॉर्ड किए जाते थे, तो उसमें भी हम लोग जाते थे। तो ये एक संबंध था जो रेडियो से बना।
1: सर, ये कार्यक्रम FM गोल्ड पर जा रहा है, तो इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को आपकी पसंद के गाने भी सुनवाएंगे। कोई गीत आप बताइए जो आपको बहुत पसंद है।
0: मुझे लगता है कि इस समय जब गीतों की बात होगी तो उसकी संख्या तो बहुत सारी है। लेकिन जब हम लोगों ने रेडियो ज्वाइन किया

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व महानिदेशक लीलाधर मंडलोई जी को। सर, बचपन से आपने सुना, उसके बाद आप युवानी कार्यक्रम में आपने भाग लिया और उसके बाद आकाशवाणी में आप आए और इतने महत्वपूर्ण पद तक रहे, तो जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने देश की संस्कृति, भाषा और संगीत को घर घर तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की भावना से ये आगे बढ़ रहा है, इस योगदान को आप किस रूप में देखते हैं?
1: देखिए, जैसा आपने कहा बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय
0: जी,
1: या आकाशवाणी की लोक सेवा का जो स्वरूप रहा है, तो देखिए एक लंबे समय तक तो जो आकाशवाणी थी वो कमर्शियल तो हुई नहीं थी। तो सबसे बड़ी चीज ये थी कि हर काम करने वाले लोग थे, चाहे वो अनाउंसर रहे हो, चाहे प्रोड्यूसर रहे हो, चाहे कार्यक्रम निर्माण करने वाले कार्यक्रम अधिकारी रहे हो, उस समय उनके लिए एक ही चीज थी और सारा माहौल भी इस तरह से बनाया गया था कि लोग प्रोग्राम के बारे में सोचते थे, अच्छे प्रोग्राम कैसे बनाना है, अपने श्रोताओं तक कैसे पहुंचना है, अपने टॉकर्स तक कैसे पहुंचना है। तो उस समय जैसे हम बाद में जाके हमने सुना कि टेलीविजन में इन सारी चीजों के लिए रैकी होती थी, तो ये रैकी तो हमारी वो भी रिकॉर्डिंग में हम
0: पहले ही होती थी जी, जी।
1: वहीं से हमको कलाकार मिलते थे, चाहे वो लोक संगीत के कलाकार हो, चाहे सुगम संगीत के कलाकार हो, चाहे लोक कथा वाले हो, लोक कविता वाले हो, कविता वाले हो, तो इस तरह से एक जो टैलेंट हंट था तो वो हम लोग फील्ड में

0: उस जमाने में किया करते थे, तो वहां से हमारे पास जो टैलेंट था वो आया करता था। और दो तरह की चीजें होती थी, अप्रूव्ड वॉइसेस और नॉन अप्रूव्ड वॉइसेस। तो जब हम आउटसाइड आउटडोर रिकॉर्डिंग थे और हमको कोई बहुत अच्छी आवाज मिली
1: जी,
0: तो हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसका कोई ऑडिशन नहीं हुआ। एक रास्ता उसके लिए खुल गया कि वो अगर अच्छा टैलेंटेड आदमी है या कलाकार है तो रिकॉर्ड कर सकता है, वो खेती बाड़ी के लिए रिकॉर्ड कर सकता है, युवाणी के लिए रिकॉर्ड कर सकता है, बच्चों के कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड कर सकता है। तो इस तरह से तब हुआ करता था। और जो लोक संगीत के जो आर्टिस्ट थे, जब हम लोग गांव में जाते थे तो वो अप्रूव्ड आर्टिस्ट तो होते नहीं थे, लेकिन गायक बहुत अच्छे होते थे
1: जी।
0: तो उनको हम आउटडोर में रिकॉर्ड कर लेते थे और उनको सुनाते थे। तो उससे जब हमने आउटडोर की रिकॉर्डिंग्स में और स्टूडियो की रिकॉर्डिंग्स में लोगों को रिकॉर्ड करके, और उस जमाने में तो सुबह 6 बजे से लेके पहले 11 बजे रात तक का ट्रांसमिशन होता था, फिर 12 बजे तक का हुआ, तो इस पूरे चक्र में जब लोग खुद की आवाज सुनते थे तो वो प्रसन्न भी होते थे और उनका भरोसा ऑल इंडिया रेडियो के लिए बनता था। तो एक बड़ा विश्वास का नेटवर्क ऑल इंडिया रेडियो ने अपने प्रोग्रामिंग से बनाया था।
1: सर, आपने आकाशवाणी में लंबे समय तक अपनी सेवा दी और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, तो इस दौरान बहुत सारी चुनौतियां भी आपके रास्ते में आई होंगी और बहुत सा आपको अप्रिसिएशन मिला है, बहुत सारा आपने काम किया है, इसको आप किस रूप में बताएंगे?
0: देखिए, क्या है कि हम लोगों की जो पीढ़ी थी वो पीढ़ी ऐसी थी कि जो कार्यक्रम कर रहे हैं तो आपको प्रशंसा करने वाले लोग तो मिलेंगे, लेकिन उस समय एक तरह की प्रतियोगिता इस तरह की थी कि जिसमें कार्यक्रम अच्छा हुआ उसकी तारीफ से कोई बात नहीं होती थी। अंदर जो आपके प्रोफेशनल एक स्टैंडर्ड थे कि इनकी आवाज कैसी है, आवाज की डेप्थ कैसी है, उसका थ्रो कैसा है, मतलब ये कनेक्ट करते भी हैं कि नहीं करते हैं। तो हम लोगों के जमाने में वॉइस कल्चर से लेके हम लोग बहुत सारे स्तरों पर ट्रेंड हुआ करते थे, कुछ अपने स्तर पर करते थे, कुछ हमारे स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम लोगों को उस समय ट्रेन किया जाता था। तो हम लोग अपनी आवाज को लेकर और आवाज के साथ कौन कितना पढ़ता लिखता था, किसके पास लिखने की कितनी कुवत है
1: जी,
0: कौन फीचर लिख सकता है, कौन अनाउंसमेंट लिख सकता है, कौन ड्रामा लिख सकता है, ये सारे हम लोगों को इम्तिहान देने पड़ते थे। तो जब आप एक लंबे समय के अनुभव से गुजरते हैं तब आपको ये सलाहियत आती है कि आप रेडियो के लिए अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियो के लिए लिखना और अखबार के लिए लिखना दोनों में फर्क है
1: जी।
0: यहाँ बोले हुए शब्दों की महिमा है, तो जब तक बोले हुए शब्द नहीं होंगे और ऐसे शब्द जो आपके सुनने वालों को अपील ना करें, तो वो बोले हुए शब्दों को हम लोग जहाँ जाते थे वहां से ग्रहण करते थे, अभेरते थे, भाई बुंदेली में ये शब्द बोला जाता है, बघेली में ये बोला जाता है, मालवी में ये बोला जाता है। तो हमने अपने भाषा का भी बहुत परिष्कार किया और जब वो चीज एक स्तर पर आ गई तब हमारे बनाए नाटक हो, चाहे फीचर हो, चाहे प्रोग्राम हो, वो लोग पसंद करते थे। तो उस प्रशंसा में खाली प्रशंसा ये नहीं होती थी कि आपका फलाना कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, तब ये देखा जाता था कि जो सुनने वाले बहुत सारे श्रोता संघ हुआ करते थे, अभी भी कुछ है,
1: अभी भी है जी।
0: तो वो श्रोता संघ हर अनाउंसर के बारे में, हर प्रस्तुतकर्ता के बारे में वो बाकायदा एक फीडबैक रिपोर्ट देता था कि इनकी आवाज ऐसी है, प्रोग्राम में इन्होंने ऐसा गलत किया, ये सोर्स ठीक नहीं था, वो नहीं था। तो उस समय चेक एंड बैलेंस बहुत थे
1: जी,
0: और रोज मीटिंग कार्यक्रम की उसमें बाकायदा बहस होती थी और कई बार तो पूरा दिन निकल जाता था।
1: सर, बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, क्यों ना आपकी पसंद का कोई गीत सुनते हैं?
0: एक और गाना मेरी पसंद का है, जिंदगी का सफर।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व महानिदेशक लीलाधर मंडलोई जी को।
1: सर, बात को आगे बढ़ाते हैं और सर, बदलते दौर में जैसे सोशल मीडिया का भी टाइम है तो इसमें भी आकाशवाणी में बहुत बदलाव आ रहे हैं, इसको आप कैसे ले रहे हैं?
2: देखिए, क्या है कि आपको समय के हिसाब से तो बदलना पड़ेगा। समय के हिसाब से अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, या ब्लॉग का कर रहे हैं, या इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं
0: जी,
2: तो वो सिर्फ सूचना परक ना हो। ये कार्यक्रम इस समय आएगा, मतलब आपका कार्यक्रम क्या है उसके बारे में जब तक आप कुछ नहीं बताएंगे तो लोग क्यों क्यों करेंगे। तो एक तो जो प्रमोशन है, प्रमोशन के बारे में मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। और दूसरा क्या है कि फॉलो अप नहीं है। जो भी आप कहना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, उस पर जब लोगों ने जो भी कुछ कहा हो या ना कहा हो, ना कहा हो तो विग्रस फॉलो अप होना चाहिए, और कुछ कहा है तो उसका भी फॉलो अप होना चाहिए। क्योंकि जो आपको कुछ कह रहा है वो आपका एक श्रोता है या आपका एक आप कंज्यूमर मान लीजिए, तो जब तक आप उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? आप तो आप कमर्शियल भी हो गए, तो अगर आपको अपनी चीज बेचनी है तो वो बिकेगी तब ना, जब आप उसको उस तरह से प्रस्तुत करेंगे।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश के श्रोताओं, प्रसारण कर्मियों और आकाशवाणी परिवार के लिए आपका क्या संदेश है?
2: हम तो ये कहेंगे कि जिस मोहब्बत के साथ आप आकाशवाणी से 90 सालों से जुड़े रहे हैं और बदलते समय में भी आपने आकाशवाणी का साथ नहीं छोड़ा है, तो हम ये चाहेंगे कि आप चाहे हमारी प्रशंसा ना करें, हमें सुझाव दें, हमारी आलोचना करें, हमें बताएं कि हमको इस बदलते समय में आपकी जरूरतों के हिसाब से क्या करना है, शायद वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा।
0: चलते चलते आपकी पसंद का कोई गीत और बताइए सर।
2: गीता दत्त का गाना सुना दीजिए, ये वक्त ने किया क्या हसी सितम, हम रहे न हम।

सर आपने अपने बहुमूल्य अनुभव और विचार हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे आकाशवाणी के पूर्व महानिदेशक लीलाधर मंडलोई जी से, और अब इसी शुभकामना के साथ कि आकाशवाणी आने वाले समय में भी जन जन की आवाज बनी रहे, दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए चर्चा हुई। सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर भी चर्चा हुई। म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने बैठक की सह अध्यक्षता की। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और इसे और मजबूत करने के बारे में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी आने वाले वर्षों में लगातार प्रगति करेगी। श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं। श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर सृजित कर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक महिला की उन्नाव स्थित जिला विधि सेवा प्राधिकरण के 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। वस्तु और सेवा कर का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
2: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
2: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल

0: level 6 as per the 7 CPC. Eligible officers from central or state governments, PSUs, universities and autonomous bodies may apply within 60 days from the release of this advertisement in the Employment News. For details, do refer to the website, that is at www.nsi.gov.in. I repeat, the website is www.nsi.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: Namaskar. रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट वरिष्ठ तकनीकी सहायक शर्करा प्रौद्योगिकी के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। केवल उन्हीं उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा जिन्हें चयन होने की स्थिति में तुरंत कार्यमुक्त किया जा सकता है। आवेदन उचित माध्यम से भेजे जाने चाहिए और उसके साथ ये दस्तावेज संलग्न होने चाहिए। बायोडाटा दो प्रतियों में, पिछले 5 वर्षों के ACR, नियुक्ता संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। पात्र उम्मीदवारों के आवेदन इस पते पर पहुंचने चाहिए। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कल्याणपुर कानपुर 208017। पद का विवरण पात्रता शर्तों आदि के लिए देखिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की वेबसाइट nsi.gov.in। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन नीलगिरी तमिलनाडु इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। अवर श्रेणी लिपिक, सिविलियन मोटर ड्राइवर सामान्य ग्रेड, बहुकार्य कर्मचारी आशुलिपिक ग्रेड 2, पर्यवेक्षक नेटवर्किंग, नेटवर्क प्रशासक, हार्डवेयर प्रशासक, लाइनमैन, नाव निर्माता और तकनीकी परिचारक मुद्रण मशीन ऑपरेटर। कुल पदों की संख्या 78 है। आरक्षित पदों की जानकारी, योग्यता, वेतनमान और अन्य शर्तों के लिए देखिए डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की वेबसाइट www.ids.nic.in। भारत सरकार का उपक्रम बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। उपप्रबंधक विपणन, सहायक प्रबंधक वाणिज्यिक, उपप्रबंधक सहायक प्रबंधक फीको प्रकार्यात्मक, मुख्य प्रचालन अधिकारी, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, अधिकारी प्रचालन, अधिकारी ट्रैवल, कनिष्ठ अधिकारी ट्रैवल, यूनिट हेड, कनिष्ठ अधिकारी आयात प्रचालन, कनिष्ठ अधिकारी विद्युत और रखरखाव, अधिकारी उत्पादन, सहायक प्रबंधक बिक्री और विपणन, अधिकारी वाणिज्यिक, अधिकारी लेखा और वित्त, अधिकारी बिक्री और विपणन तथा कनिष्ठ अधिकारी लेखा और वित्त। इन सभी पदों के लिए एक एक रिक्तियां उपलब्ध हैं। केवल इन पदों को छोड़कर ये पद हैं अधिकारी वाणिज्यिक, अधिकारी लेखा एवं वित्त और अधिकारी बिक्री एवं विपणन, जिनके लिए पदों की संख्या 3 है। विस्तृत जानकारी, पात्रता मानदंड, आयु, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव, आयु में छूट तथा आवेदन प्रक्रिया की जानकारी के लिए देखिए बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट www.bamarlorry.com/careers/current openings। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार आकर्षिता, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड यस, आकर्षिता हैज ऑलरेडी अपडेटेड यू टू व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन टुडेज शो। आज वे दस्तूर हम देश की परिक्रमा पे निकलेंगे एंड वील गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर स्टेशन विद सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज, बिकॉज आकर्षिता सारी खबरें तो हम लोग अपने बुलेटिन में नहीं समेट पाते ऑफकोर्स, एंड देर आर स्टिल सो मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैट नीड टू shared with our very special listeners. So that's why we are here every day exactly at 4:30 to bring those stories to you.
1: और सायरा, आजकल के टाइम में जब नेगेटिव न्यूज इतनी ज्यादा हावी है तो हम कुछ पॉजिटिव खबरें भी लाते हैं अपने साथ। बहुत ढेर सारे जो हमारे राज्य हैं वहां से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती ही है, तो कहीं ना कहीं आजकल की जो डिमांड है वो पॉजिटिव न्यूज भी है।
2: एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग दीज डेज दैट वी शुड लुक फॉर पॉजिटिविटी अराउंड, नॉट जस्ट यू नो इन डिफरेंट अदर प्लेसेज बट ऑल अराउंड अस। एंड आई थिंक दैट विल बी ओनली एबल टू मेबी सी इट आकर्षिता व्हेन वी हैव अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। कहते नहीं, अगर पानी का ग्लास कुछ लोग के लिए आधा भरा है दूसरों के लिए आधा खाली भी है, सो इट्स योर पर्सपेक्टिव दैट मैटर्स मोस्ट। सो बट नॉनदलेस वी मेक एन एफर्ट दैट वी ब्रिंग गुड हैप्पी एंड पॉजिटिव स्टोरीज इन परिक्रमा। सो व्हाई नॉट स्टार्ट विद द हेडलाइंस फर्स्ट आकर्षिता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की।
2: India Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement comes into force, gives Indian exporters duty-free market access in Oman to 98% of tariff lines.
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया, 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ।
2: Gross GST collection rises to over 1,94,000 crore rupees in May.
1: पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज, अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए।
2: And India ends impressive campaign at Asian Under 20 Athletics Championships with 19 medals including 10 gold in Hong Kong. And now we open our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today we are going to talk about the PM Swanidhi scheme that has completed 6 years today. Well, we bring you stories that live not in headlines alone but in the heartbeat of everyday life. Today we take you to the narrow lanes, the crowded markets and vibrant corners of India's cities and towns, where a quiet revolution has been unfolding for the past 6 years. A revolution powered by small cards, small loans and very big dreams. It is the story of PM Swanidhi scheme, which has now completed 6 years. Look around any busy Indian market. A fruit seller is arranging mangoes. A tea stall is steaming in the morning rush while a cobbler under a tree is carefully stitching a shoe. A vendor selling phone covers, bangles and other knickknacks. For decades, these small entrepreneurs formed the invisible backbone of urban India. But access to formal credit, well, that was often out of reach. That's where the story begins.
3: PM Swanidhi mein.
4: हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं। अब हमारा कर्तव्य है उन्हें ताकत

0: पर बनाने का।
1: कोरोना लॉकडाउन से प्रभावित रेडी पटरी वालों के लिए है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि में 10,000 रूपए तक का बिना किसी सिक्योरिटी के लोन, समय से भुगतान पर 7% की दर से ब्याज सब्सिडी और अगली बार ज्यादा लोन भी पा सकते हैं।
2: इतना ही नहीं, डिजिटल लेन देन पर 1,200 रूपए तक का सालाना कैशबैक। आत्मनिर्भर होगा रेडी पटरी का हर जन जब मिलेगा पीएम स्वनिधि से धन। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें पीएम स्वनिधि वेबसाइट या संपर्क करें नजदीकी म्युनिसिपैलिटी से।
1: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या हो अगर रेहड़ी पटरी वालों को बिना किसी हिचकिचाहट के ऋण दिया जाए? जी हाँ, ये योजना इसी बारे में है। पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 3 अलग अलग चरणों में बिना किसी गारंटी के लोन मिलता है। एक बार में 15,000, फिर 25,000, उसके बाद 50,000। कोई भारी भरकम कागजी कार्रवाई नहीं, कोई प्रॉपर्टी की गारंटी नहीं, बस एक मौका। और कई लोगों के लिए तो ये उनका पहला औपचारिक लोन है। और शायद अगर हम बात करें तो जो रेहड़ी पटरी हैं या जिनके पास कोई ऐसा कुछ नहीं होता जो ऐसा कोलेटरल दे सके, उनके लिए ये बहुत मुश्किल होता है लोन लेना। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे बहुत छोटे जो है रेहड़ी पटरी ठेला लगाने वाले, उनके लिए बहुत ही सकारात्मक कदम है कि वो आत्मनिर्भर बन पाए। और कहीं ना कहीं ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक अहम कदम है।
4: Well, that's right, Akarshita. And if we talk about the scale, because Swanidhi isn't small in impact. Since its launch 6 years ago, over 1.12 crore loans have been disbursed, more than 75 lakh street vendors have benefited, and over 17,800 crore rupees have been provided as credit support. But numbers alone don't tell the full story. If you stand in a crowded bazaar where life begins before sunrise, here every vendor has a story, and many of them now share a common turning point, that is Swanidhi. Earlier, some of them borrowed money daily just to buy milk and even tea leaves. Interest was high and pressure was constant. Now, when they get a government loan, their shop feels stable. For some vendors, the biggest change is digital payment. I think that is a revolution that has come, especially with UPI, isn't it? And well, even small customers, they pay by UPI. No more worrying about change or cash shortages. UPI beep you hear in the small nook and lanes of busy markets. Well, that's become the new sound of India's street economy.
3: और सायरा, अगर बात करें इस योजना की उपलब्धियों की, तो 2020 में शुरू की गई इस योजना ने अब तक, जैसा कि आपने बताया, कि 75 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाया है, जिनमें 55 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। आज हम देखते हैं कहीं भी रेहड़ी पटरी वालों को, इनफैक्ट एक फुल्की तक खाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे QR कोड लगा रहता है, स्कैनर लगा होता है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इस योजना के तहत डिजिटल जो एक कनेक्शन बढ़ा है वो भी काफी ज्यादा सराहनीय है। और इन लाभार्थियों ने 8.96 लाख करोड़ रुपए के डिजिटल लेन देन किए हैं। सिर्फ आप समझ सकते हैं कि आप एक जो शू जो आपका बनाता है वो, उसके पास स्कैनर है, एक सब्जी right. वाले के पास स्कैनर है। तो पहले जो होता था कि छुट्टा नहीं है भैया, अरे भैया डिस्काउंट दे दो, वो जो था वो खत्म हो गया कहीं ना कहीं। और लाभार्थियों को 800 करोड़ रुपए से अधिक के कैश बैक और ब्याज सब्सिडी भी दी गई है। समय पर चुकाने पर ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी भी दी गई है। और सफल चुकान वालों को 30,000 रूपये तक का रूपे क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के तहत परिवारों को अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाता है, और वित्तीय, डिजिटल साक्षरता और खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ ये एक योजना नहीं है जिसमें उन्हें ऋण दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें समाज की मुख्यधारा से भी हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो गरीब होते हैं वो इनमें पिछड़े रह जाते हैं, इंटरनेट हो, फिर चाहे इक्विपमेंट्स की बात हो, चाहे मोबाइल फोन जो है चलाने की बात हो, तो कहीं ना कहीं वो भी इससे जुड़ रहे हैं मुख्य धारा से।
4: दैट्स वेरी राइट आकर्षिता। एंड इफ यू टेक अ लुक व्हाट इकोनॉमिस्ट हैव टू से, वेल दे से दैट द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑफ स्वनिधि इज नॉट जस्ट फाइनेंशियल, इट इज स्ट्रक्चरल। इट ब्रिंग्स स्ट्रीट वेंडर्स इनटू द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम एट स्केल, रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल मनी लेंडर्स एंड क्रिएट्स अ ब्रिज बिटवीन स्मॉल इनफॉर्मल बिजनेसेस एंड इंडियाज ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी।
3: सरकार ने योजना की सफलता को देखते हुए इसे मार्च 2030 तक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, जो अनौपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था को मुख्य धारा से जोड़ने में सफल रहा है। यह वित्तीय समावेशन का सबसे बेहतर उदाहरण है। यह सिर्फ पैसे ही नहीं देता, बल्कि पहचान, क्रेडिट हिस्ट्री और लंबे समय के अवसर भी देता है। अब आप किसी भी शहर में घूमकर देखिए, आपको फर्क साफ नजर आएगा। जैसे कि हमने बात की थी कि सब्जियों की टोकरियों के पास लगे QR कोड, चाय के ठेले जो UPI पेमेंट स्वीकार कर रहे हैं, सड़कों पर चलने वाली रेहड़ियां जिनका कैश फ्लो अब ज्यादा आसान है और जो ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अब आगे बढ़ रही हैं।
4: That's right. Perhaps the most important change, well, that is dignity. Yes, a sense that small businesses are no longer informal in spirit, even if they remain small in scale. They are recognized, supported, and empowered. The government has now extended the scheme until March 2030, as you have just mentioned, Akarshita, signaling that this is not the end but a continuation of a longer journey, a journey where India's street economy becomes stronger, more resilient, and more connected.
3: पीएम स्वनिधि योजना सिर्फ एक सरकारी नीति नहीं है, ये एक ऐसा बदलाव है जो हम सबके आसपास हो रहा है, हमारे गली मोहल्लों बाजारों में। पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों का दृढ़ संकल्प और उनकी उद्यमशीलता देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जन कल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा।
0: अभियान के तहत 5 जून से 21 जून के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर की प्रगति पथ यात्रा आयोजित की जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण और 8 जून से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान, संवाद कार्यक्रम और पैदल मार्च आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून तक मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे। 14 से 16 जून के बीच जन कल्याण मेलों का आयोजन होगा। वहीं 16 और 17 जून को जिला स्तर पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 18 एवं 19 जून को केंद्र सरकार के 12 वर्षों की विकास यात्रा तथा विकसित भारत के संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह अभियान जनता से सीधे संवाद स्थापित करने, लाभार्थियों तक पहुंचने, उनकी अपेक्षाओं को समझने तथा विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को सशक्त जन आंदोलन में परिवर्तित करने का प्रभावी माध्यम बनेगा। राघवेंद्र त्रिपाठी के साथ परिक्रमा के लिए आकाशवाणी गोरखपुर से प्रेमचंद्र गुप्ता।
3: और सायरा, जैसे जैसे पूरी दुनिया में जो पर्यावरण संकट है वो गहराता नजर आ रहा है, हम भारत में भी देख रहे हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में और पर्यावरण संकट को झेलने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं और शायद इन्हीं प्रयासों से ग्रीन कॉरिडोर अभियान भी शुरू किया जा रहा है कई राज्यों में, जिनमें गोवा ने भी ऐसी ही एक पहल की शुरूआत की है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गोवा सरकार पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में एक नई पहल शुरू करने जा रही है। इसके तहत राज्य भर में व्यापक वृक्षारोपण और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन कॉरिडोर अभियान शुरू किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता
5: से। हरित बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार 5 जून से ग्रीन कॉरिडोर अभियान शुरू करने जा रही है। 90 दिनों का यह अभियान राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे चलाया जाएगा और 5 सितंबर तक जारी रहेगा। अभियान के तहत सड़कों के किनारे बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया है कि इस अवधि के दौरान करीब 10 लाख पौधे लगाए जाने की संभावना है। हर पौधा एक हरित भविष्य की ओर कदम है और इसी संकल्प के साथ गोवा एक स्वच्छ, हरित और संतुलित पर्यावरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। परिक्रमा के लिए निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
4: And Akashita, we all know that Akashvani has celebrated 90 glorious years of its service to the nation. And everywhere, even in Delhi, Akashvani, we had a walkathon. And even Akashvani Katak organized a vibrant walkathon that brought together listeners, employees, presenters, anchors and retired staff members as well in a spirited display of unity, wellness and community participation. Let's hear more from our correspondent.
6: The walkathon witnessed participation from more

0: than 400 people reflecting the enduring bond between Akashvani and its audience. The walkathon commenced from the Jawaharlal Nehru Indoor Stadium and passed through various parts of the city, spreading the message of fitness, togetherness and public awareness. Flagging off the walkathon as Chief Guest Justice Savitri Rotha of the High Court of Odisha highlighted the growing importance of physical fitness in contemporary society. Recalling her lifelong association with Akashvani, she said that the programs broadcast by the public service broadcaster had played a significant role in shaping childhood.
1: It's a great privilege for me to be part of this program, 90 years of Akashvani. We have been hearing Akashvani early in the morning before going to school, and hope we keep hearing Akashvani throughout our lives.
0: Justice Sivasankar Mishra and Commissioner of Cuttack Municipal Corporation Kirandeep Kaur Sahota also attended the event. The walkathon not only marked a milestone in Akashvani's illustrious journey, but also reinforced its commitment to public engagement, social awareness and nation building through meaningful community initiative. For Parikrama, this is Itishri Singh.
2: कूनों के जंगलों में चीतों के पंजों के निशान और गहरे होते जा रहे हैं। चीता परियोजना की ताजा खबर क्या है और ये कामयाबी कितनी बड़ी है, बता रहे हैं भोपाल से आकाशवाणी संवाददाता अभिनव गोयल।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी चीता परियोजना को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। हाल ही में मादा चीता निर्वा और उसके तीन शावकों को बाड़े से निकालकर खुले जंगल में छोड़ा गया। इस नई बढ़त के साथ अब कूनो के खुले वन क्षेत्र में घूमने वाले चीतों की कुल संख्या 20 हो गई है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक निर्वा के साथ छोड़े गए तीन शावकों में दो नर और एक मादा हैं। इनकी उम्र करीब 13 महीने है। इन सभी को श्योपुर जिले के पालपुर ईस्ट रेंज के आहेरा पर्यटन क्षेत्र में रिलीज किया गया है। चीता परियोजना के फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि सभी चीते पूरी तरह स्वस्थ हैं और जंगल के माहौल में अच्छी तरह ढल रहे हैं। उन्होंने इसे परियोजना की बड़ी उपलब्धि बताया है। जंगल में छोड़े जाने के बाद इन चीतों की रेडियो टेलीमेट्री सिस्टम के जरिए 24 घंटे निगरानी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर कूनो नेशनल पार्क से इस परियोजना की शुरुआत की थी। उन्होंने खुद नाम्बिया से लाए गए पहले 8 चीतों को जंगल में छोड़ा था। पीएम नरेंद्र मोदी की इस पहल के बाद से कूनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। परिक्रमा के लिए अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
2: विख्यात गायिका पद्म भूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर के पार्थिव देह का आज मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। उनका कल 89 वर्ष की आयु में मुंबई स्थित उनके निवास स्थान पर निधन हो गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारी मुंबई संवाददाता के पास।
4: सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी, जिसके कारण कई श्रोता उनके गीतों को लता मंगेशकर के गीत समझ बैठते थे। लेकिन संगीत अभ्यासक और गायिका डॉक्टर मृदुला दाढ़े जोशी का कहना है कि इस समानता के बावजूद सुमन कल्याणपुर की आवाज में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनकी वजह से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। सुनते हैं खुद मृदुला दाढ़े जोशी से।
5: सुमन जी की आवाज, उनकी गायकी, इन चीजों का विचार अगर हम किसी अन्य सुर के साथ, अन्य आवाज के साथ ना करें, तो वो सुमन जी को सही मायने में श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि कई सारी बातें ऐसी है जो सुमन कल्याणपुर जी को अलग स्थापित करती है। खास तौर पर उनकी आवाज में जो एक वाइब्रेटो था, उनकी आवाज एक अलग किस्म से वाइब्रेट होती थी, कंपित होती थी, और ये सिर्फ और सिर्फ सुमन जी की आवाज में ही हम पाते हैं।

0: उन्होंने जो गाने गाए हैं वो आज तक और ऐसे ही रचे बसे रहेंगे हमारे जहन में।
1: हिंदी फिल्म संगीत के सुवर्ण युग की साक्षी और रचयिता सुमन कल्याणपुर के निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त होने की भावना चारों ओर व्यक्त की जा रही है। परिक्रमा के लिए मुंबई से मैं अंकिता आपटे।
2: And now it's time to take a look at

सिर्फ 6 साल की उम्र में नरगिस ने 1935 में आई फिल्म तलाश हक के अभिनय की शुरुआत की थी इसी फिल्म से, और 1940 और 50 के दशक में नरगिस ने कई फिल्मों में काम किया और 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया नरगिस की सर्वाधिक चर्चित फिल्मों में से एक रही। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी नामित किया गया था। आइए सुनते हैं इसी फिल्म से ये गीत।

0: भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया।
1: Now we are remembering Ismail Darbar today, and of course we all know that he was a composer and singer as well. लेकिन उनकी सबसे ज्यादा चर्चित कॉम्पोजिशन रही फिल्म हम दिल दे चुके सनम की, and let's see if we have a song.

0: और सायरा अब समय हो चला है अपने श्रोताओं से हमें अनुमति लेने का, और तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और सायरा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति

0: ओम मिन आउ लाइन ने आज नई दिल्ली में ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के बारे में द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत के साथ बातचीत के लिए कल मुंबई भी जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए आज से लागू हो गया है। इस समझौता पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण, चमड़ा, ऑटोमोबाइल और समुद्री उत्पाद जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
1: I am confident that this comprehensive agreement
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: Of our shared future.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर श्री गोयल के एक लेख को साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता भारतीय निर्यातकों को बाजारों में विविधता लाने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। इस दौरान क्षेत्र में निर्बाध व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्र के अन्य वैध उपयोगों के लिए मजबूत समर्थन भी व्यक्त किया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियों पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रहा है।
3: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक महिला की उन्नाव स्थित जिला विधि सेवा प्राधिकरण के 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके पति ने जिला विधि सेवा प्राधिकरण के समक्ष दर्ज समझौते को तलाक का निर्णय मानकर पुनर्विवाह किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में गरज और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Anucha Kumar. Prime Minister Narendra Modi and visiting Myanmar

नमस्ते, हेलो, कैसे हैं आप? शाम कैसी गुजर रही है? पहली जून की, हाँ जी, देख लीजिए मौसम भी कैसे बदल रहा है, हम भी कैसे तप रहे हैं। खैर, मौसम बदलता है, आना जाना जिंदगी का नियम है, फिर भी खलती है ना कमी। जो लोग हमें बहुत अजीज होते हैं, बशीर बद्र साहब नहीं रहे, हर दिल अजीज शायर बशीर बद्र साहब की याद में आज कुछ उनकी शायरी पढ़ेंगे और आपको सुनाएंगे, अच्छे अच्छे गीत गाते गुनगुनाते हैं। तो क्या कहा जाए उनके बारे में? देखिए, बशीर बद्र साहब ऐसे शायर हैं जिन्होंने कभी भी भारी भरकम लफ्जों का इस्तेमाल नहीं किया और उनकी शायरी हमेशा दिल को छू गई है, उससे कम नहीं। वो ऐसे शायर हैं जिनकी शायरी को मैंने ट्रक के पीछे भी लिखे देखा है, तो आप समझ जाइए कि वो किस तरह से हर एक के दिल में उन्होंने जगह बनाई थी। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। बशीर बद्र साहब की याद में गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप, आपके साथ है हम, रूमी मलिक।

गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। बात हो रही है बशीर बद्र साहब की। इनका जन्म 15 फरवरी 1935 को हुआ था और जब ये 7 साल के थे ना तो इन्होंने सबसे पहला शेर अपना लिखा था। हाँ, वो शेर भी इन्होंने बताया एक बार एक साक्षात्कार में, वो आपको बताते हैं। 7 साल की उम्र में बशीर बद्र साहब लिख रहे, हवा चल रही है उड़ा जा रहा हूँ, तेरे इश्क में मैं मरा जा रहा हूँ। ओहो, मरा तो क्या है, पिताजी ने खूब पिटाई की इनकी और शायरी से दूर रहने की हिदायत दी। पर ऐसा नहीं है, जो होना होता है तकदीर को मंजूर जो होता है वही होता है। ऊपर वाला हमको किसी काम के लिए भेजता है, वो काम उन्होंने बखूबी निभाया। तो डॉक्टर बशीर बद्र का जो जीवन था वैसे बहुत संघर्षों में गुजरा था। 1987 की बात है, काफी दंगे हुए थे तो इनका मेरठ में घर था और वहां पे लाइब्रेरी भी थी, पुस्तकालय भी था, तो वो जला दिया गया था। वो इससे इतना ज्यादा दुखी हुए, इस घटना से बहुत ज्यादा उनके मन में बहुत गहरे स्तर पर इस घटना ने प्रभावित किया और इसी पीड़ा की छाया उन्होंने अनेक गजलों और शेरों में व्यक्त की। व्यक्तिगत दुख को उन्होंने अपनी रचनात्मक शक्ति बना लिया। उस दौर में उन्होंने ये मशहूर शेर लिखा था, आपने सुना होगा, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग

जुट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। मुशायरे की दुनिया में 1974 से 90 तक का जो दौर था उनके रचनात्मक जीवन का अहम दौर माना जाता है।

गाते गुनगुनाते का सफर चल रहा है। बशीर बद्र साहब की बात कर रहे हैं। हर दिल अजीज शायर, क्या कहूं, मेरी अपनी इतनी ज्यादा एक यादें जुड़ी हैं सचमुच में, बताऊंगी कुछ देर बाद आपको या अभी बता दूं, एक बातें इतनी सारी बताने की हैं कि एक एक करके बताऊंगी, है ना। तो एक साहित्यकार हैं प्रोफेसर अली अहमद फातमी, वो कहते हैं कि 70 से 80 का जो दशक था उसमें डॉक्टर बशीर बद्र का बहुत नाम हुआ करता था। तो जब भी बशीर बद्र साहब इनसे मिलते थे, प्रोफेसर अली अहमद फातमी से, तो कहते थे, अरे भाई मैं तो डिमांड एंड सप्लाई का शायर हूँ, श्रोताओं को जो पसंद है वही सुनाता हूँ। तो आप ये सोचिए कि अब जब डॉक्टर बशीर बद्र नहीं है तो पॉपुलर मुशायरे को कितनी क्षति पहुंची है ना। तो कितने कमाल की बात है कि बिना कोई ऐसा भारी भरकम लफ्ज इस्तेमाल किया, बिना ये दिखाए हुए कि कितने ज्यादा वो रिफाइंड हैं और कितने अदब की उनको जानकारी है, उन्होंने लोगों की भावनाओं पे बात की। और कभी भी आप बात करेंगे उन लोगों से जो उन्हें जाती तौर पे जानते थे, तो पता है क्या कहते हैं कि बशीर बद्र जाती जिंदगी में बहुत कम बोलते थे। देखो जो लोग ज्यादा बोलते हैं, हम लोग ज्यादा बोलते हैं तो फिर लड़ाई झगड़े भी होते हैं, मनमुटाव भी होते हैं। बोलते थे, है ना, मुशायरों में बोलते थे, उसके बाद चैन से बैठते थे। इनका एक शेर है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar.

0: safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: मैं डॉक्टर ऋचा सूद, सीबीएसई नेशनल अवार्डी प्रिंसिपल और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट हूं। 15 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिसमें की 4 स्वर्ण पदक भी हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होना एक बहुत बड़े गौरव की बात है और हम सभी श्रोताओं के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आकाशवाणी ने, मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर, हर छोटे बड़े पड़ाव पर साथ दिया है और हमें संगीत से जोड़कर जिंदा रखा है। अगर जिंदगी में संगीत की मिठास है तो वो आकाशवाणी की वजह से है, वरना शायद हम सब संगीत को जानते ही ना होते। आकाशवाणी ने हर उस मौके पर, हर उस अवसर पर, हर उस उत्सव पर हमें जिंदा रखा है एक लाइफलाइन के जैसे, कि जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन है, दिवाली है, या भाई दूज है, या नया वर्ष है, या किसी का जन्मदिन है। कोई भी ऐसा उत्सव जिसमें आकाशवाणी ने हमारा साथ ना दिया हो, ऐसा नहीं है। चाहे रोमांस हो या ब्रेकअप हो, पढ़ाई हो या अकेलापन हो, पहाड़ों पर हो, मैदानों पर हो, या घर में हो, और आजकल तो कार में भी आकाशवाणी हमारे साथ ही चलता है। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन ने, जो 70-80 के दशक के लोग हैं, उन्होंने तो संगीत आकाशवाणी से ही सुना है और आज भी हमारा पुराना नाता है। मुझे लगता है कि ये बताना बहुत जरूरी है कि हम भाई बहनों में आकाशवाणी पर गीत सुनने के लिए ट्रांजिस्टर को लेने में, चलाने में और छिपाने में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तो एक बचपन में जो खेल जैसा एक नाता है, वो भी है हमारा आकाशवाणी से।

गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके साथ हैं हम रूमी मलिक और हम सबके साथ हैं हर दिल अजीज शायर बशीर बद्र साहब। जी हाँ, उन्होंने एक बार फरमाया था, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझ लेते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझ लेते हैं, अरे उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।

गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप बशीर बद साहब के शेर हो और वाह वाह न हो, क्या दिल गदगद हो जाता है सचमुच में, है ना। मुझे लगता है कि आज के दौर में हमें शायरी की जितनी जरूरत है उतनी पहले कभी नहीं थी। जो मार काट युद्ध, जो जंग लड़ी जा रही है दुनिया में, है ना, तो अमन चैन और प्रेम के हम तो बाशिंदे हैं, है ना भाई। हम तो ऐसे बंदे हैं प्यार करने वाले, तो फिर हम क्यों इसमें पड़े। पर फिर भी एक फितरत है इंसान की, पता नहीं क्यों, कि वो हमेशा एक द्वंद्व चाहता है, वो हमेशा दूसरों से ऊपर उठना चाहता है। कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि कोऑपरेशन हो, है ना, कॉम्पिटिशन की जगह ऐसा कम होता है। लेकिन जो शायर है, शायर क्या कहता है, देखो दुश्मनी, बशीर बद्र साहब का ही शेर है, दुश्मनी जम कर करो, दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब भी हम दोबारा मिले तो शर्मिंदा ना हो। क्या खूब बात कही है, आहा हा हा। मैं तो खुद ही मतलब बिल्कुल गदगद हुए जा रही हूं।

गाते गुनगुनाते सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर। और देखिए बशीर बद्र साहब ने क्या कहा है, क्या फरमाया है। देखिए अंग्रेजी में हम जिसे को कहते हैं ना फेम इज फ्लीटिंग, उसको देखिए कितने सुंदर भाव में स्पष्ट किया है, व्यक्त किया है। गुमान न कर शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, गुमान न कर शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो ऐसे हर दिल अजीज शायर को सलाम, सौ सौ सलाम। इन्होंने लोगों की मनोव्यथा और मन की स्थिति इतनी अच्छे से समझी कि आज ये हमारे दिल में घर कर बैठे हैं। और मुझे मालूम है मेरे इतने कमाल के डिसर्निंग लिसनर्स हैं कि आपको इससे भी ज्यादा खूबसूरत शेर आते होंगे। रूमी मलिक को दीजिए इजाजत, आखिरी गीत के साथ छोड़ के जा रही हूँ। गाते गुनगुनाते में सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड करा सोना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक

0: साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। LPG आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, जबकि 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में हुआ था। हांगकांग में 22वीं एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mai Aung Lai held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides express interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. He said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project.
1: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और ये वक्त है सदाबहार गीत का। सदाबहार गीत में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। नमस्कार।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: राज्यस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारं विधाय पञ्चत्रिंशत् नूतन मंत्रिभ्यः मंत्रिमंडले स्थानं अयच्छत्। अपि च हांगकांग नगरे आयोजितायां द्वाविंशतितमायां एशिया महाद्वीपीयायां अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इति स्पर्धा मालिकायां भारतेन 10 स्वर्ण पदकानि समेत्य 19 पदकानि विजितानि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी म्यांमाया राष्ट्रपतिः ऊ मिन आउ लाइन च अद्य नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमा भारत देशयोः मिथः सुरक्षां सम्पर्कं च समेत्य देशद्वयोः सम्बन्धानां समेपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्य अनन्तरं विदेश सचिवः विक्रम निसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेश व्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय साहमत्यं प्रकटितम्।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता संधि CEPA इति अद्य क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं संधिः देशद्वयस्य आर्थिक रणनीतिक सम्बन्धान् दृढयिष्यति। एकस्मिन् राष्ट्रीय दैनिक पत्रे प्रकाशिते लेखे श्री गोयलः अवोचत् यत् अयं निधिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता संधेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पाद समूहेषु विपणौ प्रतिशतं 98 मिता शुल्कमुक्ति कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः, श्रमिकेभ्यः, महिलाभ्यः, कृषकेभ्यः, मत्स्यजीविभ्यः, सूक्ष्म लघु मध्यमोद्योगेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
3: I am confident that this comprehensive agreement।
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
0: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनायाः 6 वर्षाणि पूर्णानि अभवन्। श्रीमोदी अस्याः योजनायाः प्रशंसां विधाय अवदत् यत् पीएम स्वनिधि योजनया प्रतिभूतिं विना ऋण प्रदानं, वित्तीय समावेशनम् अपि च विकासस्य नवीन अवसराः प्रदत्ताः, येन लक्षशः पथ विक्रेति जनानां जीवने उन्नतिः समागता। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारं अकरोत्। राज्यपालः RN रविः कोलकातायाः लोकभवने आयोजिते समारोहे 35 नूतन मंत्रिभ्यः पदस्य गोपनीयतायाः च शपथग्रहणं कारितवान्। समारोहे मुख्यमंत्रीवर्येण सह अन्य वरिष्ठ नेतारः अपि उपस्थिताः आसन्। नवनियुक्त मंत्रिभ्यः विभागानां आवंटनम् अनन्तरं भविष्यति। शपथ ग्रहण समारोहे स्वप्नदास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शकर घोष च शपथ वचनं स्वीकृतवन्तः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनं राजधान्यां नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्री च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवन्तौ। श्रीसिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षा सम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्रीमाल्सः अवादीत् यत् ऑस्ट्रेलिया भारत

0: तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी 4 लाख के अंदर बिल्कुल कवर होता है और आपका आपका ये कैपिटल गेन अगर 4 लाख से कम है और कोई इनकम नहीं है, ये देख लीजिएगा उसमें प्रदीप, ये देखना पड़ेगा कि और कोई इनकम नहीं है, क्योंकि सभी इनकम्स को जोड़कर देखा जाता है इसमें कि सभी इनकम्स आपकी ऐड करके तब वो 4 लाख से कम आ रहा है, तब वो माना जाएगा, अदरवाइज वो आपको आपका 4 लाख एक्सीड कर जाएगा। तो ये इसको चेक कर लीजिए, बाकी 4 लाख के अंदर प्रिंसिपली वो कवर होता है।
1: गाजियाबाद से हमारे साथ अनिल जुड़ रहे हैं। अनिल जी कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा।
1: नमस्कार
2: सर, मेरा क्वेश्चन ये कि सर मेरी 28 फरवरी को इसी को जीवन श्री पॉलिसी मैच्योर हुई थी, जिसमें मेरा अराउंड 20 लाख आ रहा था
0: जी।
2: तो माई प्लान वॉज कि मैं उसको स्टैगर करके म्यूचुअल फंड में डालू, बट 28 को ही ईरान वॉर हो गया
0: जी।
2: तो सर मैंने उसको अपने 20 लाख को, मैं 64 ईयर्स ओल्ड, मैंने अपने सीनियर सिटीजन पार्क कर दिया है जिसके 2 आता है, लेकिन जो उसका मंथली अराउंड 15,000 आता है उसको मैंने स्किप कर दिया है। क्या मेरी ये स्ट्रेटजी ठीक है? जो मंथली 15,000 अराउंड आ रहा है मेरा, उसको मैंने SIP में कर दिया है फॉर 5 ईयर। थैंक यू सर।
0: अनिल जी, मैं तारीफ करना चाहूंगा, आपके दोनों ही निर्णय बहुत ही समयबद्ध तरीके से लिए गए हैं और आपने दोनों ही बहुत समझदारी से किए हैं। पहला, आपने 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ उसी दिन आपकी पॉलिसी मैच्योर हुई, तो आपने बहुत समझदारी से उसको नहीं किया, क्योंकि उसके बाद मार्केट ने करेक्शन भी किया है, तो आप लेते तो शायद आपका NAV डाउन होता। हालांकि मैं मानता हूं कि लंबे वक्त के लिए आना चाहिए, पर ठीक है, आपने जो आपने उसको सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम में किया और वहां पर 8.8% से ज्यादा का ब्याज आता है, जो बहुत अच्छा है, और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आपको शायद मंथली इनकम की जरूरत नहीं होगी, तभी आप इस पैसे को SIP में डालना चाह रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा निर्णय है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो रिटर्न होगा अनिल जी, ये आप देखेंगे कि जो आपको सीनियर सिटीजन डिपॉजिट से इफेक्टिव रिटर्न आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि उधर एक तरफ पर SIP आपको रिटर्न देगी, पर इसको आप SIP को आपने कंटिन्यू करना है। और मैं यहां प्राची और निशित की इजाजत से ये सबको बताना चाहूंगा, क्योंकि SIP के बारे में इतने सारे सवाल आते हैं
1: जी।
0: लोग SIP से डर के निकल जाते हैं जब मार्केट गिरती है। एक्चुअली देखा जाए तो SIP है ही उसी समय के लिए जब मार्केट गिर रही हो, क्योंकि आप लोअर लेवल्स, आपको याद होगा प्राची थी, मुझे याद है पिछली बार मैंने बताया था कि मैंने उसका नया नाम रखा है सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान, उसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अब मत बोलिए, क्योंकि सब्र की ज्यादा जरूरत है सिस्टमैटिक से। तो मुझे लगता है कि अगर आप उसको रखेंगे तो ये आपको डबल बेनिफिट लेगा और कंपाउंडेड रिटर्न तो आपका कहां का कहां पहुंच जाएगा। मैं प्रशंसा करना चाहूंगा निश्चित और प्राची अनिल जी के बहुत ही सूझबूझ की, और इसी फाइनेंशियल लिटरेसी को मेरे जैसा व्यक्ति ढूंढता है लोगों में, कि लोगों में ये समझ हो। और मैं समझता हूं मार्केट मंत्रा को हमें श्रेय देना चाहिए, क्योंकि मार्केट मंत्रा सुनने वाले सुनते सुनते सुनते सुनते स्वयं ये निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। हालांकि कोई डाउट हो तो आप कभी भी फोन कर सकते हैं, हमें तो खुशी होती है। तो बहुत अच्छी बात है अनिल जी, दोनों निर्णय मैं आपके एंडोर्स करता हूं।
3: नेक्स्ट कॉलर इज राजेश फ्रॉम दिल्ली। राजेश,
4: हेलो
3: राजेश जी, अपने रेडियो के
4: मार्केट मंत्रा जी, जैसे मैं ये देख रहा हूँ कई दिनों से IT सेक्टर में रिकवर हो रही है, तो ये आने वाले समय में रिकवर होगा कि कुछ डाउन आ सकता है?
0: चलिए राजेश, इसमें ऐसा है कि IT सेक्टर में जितनी भी कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज ने AI में बहुत काम किया है, और उन्होंने AI, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस, उन्होंने भविष्य के लिए अपने आप को तैयार किया है। तो वो कंपनीज, अब क्योंकि यहां कंपनी का तो नाम लेते नहीं है, पर ओवरऑल IT सेक्टर की ब्रेड सुधरी है। इनफैक्ट आज भी अभी आप प्राचीन ने जो खबर पढ़ी है उसमें देखा होगा IT सेक्टर ने रिकवरी दिखाई है। तो मुझे लग रहा है कि सिलेक्टिव तौर पर आपको IT की कंपनीज रिकवर करती दिखेंगी, यानी कि सारा अक्रॉस द बोर्ड हो सकता ना बढ़े, खासकर वो कंपनी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा, हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं, डीप डाइव करना पड़ेगा। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का AI इन्वॉल्वमेंट क्या है, क्या वो खाली बैकएंड का काम करती है, तो जो बैकएंड का करती है उसके रेवेन्यू पे फर्क पड़ेगा। तो ओवरऑल सुधरा है, उम्मीद करते हैं और सुधरेगा। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जब खुल जाएगा और दुनिया सामान्य ट्रैक पर आने लगेगी, तो मुझे लगता है आपको और सुधार देखने को मिल सकता है।
1: मुंबई की जानिब से राकेश हमें फोन मिला रहे हैं। राकेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: हेलो
0: जी राकेश, बताइए।
5: हाँ शरद जी,
0: जी
5: हाँ, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग।
5: मेरा क्वेश्चन है कि मेरा बैंक में FD है
0: जी,
5: उसका इंटरेस्ट 50,000 से ऊपर आता है
0: जी।
5: हाँ, तो मुझे फॉर्म नंबर 121 भरना पड़ता है
0: जी।
5: लेकिन अगर मेरा कितना इनकम, मैं नॉर्मल सिटीजन है, तो मेरा इनकम 12 लाख से कम होना चाहिए या 4 लाख से कम होना चाहिए, जरा मुझे बताएं तो मैं
0: जी राकेश जी, अगर आपका बैंक इंटरेस्ट आता है, आपने कहा 50,000 से ऊपर आता है, तो इसमें जो रिबेट होता है, पिछले साल तो हम उसको 87A का रिबेट ही कहते थे, अभी तो रिटर्न पिछले साल की फाइल हो रही है, तो वो 12 लाख तक आप ले सकते हैं। यानी कुल मिला के मैं बोलूं तो

0: आपका जो 6 लाख रुपए साल का इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि 50,000 हर महीने आ रहा है तो 6 लाख हो गया, पूरा का पूरा आपका माफ हो जाएगा। आपका फॉर्म 121 जमा कराना, मैं बताना चाहूंगा प्राची और निशित को, इस फॉर्म को पहले 15G और 15H बोला करते थे, अब नए प्रावधानों के अंदर इसका इनका नंबर बदल गया है। बिल्कुल राकेश जी, आप ठीक ट्रैक पे हैं, पूरा माफ है। देखिये हम मैं ये सोच रहा था निशित प्राची, कितने लोगों का टैक्स बच जाता है छोटी छोटी एक्सपर्ट्स की एडवाइस से, तो कोई लड्डू बड्डू तो रेडियो के थ्रू आना बनता है, हालांकि आ नहीं सकता है, खुशी जरूर होती है जी।
1: बिल्कुल।
2: राजेंद्र फ्रॉम गुरुग्राम, राजेंद्र जी सवाल पूछें अपना।
3: जी एक तो मैं अवस्थी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, इतनी अच्छी हिंदी में अच्छे से समझा रहे हैं लोगों को।
0: सर मेरा नाम अवस्थी नहीं, कोहली है, शरद कोहली।
3: कोहली साहब, सॉरी कोहली साहब, बहुत ही अच्छी तरह से, आई एम वेरी सॉरी फॉर माय दिस।
0: नहीं नहीं धन्यवाद सर, व्हाट्स देयर इन द नेम।
3: आपकी जो सुझाव है वो भी बहुत अच्छे हैं
0: जी,
3: और आपका जो समझाने का तरीका बहुत अच्छा है।
0: धन्यवाद। सवाल पूछिए सर।
3: पर मैं ये बोल रहा हूँ, एक्चुअली इट्स काइंड ऑफ अ सिचुएशन कि इंडिया एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर इज लाइक गोइंग अराउंड द वर्ल्ड एंड सेइंग दैट वी आर डेवलपिंग इन आवर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड ऑल, बट यू लुक एट द हाउ द कंडीशन ऑफ अवर सैनिटेशन इन इंडिया, पीपुल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, हाउ व्हाट ओपिनियन दे विल हैव ऑफ इंडिया लाइक एंड इंडियन प्रोडक्ट एंड हाउ इट विल अफेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया।
0: वेल आई थिंक राजेंद्र जी, यू नो यू आर राइट, बिकॉज आई थिंक ही इज प्रॉब्ली रिफरिंग टू टॉयलेट सम टाइम व्हेन पीपल यूज हु कम फ्रॉम आउटसाइड, दे डोंट फाइंड द टॉयलेट्स वेरी क्लीन सैनिटेशन। पर पहले से तो राजेंद्र जी, इफ यू सी द नंबर ऑफ टॉयलेट्स विच हैव बीन बिल्ड, इफ यू सी द सिचुएशन बिफोर दिस व्हेन पीपल यूज टू गो फॉर ओपन डेफिकेशन, यू नो तो खेतों में जाते थे, अब तो घरों में टॉयलेट है। आई थिंक वी आर ऑन ट्रैक, येस, फॉर सच अ लार्ज कंट्री लाइक आर्स विद 1.4 बिलियन पीपल, राजेंद्र जी आई डू एडमिट दैट इट टेक्स टाइम एंड यू नो पीपल्स हैबिट ऑल्सो। आपको ऐसा नहीं लगता है, बताइए मुझे निश्चित और प्राची, कि हम लोग जब पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं, हालांकि अर्थशास्त्र का मार्केट मंत्रा का शायद क्वेश्चन ना हो, पर हम लोग जब उसको यूज करते हैं तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, उनका जो बेसिक सैनिटेशन हैबिट्स हैं कि कहीं कुछ गंदा है तो उसको साफ करके जाएं, अब पानी वॉश बेसिन पे, तो मुझे लगता है हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बनती है।
1: बिल्कुल। फरीदाबाद से हमारे साथ सुभाष जुड़ रहे हैं। सुभाष जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, सवाल पूछिए।
4: हेलो
1: जी, अपना सवाल पूछिए।
4: नमस्कार।
1: नमस्कार
0: नमस्कार जी।
4: सर मैं ये पूछना चाहता था कि आप जब भी मार्केट डाउन होती है तो हमें ये बताया जाता है कि एफआईआई जा रहे हैं इसलिए वो पैसा निकाल रहे हैं, मार्केट डाउन हो रही है
0: जी,
4: या फिर वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से
0: जी
4: बताया जाता है। लेकिन सर ये बता सकते हैं कि हमारा सेबी या फाइनेंस मिनिस्ट्री कुछ इस बारे में कुछ कर रहे हैं जिससे कि ये एफआईआई ना जाए, जिससे कि हमारी मार्केट हो जाए।
0: सुभाष जी मुझे समझ आ गया, इसके बारे में मैंने, मुझे याद होगा पिछली बार फिर प्राची थी और मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। देखिए एफआईआई का जाना सुभाष जी कोई बहुत बहुत ऐसी बात नहीं है कि हमारे ऊपर कोई इल्जाम लग रहा है जिसको रोक, और सरकार क्यों रोकेगी। आप मान लीजिए आपने कहीं 100 रुपए लगाया और आपके 150 रुपए हो गए और सरकार कहे नहीं नहीं सुभाष जी अभी आप प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता। उन्होंने यहां कम प्राइस पे लगाया था, आज उनको ज्यादा प्राइस मिल रहा है तो उनको राइट है जाने का। और मुझे लगता है हमारी मार्केट आत्मनिर्भर बन रही है, इनका योगदान भारतीय मार्केट में 25% तक था, आज 15-16% तक आ गया है, तो मुझे लगता है भारतीय पैसा उस पैसे को रिप्लेस कर रहा है, तो कोई बहुत चिंता की बात नहीं है सुभाष जी, जाने दीजिए इनको जाते हैं, हमें तो इनको जब आना होगा वापस भी आएंगे, ये तो मार्केट ढूंढते रहते हैं, कभी थाईलैंड कभी वियतनाम कभी कोरिया कभी जापान, ये लोग मार्केट में घूमते रहते हैं, उनको वापस भी आएंगे और जा रहे हैं, तो बहुत विशेष चिंता की बात नहीं है, उसको सरकार रोक नहीं सकती। सरकार रोकती है तो आप एक तरह से फिर तो ये आएंगे ही नहीं, वो कहेंगे हमारा तो हाथ पकड़ लेंगे जाने से पहले, तो फिर वो पैसा क्यों लगाएंगे, तो इसको इस तरीके से देखना चाहिए।
1: आइए रुख करते हैं एशियन और यूरोपियन बाजार की तरफ। आज 5 प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में से 3 सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 3.7% बढ़कर 8,788 के नए उच्चतम स्तर पर पहुंचा। जापान का निकेई और हांगकांग का हैंगसैंग लगभग 1% बढ़ा। वहीं चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स लगभग 0.3% नीचे आया। सिंगापुर का शेयर बाजार छुट्टी के कारण बंद रहा। आर्थिक पक्ष की अगर बात करें श्रोताओं, तो सेमीकंडक्टर सुपरसाइकिल के कारण दक्षिण कोरिया का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में मई माह में 53% बढ़कर लगभग 88 अरब डॉलर के नए मासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। व्यापार उद्योग और संसाधन मंत्रालय के अनुसार यह लगातार 3रा महीना है जब दक्षिण कोरिया का निर्यात 80 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। बात अगर प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों की करें तो आज प्रमुख यूरोपीय माफ कीजिएगा प्रमुख यूरोपीय शेयर सूचकांकों की करें तो यूरोपीय सूचकांकों में मिला जुला रुझान देखने को मिला। जर्मनी का डैक्स

0: और फ्रांस का कैक मामूली रूप से बढ़ा, जबकि लंदन का फुटसी अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 0.2% से अधिक नीचे कारोबार करता नजर आया।
1: एंड आवर नेक्स्ट कॉलर इज केशव फ्रॉम दिल्ली। केशव जी, सवाल पूछिए।
2: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
2: कोहली जी नमस्कार।
3: नमस्कार
2: कोहली जी, जो हमारा जीएसटी लास्ट ईयर हमारा गवर्नमेंट ने कम किया था हर चीज में
3: जी,
2: तो उसका जो असर है वो अब दिखने आ रहा है कि अब जो प्रिंटिंग जो आ रही है सामानों पे प्रिंट होके आ रहा है
3: जी,
2: मैक्सिमम प्राइस जो होता है, तो अब इन लोगों ने अब ठीक रास्ता पकड़ा है
3: जी,
2: क्योंकि कंपनियों ने जब रेट अपने छापने शुरू किए हैं पुराना प्रिंट जो मार्केट में जितना बेचना था बेच दिया
3: जी,
2: अब गवर्नमेंट क्या इस चीज पे पहले से नहीं देख पाती कि ये इन्होंने अभी तक जो प्रिंट के हिसाब से बेच रहे थे तो अब ठीक आया है, तो ये अपने आप गवर्नमेंट जब तक पब्लिक को उन्होंने लूटा और अब रेट आ रहा है कोहली अब सही आ रहा है, इसके लिए सरकार की कुछ जिम्मेदारी बनती है।
3: देखिए केशव, हमने मार्केट मंत्रा में भी, मुझे याद है मैं स्वयं था हूं, ऐसा जीएसटी के कुछ अफसरान थे जिन्होंने इस बात पे चर्चा करी, बहुत सारी शिकायतें आई देश भर से, उन शिकायतों पे एक्शन भी केशव जी लिया गया, और जिन लोगों ने उस टाइम ऐसा कुछ किया है उन पे अभी भी एक्शन लिया जा रहा है, तो आप निश्चिंत रहे कम से कम अब तो ठीक हो गया है, और समय भी लगता है, पुराना स्टॉक होता है होलसेलर के पास, स्टॉकिस्ट के पास, रिटेलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो उसमें वक्त लगता है, पर बहुत सारा एक्शन आपको मैं बताना चाहता हूं कि लिया गया। जीएसटी के अफसरान ने खुद हमें ये बात आके बताया, एक ग्रीवेंस पोर्टल खोला गया था, उसमें बहुत शिकायतें आई थी और उस पर एक्शन लिया गया। चलिए, मुझे खुशी इस बात की आपको अब ठीक कीमत पर मिल रहा है।
1: एंड इन सम अदर स्टोरीज, इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ एक्सपेंडेड बाय 4.9% इन अप्रैल दिस ईयर ऑन एनुअल बेसिस, प्रोपेल्ड बाय अ रोबस्ट ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द रिवैम्प्ड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी सीरीज विद 2022-23 एज द न्यू बेस ईयर। एज पर द डेटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी, ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सपेंडेड बाय 6.2%, द इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई सेक्टर रिकॉर्डेड अ 4.9% इंक्रीज ड्यूरिंग अप्रैल, वाइल वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट पोस्टेड अ 6.6% ग्रोथ। हाउएवर द माइनिंग एंड क्वारिंग सेक्टर proved to be a laggard, decelerating by 5.1%. Secretary of MOSPI, Dr. Saurabh Garg, said that Ministry has revised the base year of the IIP from 2011-12 to 2022-23 with the objective of making the index more representative of the current structure and dynamics of the industrial sector. The Secretary said important gaps in the earlier index have also been addressed. He said that for the first time, gas distribution has been included in the IIP basket, strengthening the coverage of the energy sector.
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। ये पिछले वर्ष मई में 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय जीएसटी का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य जीएसटी का 45,143 करोड़ और एकीकृत जीएसटी का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में लगभग 27% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इनमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई।
1: एंड इन सम अदर स्टोरीज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड विजिटिंग म्यांमार प्रेसिडेंट यू मिंग ऑन Hailing today held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues which covered trade and economic ties, defense and security related issues among others, briefing media in New Delhi. After the talks between the leaders, Foreign Secretary Vikram Misri said that both sides expressed an interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. He said both sides underlined the importance of connectivity for people-to-people contacts and agreed to work as quickly as possible towards completion of Kaladan multi-modal transit transport project on enhancing economic cooperation in critical minerals and rare earths. The Foreign Secretary said that issues related to critical minerals and rare earths did come up during the discussions today. With talks and agreements with Myanmar and the way it is looking forward, how important do you see, especially, you know, when we see this in the backdrop of the West Asian crisis and also the rare earth and critical minerals sector, if we can?
3: Well, Myanmar has been our strategic partner and a neighbor for a very long time, and I feel any alliance, any economic cooperation, any pact signed is of utmost

0: most importance. So I think going forward, Myanmar is rich with rare earth minerals. We do know that because of the geographical structure that Myanmar has and the topography that it has. So I think very useful. And the speed at which India is doing alliances with other countries, I think is phenomenal. And I think the world is looking at us from that point of view, Nishit.
1: And Union Minister for Commerce and Industry, Piyush Goyal, has said that India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, SEPA, which was signed 6 months ago, has come into force from today. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that SEPA is not simply a trade agreement. It is a statement of civilizational trust. He added that as this agreement takes effect, India's workers, MSMEs and exporters in various sectors, including textiles, sportswear, agri products, pharma and medical devices, leathers, automobiles and marine products will step on to be a preferential access against the competitors in Omani market.
2: I am confident that this comprehensive agreement will add a new momentum to our ties with Oman. From day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's exports to Oman. SEPA is a blueprint of our shared future.
3: और दिल्ली से हमारे साथ सीएन बोर्ड जुड़ रहे हैं. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: हाँ जी, नमस्कार मैडम. नमस्कार शरद जी.
0: नमस्कार.
4: मेरा सवाल एक ये है, आज मैंने एक न्यूज देखा कहीं पे ऑनलाइन, जिसमें इट वॉज मेंशन दैट इंडियन रूपी हैज बिकम द वन ऑफ द वीकेस्ट करेंसी इन द साउथ ईस्ट एशियन मेजर करेंसी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया. तो इस चीज का हमारे आने वाले जो भी मार्केट है उसमें कैसा इम्पैक्ट रहेगा, और which sectors will benefit from it and which sector we should stay away from, citing this trend?
0: I think, Mr. Board, the export-oriented, you know, companies and export-oriented sectors will be benefiting because a weaker rupee helps them. But overall, I think we need to understand it from a perspective that our country is very unique. So a direct comparison with other countries may not be appropriate because of various reasons. I think this requires a very detailed discussion. Mm-hmm. I can see some other callers waiting, so we'll move on to that.
3: Ramesh, Delhi se hame call mila rahe hain. Ramesh ji, apna sawal poochiye.
5: MM team ko namaskar. मैम जी, मेरा क्वेश्चन ये है शरद जी से. मैडम, मैंने पोस्ट ऑफिस के एन एस स्कीम मैडम मैंने लिए थे 1991 में
0: जी.
5: तो मैडम वो गवर्नमेंट से ऑर्डर है कि वो स्कीम कंटिन्यू नहीं है, तो मैंने विड्रॉ कर लिए पैसे
0: जी.
5: तो मैडम क्या उससे मेरा टैक्स लगेगा? मेरा ये क्वेश्चन था.
0: एनएससी इन्होंने जिक्र किया प्राची, मेरे ख्याल एनएससी से मतलब था, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट शायद आप कहना चाह रहे थे. बिल्कुल मेच्योर हो गए हैं तो उस पर रमेश जी टैक्स लगता है. ये टैक्स एग्जेम्प्ट स्कीम नहीं है. अगर एनएसएस है, शायद आप एनएसएस को एनएससी बोल गए, क्योंकि एनएसएस में लोगों को फोन आ रहा है, वो मैच्योर हो चुकी है. दोनों ही टैक्सेबल है रमेश जी. पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं, पीपीएफ को छोड़ के ज्यादातर सारी टैक्सेबल होती हैं. तो बिल्कुल रमेश जी, आप उस पर टैक्स कैलकुलेट करिए. उसकी मैच्योरिटी वैल्यू पे जो साल का इंटरेस्ट आता है, या मैच्योरिटी वैल्यू माइनस द अमाउंट इन्वेस्टेड, उस पर टैक्स लगेगा.
1: मूविंग ऑन टू क्रूड, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस क्लाइम टुडे एज टेंशंस एस्केलेटेड इन वेस्ट एशिया. ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग ओवर 2.9% हायर एट $93.80 पर बैरल इन द इंट्राडे ट्रेड. West Texas Intermediate crude was also trading more than 3.6% up at $90.54 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 1.9% up at 1,59,770 rupees per 10 grams, while silver was trading over 0.3% up at 2,68,630 rupees per kilogram a short while ago.
3: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाला सोना आधा प्रतिशत गिरकर 1,54,815 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, और जुलाई अनुबंध वाली चांदी 0.0% बढ़कर 2,67,809 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. सोने और चांदी के दाम पर आपसे एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा.
0: दो जल्दी से बात मैं बताना चाहूंगा श्रोताओं को, कि एक तो बॉन्ड यील्ड अमेरिका में महंगाई की वजह से बढ़ रही है, जिसकी वजह से सोना चांदी प्रेशर, और भारत में ये जो एडजस्टमेंट आपने देखी है जब से इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, उसका कारण यह था कि स्पॉट गोल्ड में थोड़ी सी डिमांड कम हुई है. प्रधानमंत्री जी ने जब से अपील करी और जब से इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी, तो थोड़ी जो फिजिकल गोल्ड में डिमांड कम हुई है, तो आपको एमसीएक्स में एक प्राइस एडजस्टमेंट दिख रहा है. यही 158,59,000 था, इसी लेवल पे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, तो वहां थोड़ी सी करेक्शन इस समय नजर आ रही है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे तमाम श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए।
0: इट वाज माय प्लेजर, थैंक यू,
1: थैंक यू सो वेरी।

0: much, Sharad ji. And before we close, here is a reminder of the headlines once again. Benchmark domestic indices decline. Sensex falls over 500 points. Nifty settles below 23,400. India's industrial output rises by 4.9% in April under the new IIP series. And global crude oil prices surge. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी पर महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि साझा बौद्ध विरासत और सदियों पुराने जन संबंध भारत म्यांमा संबंधों को अनूठी पहचान प्रदान करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। एलपीजी आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, वहीं 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्री परिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दासगुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व

0: इतनी नहीं है, कन्वीनियंट पिक्चर नहीं है कि आप एक बेसिक सुविधा, जैसे आप पावर की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, या पानी की बात कर लीजिए, टॉयलेट्स की बात कर लीजिए, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं जो आम तौर पर अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से जो नहीं हो पाई। और आपने सही कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ भी देखें इस योजना से तो बहुत ज्यादा लाभ होता है, और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं, जिससे ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है, चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति इंप्रूव हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट गर्भवती महिला के लिए ये एक बून की तरह आया है, क्योंकि बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीजेस गर्भवती महिला को गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था, और जल जीवन मिशन से क्या हुआ है, ना सिर्फ पेयजल घर तक गया है, बल्कि बहुत सारी, मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था, वो अब और चीजों में वो व्यस्त हो सकती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन सकती है, वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती है, क्योंकि उसके पास अब वक्त है, घर में पानी आ रहा है। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन बहुत बड़ा प्रभावी कदम है।
1: जी जी जी अदिति, और इसी क्रम में हम आगे बढ़े। शुभ में सैनिटेशन की अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ये एक फ्लैगशिप मिशन जिसे कहें, और जब भी इसे इम्प्लीमेंट किया गया था उसके पहले शायद, पता नहीं, इस तरह की योजना कभी सुनने को नहीं मिली थी। सैनिटेशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन जिसे ओपन डेफिकेशन एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया गया, मास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स, ये कोई छोटी बात नहीं है। शुभ में क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
2: हाँ, ये वाला चीज जो आप देखेंगे
1: जी,
2: कि पानी का सप्लाई, स्वच्छ भारत मिशन, इन सभी चीजों से जो बदलाव अभी दिख रहा है वो है काफी सिग्निफिकेंट। आप इसके पहले एक आम बात थी कि बहुत सारी जगहों पे ओपन डेफिकेशन और उससे चलते जितने सारे तरह की बीमारियां, उनका खासकर मानसून में फैल जाना, बाकी समय में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें एक आम सरफ चीज था कि भाई होता है, क्या किया जाए। इसमें जो अभी जो नेशनल हेल्थ सर्वे के आप डेटा देखेंगे तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये एक से कहते हैं आपका एक मेजरमेंट आ गया है कि कितना और कितना प्रभावी ये सारे बदलाव हुए हैं। अभी आप, मैं आग्रह करूंगा कि कोई आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं, कभी अगर वो ट्रेन का सफर करे, दूर दराज के रास्ते में चलते हुए एक जो कॉमन साइट था ओपन डेफिकेशन का, वो करीब एकदम वैनिश हो गया, और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है। इसमें टाइम लगा, इसमें करने में शुरुआत में बहुत सारे हिचक आए, बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस करने पड़े, लोगों को बहुत सारी हिदायतों के साथ साथ बहुत सारे आग्रह का भी इंटरेस्ट चीजें दिया गया, इधर उधर की जिसे कहते हैं शॉर्टकमिंग्स भी आई, लेकिन इतने साल के बाद अब जाके उनका इफेक्ट लोगों के जिंदगी के ऊपर अभी दिख रहा है। और ये एक, मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज इसलिए है कि ये एक तरफ एक सिविक चेंज आ गया है हमारे देश में, बहुत सारे इलाकों में। अब जिन सारी चीजों की बात करें, जैसे ओपन डेफिकेशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन के साथ उज्ज्वला, या उसके पहले जब जैम ट्रिनिटी, इन सब के चलते लोगों में जो एक नया वार्तालाप का एक सिस्टम आ गया, एक नया जैसे कहते हैं आइडियाज का एक कॉम्बिनेशन बन गया है कि ये सारी चीजें तो जिंदगी में होनी चाहिए, इनका ना होना ही आज आश्चर्य की बात लगता है बहुत काफी जगहों पे। ये जिसे कहते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, एक बहुत बड़ा चीज है डेमोक्रेसी के लिए, बहुत बड़ा चीज है लोगों में अपना भरोसा बनाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि हम इससे आगे चल सकते हैं। ये सारी चीजों के लिए हमें डेली का जो लड़ाई है वो जूझना नहीं पड़ेगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सब हमारे लिए, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और वो उपलब्ध रहेंगी।
1: एब्सोल्युटली शुभमा, आदिति, टॉकिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नेट्स, ऑफ कोर्स शुभमा आल्सो मेंशन अबाउट यू नो द हेल्थ एस्पेक्ट। नाउ हेल्थ इज वन थिंग व्हिच जस्ट कैन नॉट बी ignored, that is one, and of course the importance of it cannot be overstated. If you look at the Western countries, the more advanced economies, they have their own safety nets, they have their own social well, healthcare schemes and so on and so forth. In India, if you talk of maybe let's say 10, 12 years or 15 years back or even more, probably there was not much to offer by any of the governments, if I may say, over the years, over the decades in fact, that they could offer something like that to the common man, especially the poor or maybe the lower middle income group, that kind of. Now with the Ayushman Bharat scheme coming in, it again revolutionized

0: are now reporting self-employment, and that self-employment is not distress employment. It is employment, self-employment that is being made possible for a large number percentage of them because they are confident that they can take on these enterprises and can take on capacity building, capacity, I mean, expansion of their products and services, which wasn't possible earlier. How it will pan out is a very big thing. Remember, we are talking about a population base, which is the largest population base in the world. To be able to create self-employment in that sort of a large population, with being able to support themselves, being able to support their families, being able to carry on the business for long length of time, not being drawn into the race for getting a job. Here, there we are talking of plenty of changes, which is not very easy to think of as just, you know, suddenly that we've done it and it's one-time support. It's not a one-time support. It's something which is actually a result of series of interventions, which brings a scheme like Mudra into being a success that it is being envisaged.
1: Yes. Right, Shubham. Diti, abhi Shubham ne self-employment ki baat ki, stand-up India scheme bhi ek aisi scheme hai, jiske tahat 15,000 प्लस करोड़ लोन अभी तक डिसबर्स किए जा चुके हैं, इस बारे में भी थोड़ा हमें बताएं। और पीएम स्वनिधि योजना जो कि एक बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, एक फ्लैगशिप स्कीम जिसे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये लाभान्वित कर रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे?
2: देखिए, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था कोविड-19 के दौरान। जून 2020 में ये शुरू की गई थी। उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे, जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे, क्योंकि वो सब्जी बेच रहे थे, वो वेयर्स बेच रहे थे, तो हम उसको खरीद रहे थे।
1: इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें,
2: बिल्कुल गिग वर्कर्स की भी स्वनिधि में वो भी काफी हद तक कवर होते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली आइडिया था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके, ताकि वो ऐसा ना हो कि कोविड-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं। तो तब से इतनी इंपॉर्टेंट बन गई स्कीम, और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीजें कर सकते हैं। तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर भी किया है, और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है। और ना सिर्फ ये किया गया है, तीन लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को। पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, वैसे ही दूसरे लेवल पे 20 से 25,000 कर दिया गया है, और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है। और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं। प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम। तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं, और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है। 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के।
1: राइट आदित्य, लेट्स टॉक द वुमेन फोक लखपति दीदी अभियान। ये लगभग 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी, और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है, कुछ बताएं इसके बारे में।
2: जी, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की। और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस छोटी सी एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है।
1: जी,
2: जो 6,000 की रकम तय की गई है, ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा। इस वजह से ये 6,000 पे तय हुई थी। पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की, और अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की। ये 4 स्तंभ हैं। जब तक आप इनको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करते तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाए, जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है। करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं,

0: कि अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आई थी जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में। ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है। तो वहां मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और यूएस का 41.8 है। कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है, और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहां बैठकर, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट, एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं। और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पावर्टी, जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं, उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घटके 5.3% रह गई है। तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है। इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज, जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी, अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म्स चाहिए थे वो इन प्लेस हैं। विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी।
1: जी,
0: अभी
1: जी।
0: हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में हैं, हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक। वो बनने के लिए चर्चा की है आपने, जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
1: करना है। राइट राइट। थैंक यू सो वेरी मच शुभमा आदिति, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर्ड योर व्यूज ऑन द टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच।
0: थैंक यू।
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@nsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: इन द स्पेशल सीरीज यू आर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 years ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharji, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at AIRNSDtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दी, ये देख कैसे।
4: हैप्पी बर्थडे भाई।
3: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
5: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
6: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
7: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
5: आई नो ना।
7: RBI कहता है,
8: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। दिल्ली सरकार ने अतिवृष्टि से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को अब 75,000 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग ने मात्र 90 दिनों में 10 लाख से अधिक महिलाओं को पिंक सहेली कार्ड जारी किए। दिल्ली सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों के लिए एडहॉक मंथली रिलीफ योजना को मंजूरी दी। इससे पंजीकृत लगभग 1,832 प्रवासी परिवारों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर सृजित कर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। IIT दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने कॉमन रैंक लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने अतिवृष्टि से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को अब 75,000 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2015 से लागू 20,000 रूपये प्रति एकड़ की पुरानी दर में वृद्धि की गई है। एक रिपोर्ट।
10: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इसके अंतर्गत अगस्त सितंबर 2025 की अतिवृष्टि से ग्रसित किसानों को 75,000 रूपए हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इससे लगभग 10,000 किसानों को लाभ मिलेगा। ये निर्णय आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया। ये सहायता उन किसानों को मिलेगी जिनकी फसलें भारी वर्षा और उसके कारण खेतों में हुए जल भराव से क्षतिग्रस्त हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सहायता भूमि के अभिलेखित स्वामी को दी जाएगी। इसके अलावा कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि, ग्राम सभा में निहित भूमि और पक्की चार दीवारी वाले प्लॉट स्वरूप के फार्म हाउस इस सहायता के दायरे में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि ये सहायता किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ साथ उन्हें अगली फसल की तैयारी में सक्षम बनाएगी और कृषि गतिविधियों की निरंतरता सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अन्नदाताओं के साथ सदैव खड़ी है। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
9: परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया है कि परिवहन विभाग ने सिर्फ 90 दिनों में 10 लाख से अधिक महिलाओं को पिंक सहेली कार्ड जारी किए जा चुके हैं। श्री सिंह ने कहा कि ये केवल निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और डिजिटल सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस योजना को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रही है।
11: मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग, हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्रालय में हमारे सारे अधिकारी ने मिलकर 10 लाख प्लस हमने पिंक सहेली कार्ड बनाए हैं और हमारी दिल्ली की माता बहनों को उसका लाभ मिले और एक वो प्राउड फील करें कि हमारे पास डिजिटल कार्ड है। जो सपना सोचा था वो सपने की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो इसका जितना लाभ मिलना मिले मैं उसी की प्रयास में हूँ कि ये कार्ड नहीं है, इसको बहुत चीजों में इस्तेमाल किया सकता है रिचार्ज करके।
9: उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज उद्योग नगर औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान श्री सिंह ने वहां के उद्योग संघ, फैक्ट्री मालिकों और श्रमिकों के साथ बैठक की और क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की।

0: उन्होंने अधिकारियों को एक मजबूत जल निकासी प्रणाली बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी को भरोसा दिलाया है कि यहां की आंतरिक सड़कों का काम जल्द शुरू किया जाएगा।
1: PSIDC में जो भी सड़कें बनने वाली हैं, उनका 36 करोड़ रुपए का टेंडर मेरा हो चुका है। जो अंदर की सड़कें हैं और नाला है, उसका काम तो हम अभी शुरू करा देंगे। जो बाहर की एक बड़ी रोड है और बड़ा नाला है, उसके लिए भी हमने अलग से पैसा मांगा है। सड़कों के लिए, पिछले सड़कों के लिए, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज के लिए हमने पैसे दे दिए हैं। और ये आपका जो पानी भरता है, इसके लिए मैं आज या कल दो दिन में जैसे भी होगा बैठक करूंगा और इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल के दूंगा।
0: लोक निर्माण मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज देवली विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री के साथ दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, दिल्ली विकास प्राधिकरण, राजस्व, वन, दिल्ली पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और उनके शीघ्र समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जनहित से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने का आश्वासन भी दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। IIT दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने कॉमन रैंक लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उन्हें 360 में से 330 अंक मिले हैं। शुभम ने कहा कि ये उपलब्धि कई सालों के मेहनत का परिणाम है।
2: जी एडवांस के लिए हम लोग 2 साल से तैयारी कर रहे थे और तैयारी अच्छी चली रही थी, तो बहुत मेहनत करने के बाद तो लगता है कि अच्छा रैंक या अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो पहले से उम्मीद तो थी कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट अब ऑल इंडिया रैंक बनना ही है तो अच्छा तो लग ही रहा।
0: उच्चतम न्यायालय ने NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय की पीठ ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। राजधानी के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में आज स्वच्छता पखवाड़ा 2026 का उद्घाटन किया गया। ये 15 दिनों का स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता अभियान है, जिससे इस महीने की 15 तारीख तक चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन और मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली के दूरदर्शिता के अनुरूप स्वच्छता, पर्यावरण की देखभाल, टिकाऊ जीवन शैली और संरक्षण प्रयासों में जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों को प्रदान की जाने वाली एडहॉक मंथली रिलीफ योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस निर्णय से दिल्ली सरकार के साथ पंजीकृत लगभग 1,832 जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों को लाभ मिलेगा। ये योजना केवल उन पंजीकृत जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों पर लागू होगी जिन्होंने 31 मार्च 2024 तक राहत प्राप्त की है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए आय संबंधी पात्रता की शर्त को भी समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के सुचारू संचालन के लिए 30 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी पात्र जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवार को राहत प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। दिल्ली सरकार जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों के समान सुरक्षा, पुनर्वास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके हितों की रक्षा के लिए आगे भी आवश्यक कदम उठाती रहेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि प्रवासी परिवार की आय कितनी भी हो या उनके पास कोई अचल संपत्ति हो, इससे राहत प्राप्त करने की पात्रता प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने बताया कि एक परिवार में अधिकतम 4 सदस्यों तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत प्रवासी परिवारों को अपने परिवार के मौजूदा सदस्यों की सही जानकारी और उनके आधार विवरण को अपडेट करने का एक और अवसर मिलेगा। इसके अलावा एडहॉक मंथली रिलीफ की बकाया राशि के भुगतान से संबंधित व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है। इससे पहले 30 सितंबर 2025 तक की बकाया राहत राशि के भुगतान का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दिया।

0: गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज जन सेवा सदन में ककरोला गांव के निवासियों से बातचीत की। द्वारका मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर द्वारका ककरोला किए जाने की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने पर ग्रामवासियों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए जा चुके हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश की रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया।
2: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के कि इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो कि जो मुझे ही मार दे।
1: अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्लीवासियों को शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे देश का उज्ज्वल भविष्य हैं और सभी बच्चों को सुरक्षित वातावरण, उत्तम स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समुचित पोषण प्रदान करना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। होटलों, रेस्टोरों और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरेलू उपयोग के सिलेंडरों की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर 42 रूपये बढ़कर अब 3,113.50 रूपये में मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आज दिल्ली में लगी आग स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में लगी थी, न कि शिक्षा मंत्रालय के कार्यालय में। मंत्रालय का कार्यालय नई दिल्ली के कर्तव्य भवन 2 में स्थित है, जबकि आग लगने की घटना आईटीओ नई दिल्ली स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के परिसर में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22वीं एशियाई अंडर 20 प्रतियोगिता चैंपियनशिप में 10 स्वर्ण पदकों सहित 19 पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शानदार प्रदर्शन भारत के युवा खिलाड़ियों के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता को दर्शाता है। विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में उनके आवास पर हुआ। वे 89 वर्ष की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉ रूपाली मलिक शामिल होंगी। दिल्ली में आज सुबह के समय हल्के बादल छाए रहने के साथ हल्की धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने अतिवृष्टि से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को अब 75,000 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग ने मात्र 90 दिनों में 10 लाख से अधिक महिलाओं को पिंक सहेली कार्ड जारी किए। दिल्ली सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों के लिए एडहॉक मंथली रिलीफ योजना को मंजूरी दी। इससे पंजीकृत लगभग 1,832 प्रवासी परिवारों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री ने कहा स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर सृजित कर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: नई कार जीतने का मौका, वाओ।

0: सरप्राइज दूंगी, बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुड्ढू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
3: पर कार्ड जीत जाते तो
0: पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति भी व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
5: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
6: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
4: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि साझा बौद्ध विरासत और सदियों पुराने आपसी संबंध भारत म्यांमा संबंधों को अनूठी पहचान प्रदान करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
7: I am confident that this comprehensive agreement।
8: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
7: Of our shared future।
4: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्ट्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। एलपीजी आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई है, वहीं 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के लोक भवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वालों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय और शंकर घोष प्रमुख हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के 10

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz और ये वक्त है मधुरिमा का। मधुरिमा में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज इस प्रोग्राम में राग भैरवी का जिक्र होगा। आइए सुनते हैं राग भैरवी पर आधारित ये गीत।

0: क्या होना, क्यों सताते हो? होगा होगा।
1: राग भैरवी भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक बहुत लोकप्रिय और मधुर राग है। ये भैरवी थाट का आश्रय राग है। इसे सुबह के रागों की रानी भी कहा जाता है और इसका प्रयोग अक्सर संगीत कार्यक्रम के समापन के लिए किया जाता है। आइए सुनते हैं गैम्बलर फिल्म से ये गीत इस राग पर आधारित।

0: Combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

जी हाँ, इस राग के जो जाति है वो संपूर्ण संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर मा और संवादी स्वर सा है। गाने का जो समय है दिन का प्रथम पहर है, और ये जो राग की प्रकृति है काफी शांत भक्तिपूर्ण और श्रृंगार रस से भरी हुई है। अगर हम इसके आरोह की बात करते हैं तो सा रे ग म प ध नि सा, अवरोह सा नि ध प म ग रे सा और अवरोह। जी हाँ, सा नि ध ग म प म रे सा और पकड़ जो है ग रे सा नि सा रे म ध प म ग रे सा है। आइए सुनते हैं अब इस प्रोग्राम का ये अंतिम गीत, और इसी के साथ ये प्रोग्राम मैं विमलेश यहीं समेटती हूँ। नमस्कार।

0: नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। WTT फिडर टेबल टेनिस में दिव्यांशी भौमिक ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए महिला सिंगल्स का खिताब जीता। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता, फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 22वीं एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी। भारतीय पुरुष टीम ने U18 हॉकी एशिया कप में कोरिया को 4-1 से हराया और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से शुरू। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत का नेतृत्व करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं टेबल टेनिस से, जहां दिव्यांशी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। WTT फिडर टेबल टेनिस में भारत की दिव्यांशी भौमिक ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए महिला सिंगल्स का खिताब जीता। आइए जानते हैं उनके प्रदर्शन के बारे में।
1: दिव्यांशी भौमिक 15 वर्ष की आयु में टेबल टेनिस प्रतियोगिता में सिंगल्स खिताब जीतने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं। विश्व रैंकिंग में 211वें स्थान पर काबिज दिव्यांशी ने फाइनल में चीनी ताइपे की विश्व नंबर 38 ये ही तियान को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से पराजित किया। वे जापान की स्टार खिलाड़ी मीवा हरिमोतो के बाद WTT फीडर सर्किट में महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली दुनिया की दूसरी सबसे युवा खिलाड़ी मानी जा रही हैं। दिव्यांशी ने अपने शानदार अभियान में एक और स्वर्ण ने उपलब्धि जोड़ते हुए महिला डबल्स वर्ग का स्वर्ण पदक भी जीता। दिव्यांशी ने सिंड्रेला दास के साथ मिलकर जापान की साची आओकी और कोकोना मुरामात्सु की जोड़ी को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराया। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: अब सीधे रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर, जहां डिफेंडिंग चैंपियन ने टाइटल डिफेंड करते हुए शानदार जीत दर्ज की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL का खिताब लगातार दूसरी बार जीता, फाइनल में RCB ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। आइए सुनते हैं विशेष शुक्ला की खास रिपोर्ट।
2: फाइनल मुकाबले में टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस 8 विकेट पर 155 रन ही बना सकी। पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले गुजरात के सलामी बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन इस अहम मैच में फ्लॉप रहे। सुदर्शन 12 और गिल 10 रन बनाकर आउट हुए। GT की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर एकमात्र सफल बल्लेबाज रहे। सुंदर ने नाबाद 50 रन की पारी खेली। रसिक सलाम डार ने 27 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट लिए। 156 रन के लक्ष्य के जवाब में वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली ने RCB को तेज शुरुआत दी और 5वें के भीतर 62 रन बना दिए। अय्यर ने ताबड़तोड़ 32 रन की पारी खेली। 89 रन पर 3 विकेट गवा देने के बाद विराट कोहली ने एक छोर संभाले रखा और 25 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह विराट का IPL में सबसे तेज अर्धशतक था। विराट ने 42 गेंदों पर 3 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 75 रन की पारी खेलकर RCB को 5 विकेट से जीत दिलाने और लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। कोहली ने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर RCB को चैंपियन बनाया।
3: That's it. He finishes off in style with a 6. It's back-to-back titles for RCB. They won it after 18 years. They win it in the 19th.
2: RCB ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाकर खिताब जीता। फाइनल में विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद विराट कोहली ने कहा कि मैं इसी तरीके से मुकाबले को अपनी टीम के लिए जिताना चाहता था।
4: Well, Virat, many congratulations. Yet again a player of the match. You saved the best for the last.
5: It's stuff that you dream of. I've

0: thought of this moment many times that, you know, once when we win the IPL, I should be standing there hitting the winning runs, and tonight it was possible. So, yeah, just a dream day for us. And as I mentioned straight after the game as well, we just felt really relaxed coming to the game today and really confident about how we wanted to go about our game and what kind of team we have. And that gives you confidence to just, you know, see any kind of situation through. But yeah, in a chase, I felt really comfortable out there knowing exactly what to do.
1: 2025 में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल का पहला खिताब जीता था। रजत पाटीदार की कप्तानी में बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार खिताब जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के एलीट ग्रुप में शिरकत कर ली है।
0: सो दिस वन इज फॉर यू अगेन आरसीबी फैंस। ई साला नु कप नमदू।
1: वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। प्रतियोगिता में सबसे अधिक 776 रन बनाने के लिए वैभव को ऑरेंज कैप से भी नवाजा गया। वैभव ने सबसे अधिक 72 छक्के लगाए और उन्हें सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन के साथ साथ इमर्जिंग प्लेयर का भी अवार्ड मिला। अवार्ड लेने के बाद वैभव ने कहा, इस प्रतियोगिता से मेरे खेल में बहुत सुधार हुआ है।
2: इस सीजन सर प्रेशर के गेम में कैसे खेलना है, अपने गेम को कब किस तरीके से चेंज करना है? हर गेम में आप एक मोड से नहीं खेल सकते, आपको गेम के सिचुएशन को रीड करके खेलना पड़ेगा और टीम का क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग खेलना पड़ेगा। तो ये चीज काफी सीखने को मिला प्लेऑफ्स के गेम्स में भी।
1: 17 वर्ष तक आईपीएल खिताब का इंतजार करने वाली आरसीबी का यह लगातार दूसरा खिताब है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उत्कृष्ट प्रदर्शन भारत के युवा एथलीटों के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस उपलब्धि से आने वाले वर्षों में और भी भारतीय युवा इस खेल में भाग लेंगे। गृहमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि खिलाड़ियों की उपलब्धि भारत की अपार खेल प्रतिभा का प्रमाण है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेल क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है और युवा शक्ति ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारत ने हांगकांग में आयोजित हुई 4 दिवसीय प्रतियोगिता में 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। चीन 14 स्वर्ण, 9 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ पहले, वहीं जापान 5 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर रहा। और अब रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। इंडोनेशिया के जकार्ता में कल से इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत का नेतृत्व करेंगे।
4: सिंगापुर ओपन जीतने के बाद आत्मविश्वास से भरपूर भारत की स्टार पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी कल से इंडोनेशिया ओपन में भाग लेंगे। भारतीय जोड़ी अपने पहले मुकाबले में 4वीं वरीयता प्राप्त मलेशिया के कांग खाई शिंग और आरोन ताई से भिड़ेंगे। पुरुष डबल्स में भारत की दूसरी जोड़ी MR अर्जुन हरहरन अमसा करुणन का मुकाबला मलेशिया के नूर मोहद अजरीन, आयुष अजरीन और तान वी क्यूंग से होगा। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु अपने अभियान की शुरुआत बुसानहन आंग बांग रुंग फान से खेलेंगी। अन्य भारतीय खिलाड़ियों में मालविका मंसूर का सामना थाईलैंड की 7वीं वरीयता प्राप्त पोन पावी चोचुवोंग से होगा, जबकि उन्नति हुडा को पहले दौर में जापान की विश्व की नंबर 12वीं खिलाड़ी नोजुमी ओकुहारा जैसी मजबूत प्रतिद्वंदी मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले मुकाबले में इंडोनेशिया के अलवी फरहान से भिड़ेंगे। वहीं किदांबी श्रीकांत का सामना जापान की युशी तनाका से होगा। आयुष शेट्टी का मुकाबला चीन के वेंग होंग यांग से होगा, जबकि HS प्रणॉय आयरलैंड के एनट के खिलाफ चुनौती पेश करेंगे। मिक डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो के साथ रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद इंडोनेशिया की फेब्रियाना द्वीपुजी कुस्मा और मिलिसा ट्रियास पुष्पिता सारी के साथ खेलेंगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
3: अब बात कर लेते हैं हॉकी की। पुरुष अंडर 18 हॉकी में आज एशिया कप के पूले मुकाबले में कोरिया को 4-1 से हराकर भारत ने शानदार जीत दर्ज की। कप्तान केतन कुशवाहा के 2 गोल किए। कुशवाहा ने 3rd और 36th मिनट में गोल दागे, जबकि वरिंदर सिंह ने 5वें और शाहरुख अली 54वें मिनट में 1-1 गोल किया। भारत अब 3 जून को अपने अंतिम पूले मुकाबले में चीनी ताइपे से भिड़ेगा। अब रुख कर लेते फुटबॉल की ओर। भारत ने महिला SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय टीम ने कल गोवा के मारगाव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मौजूदा

0: कठिनाइयों और संघर्ष के बारे में जाना।
1: सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। 100 मीटर रेस में दौड़ना कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
2: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
3: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी है कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
3: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहां भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहां भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं, तो दोस्ती भी चाहिए सर। बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कॉम्पिटिशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी, मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और

0: अमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
5: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं किसान के हित में।

0: गई हैं, और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से है।
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481, 011-2371-7117 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
4: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9.

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, गर्मी का मौसम चल रहा है। ये मौसम जहां अपने साथ रसीले आम, तरबूज, लीची, खरबूज जैसे स्वादिष्ट फल लाता है, वहीं लू का प्रकोप भी। देश के कई हिस्से इस समय लू यानी हीट वेव से जूझ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बारिश होने से गर्मी से राहत भी मिलती है। भीषण गर्मी के मौसम में लू कई बार जानलेवा भी साबित होता है। ऐसे में जरूरी है कि हम लू से बचाव के लिए सावधानियां बरतें। हमारा आज का कार्यक्रम इसी पर आधारित है। लू से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और लू लगने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉ रूपाली मलिक। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है। श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप इस पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमाशंकर वाजपेयी रायबरेली से। जी रमाशंकर जी।
1: जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि लू से बड़ी पुरानी सुनते आए हैं, लू में प्याज बहुत ही बचाव करता है और अन्य कोई भी साधन जिस तरह से लू से बचा जा सके वो कृपया बताएं।
2: रूपाली जी। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि लू के समय में प्याज से बहुत बहुत ही बचाव मिलता है, तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, बट फिर भी जो हम पुराने समय से ये जो धारणाएं चलती आ रही हैं इनमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। तो आप प्याज जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपना फ्लूइड इनटेक यानी कि पीने की जो तरल पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। तो सबसे ज्यादा जरूरी लू के समय में बचने के लिए है एक एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक यानी कि तरल पदार्थ का सही मात्रा में आपको आपको लेना है, और इसके अलावा आपको गर्म जगह से बचना है। मतलब अगर घर से बाहर जितना हो सके उन चीजों को आपको अवॉइड करना है, घर जितना हो सके घर के अंदर रहना है, तो ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। खाने पीने में आपको जो भी आपको अभी मौसमी फल जो मैडम ने अभी बताए तरबूज, लीची, आम, इनका सेवन करना है और तरल पदार्थ का आपको पर्याप्त मात्रा में सेवन करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है।
0: डॉक्टर रूपाली, आपने कहा कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लिक्विड लेना चाहिए, तो किस तरह के तरल पदार्थों को लेना ठीक रहेगा ताकि जो शुगर का जो लेवल है वो बॉडी में वो कंट्रोल्ड रहे?
2: आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप आम रस, आम पन्ना जो कि बहुत गर्मी के समय में बहुत ही एक कॉमन एक कूल ड्रिंक माना जाता है, बेल का रस, इस तरह के जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं आप उनको प्रिपेयर कीजिए, आप उनको लीजिए और आप नॉर्मल अपना पानी लीजिए। और अगर आपको डिहाइड्रेशन क्रैम्प्स जैसी अगर फीलिंग आती है तब आप ORS का जो मेडिकल ORS जो अवेलेबल है उसका सेवन भी कर सकते हैं।
0: श्रीकांत झागड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी क्या पूछना चाहते हैं आप?
3: हेलो
0: जी
3: नमस्कार।
0: नमस्कार,
3: मैं श्रीता जाफर बोल रहा हूँ पुणे महाराष्ट्र से। मेरा दो सवाल है। ये बहुत अधिक गर्मी में जैसे थकान है, चिड़चिड़ापन है, बेचैनी लगती है, तो उसी स्थिति में क्या करना चाहिए? और दूसरा ये था कि ऐसे में मतलब ब्लड प्रेशर वालों ने क्या सावधानियां रखनी चाहिए, खासकर ना हाई बीपी वालों ने?
2: हाँ जी, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जो हाई बीपी के जो मरीज होते हैं वो बहुत समय इस तरह की कुछ दवाइयों पे होते हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एंड वो जो लोग होते हैं दे आर प्री डिस्पोज टू हैव हीट स्ट्रोक, मतलब उन उसको हीट स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है या कोई और आपको बीमारी से अगर आप ग्रस्त हैं, कोई भी क्रॉनिक आपको डिजीज है, सीओपीडी, एस्थमा, ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को धूप से, गर्मी से बचा कर रखें, क्योंकि इसमें आपका जो कार्डियो रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म्स हैं वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के मरीज को खास ध्यान रखना है।
0: डॉक्टर पटनायक, आपसे हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हीट वेव यानी लू क्या है।
4: देखिये, जो हीट वेव जो लू बोलते हैं बहुत भाषा में, तो हमारा जो समर टाइम में जो ज्यादातर की अप्रैल में, जून, थोड़ा सा जुलाई पार्ट में भी, तो क्या टेम्परेचर जो तापमान है, ये तापमान है उसका साधारणतः नॉर्मल से कभी कभी ज्यादा हो जाता है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। तो ये तो गर्मी का महीना है, गर्मी का महीना है तो टेम्परेचर साधारणतः ज्यादा रहता है, लेकिन जो नॉर्मल होता है हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी 30 साल का एवरेज जो उसको नॉर्मल बोलते हैं, उससे भी थोड़ा ज्यादा होता है, कंटिन्यूसली कुछ दिन के लिए प्रिवेल करता है, तो वो हम उसको एक हीट वेव डिफाइन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम डेफिनेशन अगर हम करेंगे तो 40 डिग्री से अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो एंड उसका जो नॉर्मल से 4.5 से 6.4 तक अगर हो गया तो हीट वेव हम बोलेंगे। अगर उस 6.4 से भी ज्यादा डिपार्चर जो कि नॉर्मल से ज्यादा इतना हो गया तो सीवियर हीट वेव बोलेंगे। तो ये एक डेफिनेशन के हिसाब में हम जैसे कि नॉर्मल से अगर इतना है तो करते हैं। और एक डेफिनेशन ये भी है कि अगर 45 डिग्री हो गया तो हम उसको हीट वेव कर देंगे।
0: लेकिन क्या ये अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग होता है? जैसे कोस्टल एरियाज के लिए अलग होगा, प्लेन्स के लिए अलग होगा।
4: हाँ, कोस्टल एरिया के लिए थोड़ा सा है कि कोस्टल एरिया में 37 डिग्री होने के बाद भी हमने हीट वेव करते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में जो ह्यूमिडिटी का थोड़ा प्रभाव रहता है ना, तो इससे कारण ज्यादा हानिकारक हो जाता है। तो अगर तापमान बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन जो ह्यूमिडिटी जो एयर का ह्यूमिडिटी होता है कोस्टल एरिया में उसको मिलता है, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा कोस्टल जो 37 डिग्री से ज्यादा होना था वो कोस्टल एरिया है।
0: और प्लेन्स के लिए?
4: प्लेन्स के लिए 40 डिग्री से ज्यादा होना।
0: एक और श्रोता है हमारे साथ, राजू लवानिया, आगरा उत्तर प्रदेश से। राजू जी
5: जी, मेरा नमस्कार डॉक्टर साहब को और दीदी आपको भी।
0: नमस्कार।
4: नमस्कार
5: डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था जैसे घरेलू नुस्खों में तो खैर जैसे आम का पना है, बेल का शरबत है या नींबू पानी है, ये तो खैर पुराने जो नुस्खे हैं वो तो है ही, लेकिन मेडिकल साइंस में हीट वेव का परमानेंट ट्रीटमेंट और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट क्या है?
2: जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है कि आप जो गर्मी वाली जगह है उससे दूर रहें। तो अगर कोई किसी को भी इस तरह के लक्षण अगर आते हैं तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को फटाफट से गर्मी वाली जगह से दूर मूव करना है। उसके बाद हमें उनको ठंडे पानी की पट्टी करनी है और साथ में अगर पॉसिबल है तो एक पंखा करना है। आप थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके और पंखा करें, पंखा करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उससे इवेपोरेशन से जब हीट उड़ती है तो उससे और ज्यादा आपका हीट लॉस होता है, ज्यादा देर की अगर आप खाली उस पर ठंडा कुछ रख देंगे। उसके अलावा आपको पंखा भी ऊपर से करना है, तो पंखे के आगे थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के थोड़ी ठंडी पट्टी करना। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट इलाज है जो कहीं भी किया जा सकता है।
0: लू लगने पर क्या लक्षण दिखते हैं?
2: देखिए, लू के लक्षण बहुत तरह के हो सकते हैं। माइल्ड लक्षण हो सकते हैं जिसमें कि आपको हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्किन रैश हो सकते हैं जिसको कि नॉर्मल भाषा में हम प्रिकली हीट बोलते हैं या घमोरियां बोलते हैं। तो उसमें आपको थोड़ा पाउडर डाल लेना है, कुछ एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिनिक दवाई जैसे कि सिट्रोजीन वगैरह है उसका आप यूज कर सकते हैं, और पानी आपको अच्छे से पीना, और ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं और हल्के कपड़े ढीले ढाले कपड़े वो आपको पहनने हैं। तो ये हुआ हीट रैश के लिए। हीट क्रैम्प्स में आपको हो सकता है कि थोड़ा अकड़न जकड़न महसूस हो, आपको हाथ पैर सीधा करने में दिक्कत लगे, मांसपेशियों में आपको जकड़न महसूस हो, तो इस स्थिति में आपको फ्लूइड्स का ध्यान रखना। ये डिसइलेक्ट्रोलीमिया जो हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस जो हो जाता है हीट के वजह से, वो उससे होता है। तो उस समय आपको मेडिकल जो ORS है, आप ना केवल जो बाकी तरल पदार्थ जो कि हम रूटीनली लेते हैं उसके अलावा आप मेडिकली जो ORS मिलते हैं, मेडिकल ORS, आप उनका सेवन करें अगर आपको हीट क्रैम्प जैसा सिस्टम हो।
0: गंभीर लक्षण क्या हो?
2: गंभीर लक्षण हो सकते हैं आपको हीट एग्जॉशन, या फिर हीट स्ट्रोक. हीट स्ट्रोक सबसे सीवियर वैरायटी है जिसमें कि आपको बेहोशी, आपका एक तो जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो 40 डिग्री कोर बॉडी टेम्परेचर, जो कि आपका रेक्टल टेम्परेचर आइडली होना चाहिए, ना कि सरफेस सतह वाला नहीं, कोर.

0: स्ट्रोक दो तरह का होता है, क्लासिकल और एक्सर्शनल. तो क्लासिकल में आपको यही सबसे इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव मेथड है. जो एक्सर्शनल होता है उसमें बहुत बार हम इमर्शन भी बोलते हैं कि आप उसको ठंडे पानी में इमर्स कर दो, कि कपड़े सब हटा के किसी ठंडे पानी के टब में लिटाना. वो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक में होता है. बट जो आजकल जो मिलता है उसमें क्लासिकल हीट स्ट्रोक है, और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. अगर कोई बाहर हैवी वर्क कोई कर रहा है तो उसमें क्लासिकल और एक्सर्शनल दोनों तरह का हीट स्ट्रोक हो सकता है.
1: चौधरी महेंद्र सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं. जी महेंद्र जी.
2: जी कनक जी नमस्कार.
1: नमस्ते.
2: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार.
0: धन्यवाद
2: जी. मैं चाहता हूं कि एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में कितना पानी पिए और कितना पानी जरूरी है. दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अच्छा एक स्वस्थ व्यक्ति पानी की पूर्ति हेतु बोतल लगवाता है, यानी डिस्टिल वाटर कहें या कुछ भी कहें उसे, तो आवश्यक है या नहीं?
0: ये देखिए, एक किसी भी अडल्ट व्यक्ति की जो बॉडी होती है उसका 70-80% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पानी है. ठीक है, तो उस हिसाब से अगर जो अडल्ट व्यक्ति है कम से कम उसको 8-10 ग्लास पानी डेली पीना है. ये नॉर्मल सिचुएशन की बात है. लगभग एटलीस्ट कम से कम आपको 8 ग्लास पानी पीना है, क्योंकि आपका 70-80% जो आपका बॉडी का वेट है वो उसमें वाटर है. तो उसको जो रिप्लेनिश करने के लिए आपको कम से कम 2 लीटर आपको पानी पीना है. बट अगर हम आज के समय की बात करें, जब हम लू लगने की बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको थोड़ा सा अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है. कम से कम 2 से 3 लीटर आपको पीना ही है. इसके अलावा डिपेंडिंग कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, वहां कितनी गर्मी है, अगर आपको लगता है बहुत पसीना आ रहा है, बहुत वाटर लॉस है, तो आप इसके अतिरिक्त भी पानी पी सकते हैं. बट नॉर्मल स्थिति में 3-3.5 लीटर से ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वरना उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं.
1: और ये भी ध्यान रखना होगा कि हम पानी पीने के नाम पर या लस्सी पीने के नाम पर बहुत ज्यादा मीठी चीजें
0: बिल्कुल मीठा तो अतिरिक्त बिल्कुल ना लें. और पैक्ड इसलिए जूसेस जो है वो अवॉइड करें. नेचुरल अगर आप लें वो फिर भी
1: जो हमारे पुराने लस्सी छाछ बेल का शरबत ऐसी चीजें ज्यादा अच्छी होती. नींबू पानी
0: बिल्कुल.
1: डॉक्टर पटनायक, कई बार वार्म नाइट और वेरी वार्म नाइट की भी चेतावनी जारी की जाती है, तो ये कब किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है?
3: देखिये ज्यादा क्या होता है, तो दिन का तापमान तो हमेशा समर में हाई रहता ही है, तो उससे जो हम हीट वेव का डेफिनेशन करते हैं दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिन के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, हीट वेव हुआ, उसके बाद नाइट जब आता है तो नाइट में भी क्या होता है, जो नाइट का टेम्परेचर तापमान है वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है. तो वो ज्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर में रहते हैं ये दिन का भी गर्मी झेल लिया, उसके बाद जब नाइट का भी टेम्परेचर, अगर उनके पास एसी नहीं है जो यूज नहीं करते, तो उसको हम वार्म नाइट कहते हैं. तो उसमें तो मिनिमम टेम्परेचर जो है आपका नाइट का टेम्परेचर वो भी अगर 4.5 to 6.4 हो गया तो उसमें वार्म नाइट कर दे. तो वार्म नाइट जो है नाइट टेम्परेचर में, समर के टाइम में, लेकिन नाइट टेम्परेचर में अगर अधिक हो गया तो उसको वार्म नाइट कहे.
1: और वो भी खतरनाक
3: होता है.
1: धर्मवीर लाइन पर है हमारे साथ दिल्ली से. जी धर्मवीर जी.
4: हेलो नमस्कार जी. मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ.
1: जी
4: हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार.
3: नमस्कार.
4: मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे हम गांधीनगर मार्केट में रहते हैं और दुकान हर प्रत्येक दुकान में एसी चलते हैं, एक एक दो दो, तो एक तो उनकी भी हीट निकलती है. मार्केट में निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी भट्टी से गुजर रहे हैं. तो ऐसे में हम लोग सावधानी क्या बरते हैं, जाना भी जरूरी होता है. और दूसरा मेरा ये पूछना है कि डायबिटीज मरीजों को सिकंजी और ओआर का घोल लेना ठीक है कि नहीं? और तीसरा एक और पुरानी एक बात याद आती है, बुजुर्ग कहते थे, जैसे कहते थे कि लोहा लोहे को काटता है, ऐसे जो गर्मी गर्मी को मारती है, बैलेंस बराबर करती है. अगर जितनी ज्यादा गर्मी हो आप चाय पी लें, कॉफी पी लें, तो बैलेंस बना रहता है. कोल्ड ड्रिंक लेना ठीक रहता है कि नहीं, कृपा करते?
0: हाँ जी, देखिए कोल्ड ड्रिंक लेना तो नहीं ठीक है ना, बट जो आप नेचुरल जो चीजें हैं जो आपको वैसे ठंडक प्रदान करती है, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप बेल रस पी सकते हैं या फिर आप नींबू पानी ले सकते हैं, तो जो नेचुरल चीजें, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, तो जो तरल चीजें हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है. इसका मतलब कोल्ड ठंड

0: लेने से आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक लेने से आपकी शरीर को कुछ फायदा नहीं मिलेगा। तो कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें नहीं अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है, वो अवॉइड करनी है। और जो आपने कहा शुगरी ड्रिंक, क्या डायबिटीज के मरीज को हम दे सकते हैं? नहीं, वो अवॉइड करनी है। नींबू पानी अगर आप देंगे उनको तो आप बिना चीनी के दीजिए, नमक वाला नींबू पानी दे सकते हैं, सॉल्टेड नींबू पानी दे सकते हैं, या आप उनको लस्सी दीजिए, छाछ वाली जो होती है, जो कि नमकीन लस्सी होती है, तो उनको उस कोकोनट वाटर आप दे सकते हैं।
1: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम लू से सुरक्षा और सावधानियों पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉ रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित उपाध्याय बिहार से। अमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी
2: हाँ हाँ जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ, अमित उपाध्याय। मैं मेरा ये सवाल था कि जैसे कि पिछले हम लोग देखें तुलना करें और पिछले साल के और हर एक साल से तुलना करें तो गर्मी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो जैसे कि पहले टेम्परेचर हाई, अभी जैसे मई में ही टेम्परेचर इतना 45 प्लस जा रहा है, 48 तक आ जा रहा है। तो हम ये मेरा ये प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर जो जिसका शरीर में कुछ नहीं है जांच करने पर भी, वो भी चलते चलते कभी कभी गिर जाते हैं अचानक से, उनका भी बेहोशी कुछ वैसे हो जाता है। तो हम लोग इसमें क्या और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि खूब पानी पीना जो भी डॉक्टर साहब बताते हैं वो सब हम लोग करते हैं, इसमें और क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके? जी
0: देखिए, जब भी आप बाहर निकलें कुछ एक आप छतरी लें या कपड़ा लें, गमछा जैसा कि कहा जाता है, गीला करके लें तो और भी अच्छा है। तो आपको उन चीजों का ध्यान रखना। देखिए नॉर्मल व्यक्ति में भी ये चीज हो सकती है, जिसको पहले से कोई बीमारी है वो ज्यादा प्रीडिस्पोज्ड है क्योंकि उसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एंड स्पेशली जैसे कि कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो लेते हैं, खासतौर से वो लोग बहुत ही प्रीडिस्पोज्ड होते हैं इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के लिए, हीट स्ट्रोक के लिए, क्योंकि उसमें पूरा टेम्परेचर रेगुलेशन उनका डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो लोग खास ध्यान रखें। और जो नॉर्मल व्यक्ति है तो बाहर निकलते समय ये सब प्रिकॉशंस लें, फ्लूइड्स लें, तो इतना ही है आप कर सकते हैं। और अगर कोई सिम्टम आपको लगता है हीट एग्जॉशन का या हीट स्ट्रोक का, तो इमिडिएटली ठंडी जगह पे मूव करके गीला कपड़ा रख के आप हवा कर सकते हैं।
1: तो हीट वेव किसी को भी प्रभावित कर सकता है, पर जैसा कि आपने बताया कि जिनको शुगर है या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें इसका ज्यादा खतरा रहता है। और कौन कौन से ऐसे वर्ग है, मतलब कैटेगरी क्या क्या है जिनके लोगों को इसका खतरा?
0: किसी भी क्रॉनिक डिजीज का अगर कोई मरीज है, कोई अस्थमा है, कोई COPD है, कोई हार्ट डिजीज का पेशेंट है, कोई कैंसर कीमोथेरेपी पे है, ये सब भी प्रीडिस्पोज्ड है। बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ये सभी जो हाई रिस्क ग्रुप्स में ही आते हैं।
1: तो प्रेग्नेंट लेडीज के जो आपने बात की उसमें क्या असर पड़ता है उस पर, उसके होने वाले बच्चे पर हीट वेव का?
0: देखिए जब आप हीट, अगर आप हीट से एक्सपोज हैं तो आपको पेरिफेरल वेजो डायलिटेशन होता है, यानी कि आपकी जो पेरिफ्रीज की जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट आपके बॉडी से बाहर निकल सके। उसकी वजह से थोड़ा वॉल्यूम जो है आपका, बाकी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई, उसके लिए ब्लड कम हो जाता है। तो ऐसे में जो बच्चा है उसका ब्लड सप्लाई भी कम हो सकता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट लेडीज को हम कोशिश करें ऐसी गर्मी की जगह से बचा कर रखें, और फ्लूइड, फिर से वही बात है, तरल पदार्थ का जितना हो सके सेवन करें।
1: महाराष्ट्र से कोल्हापुर से विजय कुमार स्वामी है हमारे अगले श्रोता।
3: हाँ जी
1: जी,
3: हाँ कनक दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते।
3: हाँ दीदी को भी नमस्ते, सर नमस्ते।
0: नमस्ते।
3: हाँ विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा, तहसील शिवर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं।
1: जी जी।
3: हाँ मेरा सवाल यह है कि अभी दिन रात पंखे जो चालू है
1: जी,
3: इसका हमारे पर शरीर पर कुछ असर हो सकता है क्या?
1: पंखे का असर तो नहीं, गलत नहीं होगा।
0: नहीं, पंखे से फायदा है, बट अगर 40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है तब केवल पंखा चलाने से फायदा नहीं है। तब आप AC चला के AC का टेम्परेचर 27 डिग्री रख के साथ में आप पंखा चलाएंगे तो उससे और आपको 4 डिग्री कम महसूस होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि AC का टेम्परेचर 15, 20, 22, 21 नहीं रखना है, 27 रखना है ज्यादा से ज्यादा। जो पॉसिबल, और साथ में आप थोड़ा फैन तब चलाएंगे तो वो और मदद करेगा। और जैसे कि पहले वो मैं पूछ रहे थे कि हम

0: सब जगह एसी चल रहा है, इतना गर्म है, तो और हम क्या कर सकते हैं? आपको जितना हो सके अपने छतों पे ग्रीन प्लांटेशन करना चाहिए, उससे थोड़ा सा आपका जो है
1: घर का तापमान थोड़ा
0: तापमान जो है कंट्रोल रहेगा।
2: हाँ जी,
1: और घर के आसपास भी पौधे लगाने चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: हमारे एक श्रोता ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछा है डॉक्टर पटनायक कि आईएमडी की एडवाइजरी और मौसम संबंधी अपडेट आम लोग कहां से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
3: आईएमडी जो
1: ये मयंक शेखर जी, मैं आपको नाम बता दूं, मयंक शेखर मिश्रा हैं, ये वाराणसी से उन्होंने पूछा है।
3: हाँ, वाराणसी भी बहुत गर्मी जगह है और वहाँ भी बहुत लस्सी ये सब जो इसलिए भी चलता है। तो देखिए, जो हम जो आईएमडी जो देता है सूचना, जो हीट वेव का अर्ली वार्निंग जो बोलते हैं हम, वो बहुत सारे मैकेनिज्म में हम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहला तो एक है कि हम हमारा वेबसाइट में देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वेबसाइट नहीं करते, अपडेट मान लीजिए वेबसाइट नहीं देते। दो देन दूसरा, हमारा जो ऐप वगैरह है उसमें भी हमारे इसका जानकारी देते हैं। ऐप के साथ साथ हम आजकल क्या कर रहे हैं, हर दिन एक वीडियो बनाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, उसको अपलोड किया जाता है, तो उसमें आपका पुरका जानकारी जो यूट्यूब में अपलोड किया जाता है, तो जो जो लोग उसको भी एक्सेस करते हैं उसमें से मिल रहे हैं। आपको ऐप से मिलेगा, व्हाट्सअप में मिलेगा, देन सोशल मीडिया फेसबुक आईएमडी का अगर कोई है जिनका अकाउंट अगर करेंगे तो उसमें मिलेगा। तो ये तो ऑल इंडिया लेवल में भी है, और हमारा जो रीजनल सेंटर वगैरह, जैसे कि वाराणसी से उन्होंने बताया भाई साहब, तो लखनऊ में हमारा जो रीजनल मेट सेंटर्स है, वहां से जो रीजनल और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इन्फॉर्मेशन, उनका वेबसाइट एक अलग होता है, उनका जो डाटाबेस है जहां जहां मैसेज जाता है उनका सारा सब उन्होंने रखा है। तो हर तरह का मीडियम से हम लोगों को प्रेषित करते हैं।
1: इन्होंने ये भी पूछा है कि दिन के कुछ वो विशेष समय क्या है जब लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इतनी भीषण गर्मी में?
3: देखिए, ये दिन में जब टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो लगभग अराउंड 2:30 के आसपास, 3:30 इसी में होता है दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर। लेकिन सुबह से गर्मी शुरू हो जाता है, गर्मी टेम्परेचर भी बढ़ता है, और दूसरी बात क्या होता है कि जब नीचे का जमीन भी गर्म हो जाता है वहां से भी टेम्परेचर ऊपर रेडिएट होता है। तो ये दोनों का जब ये होता है तब तो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो आपका इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग उसी टाइम में 2:30 के बाद आता है, जबकि पहला 12 बजे मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं आता है, 2:30 के बाद 3 बजे अराउंड उसमें आता है कि जब दोनों तरफ से रेडिएशन आता है। तो इसलिए उसी टाइम में नेचुरली जब डायरेक्ट सनलाइट है 11 बजे के बाद एटलीस्ट डायरेक्ट सनलाइट ज्यादा तेज है उस टाइम अवॉइड करना चाहिए। जब मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है, जब गर्मी धरती नीचे गर्मी हो गया, गर्म हवा भी नीचे से फेंक रहा है, तो वो भी 3-4 बजे तक तो अवॉइड करना,
1: मतलब 11 से 4 तक अवॉइड करना चाहिए जहां तक हो सके। अगला सवाल है रवि जवालिया जी का हरिद्वार से।
4: नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार
4: जी, मैं रवि जवालिया गढ़वीरपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ, और सभी विशेषज्ञ को और आपको भी नमस्कार बोल रहा हूँ जी, और आप सभी को और मेरे सभी श्रोता गणों को भी अभिभावक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी।
1: जी आपको भी।
4: हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कोरगेटन मशीन से गत्ता कंपनी में काम करता हूँ, वो मशीन थोड़ी हीट जनरेट करती है, तो मुझे वहाँ पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी शायद गर्मी का एहसास होता है ये सभी को, तो मैं अपने माध्यम से वैसे तो मुझे पता है, मैं श्रोता उससे भी जान मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि क्या मुझे उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए मैम जी।
1: ये जहाँ काम करते हैं वो मशीन से गर्मी निकलती है काफी, तो क्या सावधानी इनको बरतनी चाहिए?
0: तो जितना हल्का कपड़ा हो सके आप उतना हल्का कपड़ा पहने, और फिर वही अगर एक गीला कपड़ा आप सिर के आसपास लगा सकते हैं तो वो आई थिंक आपको थोड़ा मदद करेगा, और लिक्विड चीजें लेते हैं।
1: ये तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बार बार बता रही हैं कि आपको जितना हो सके उतना तरल पदार्थ लिक्विड लेना है,
0: और आसपास कहीं पंखा है तो आप पंखा
1: बीच बीच में आप जा सकते हैं वहाँ। डॉक्टर रूपाली, बहुत छोटे बच्चे जो अभी अपनी स्थिति नहीं बता सकते हैं, ऐसे बच्चों के अभिभावक कैसे समझ पाएंगे कि बच्चे को लू लग गई है?
0: जी बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि तो बच्चों को गर्मी के समय जैसा सर ने बताया 11 से 4 के बीच में आप घर से बाहर ना भेजें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज्यादा लू लगने का रिस्क होता है। और बच्चों को हमें बहुत इंश्योर करना है कि वो कम से कम 8 ग्लास पानी जरूर पिए, क्योंकि इस समय हो सकता है बच्चा पानी कम पी रहा है, तो हमें उस चीज का

0: और ध्यान रखना है कि बच्चों का फ्लूइड इंटेक ठीक रहे, 11 से 4 के समय वो बाहर ना निकले, और बाकी अगर लगता है कि बच्चा कुछ भी सुस्तीपन दिखा रहा है,
1: जैसे बहुत छोटा बच्चा,
0: बिल्कुल बहुत
1: का बच्चा
0: बिल्कुल
1: है,
0: बिल्कुल
1: उसके लिए
0: सुस्तीपन, दूध नहीं पीना अगर बच्चा इतना छोटा, बिल्कुल अगर दूध नहीं पीना या बुखार होना, तो इमीडिएटली आपको किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी को विजिट करना है और उनकी मदद लेनी है। और बच्चों को भी ढीले कपड़े, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हल्के फुल्के हवादार ढीले कपड़े।
1: अगला सवाल है राकेश जी का शिमला से।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि जब गर्मी बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, वो कितना घातक है। और दूसरा सवाल मेरा ये कि जैसे कि अब हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में गर्मी भी बढ़ रही है, तो इसमें मैदानी क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा। ये मेरे दोनों सवाल है।
1: जब हिल स्टेशन पर गर्मी बढ़ने लगी है तो प्लेन्स पे और भी गर्मी होगी, इनका ये पूछना है कि क्या असर पड़ेगा प्लेन्स पे।
3: देखिए, जैसा कि हिल स्टेशन में थोड़ा सा हमारा ये है कि हिल स्टेशन में थोड़ा तापमान प्लेन स्टेशन से थोड़ा कम रहता है, ठीक है, तो इसलिए जैसा कि प्लेन स्टेशन से भी लोग जाते रहते हैं, तो बट आजकल क्या होता है, क्लाइमेट चेंज है, तो हिल एरिया में भी जो जैसे कि पहला इतना गर्मी नहीं होता था, आजकल हिल एरिया में भी गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए तो हिल स्टेशन के लिए तो गर्मी आपका धीरे धीरे भी हो रहा है, पहले जो इतना नहीं हो रहा था इसलिए, लेकिन प्लेन एरिया में तो आपका उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्लेन एरिया में तो थोड़ा गर्मी का ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि वहां नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो ऑलवेज थोड़ा सा ज्यादा है हिल स्टेशन के ऊपर, तो इसलिए हिल स्टेशन में जब हो रहा है तो उसका प्रभाव प्लेन में नहीं है, लेकिन उसका प्लेन में भी रहेगा, जब हिल में हो रहा था तो प्लेन में भी रहेगा।
1: डॉक्टर पटनायक, हीट एक्शन प्लान्स क्या है?
3: हाँ, हीट एक्शन प्लान क्या होता है कि पहला क्या हो रहा था, जब ये एक्शन प्लान नहीं होता था तो हीट क्या धीरे धीरे धीरे धीरे किल करता है, तो हीट वेव के कारण भी धीरे धीरे ग्रेजुअली डेथ जो है नंबर ऑफ डेथ बढ़ता गया, तो गुजरात साइड में पहला ये महसूस हुआ कि बहुत सारे जो हीट रिलेटेड डेथ बढ़ रहा है, तो देखा गया कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत अनजान के कारण लोग क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं जानते थे, इसलिए बहुत एक्सपोजर होता था, क्या एक्शन लेना है उनको पता नहीं था, तो इसलिए लोग थोड़ा डेथ 2010-12 में ऐसा हुआ, तो उसमें हीट एक्शन प्लान जब स्टार्ट हुआ उसमें क्या होता है, एक जो भी राज्य में जहां हीट रिलेटेड ये सब इफेक्ट रहता है, तो उन्होंने वन बाय वन थोड़ा हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो पहला मान लो गुजरात में हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो हीट एक्शन प्लान में क्या होता है, ये बहुत सारे म्यूनिसिपल लोग जो होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, IMD के जो वार्निंग अर्ली वार्निंग देते हैं, और ये बाकी जो एडवाइजरी इशू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पानी, ये सारे जो है एक तरीके से रहता है, तो पहला उनको क्या होता है, एक हमारे डिपार्टमेंट से अगले 5 दिन अगले 7 दिन के लिए तापमान कैसा रहेगा वो एक पहला इन्फॉर्मेशन हो गया, तो वो इन्फॉर्मेशन के बाद फिर म्यूनिसिपल जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, अगर पानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर ज्यादा लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ज्यादा लोग हो जाएंगे तो उनको फिर मेडिकल अटेंशन देना जाता है।
1: डॉक्टर पटनायक, अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का, हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक, आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है, अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार

0: के राष्ट्रपति ओम मिन आउन लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमार के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
1: I am confident that this comprehensive agreement
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: Of our shared future.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारी के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी लीडरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities

0: अरब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: Both sides underscored the
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी पहले एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: Of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषधि एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनेरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिनों के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में जर्मनी के थुरिंगिया राज्य के मंत्री मारियो वोक्ट से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान भारत और जर्मनी के बीच बढ़ती साझेदारी और सेमीकंडक्टर तथा उन्नत विनिर्माण जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन और हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में विदेश मंत्री ने बताया कि उन्होंने क्षेत्रीय घटनाक्रम, हिंद प्रशांत क्षेत्र और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के बारे में अपने विचार साझा किए। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इसराइल ने लेबनान में अपने सैन्य अभियान को तेज कर दिया है और बेरूत में नए हवाई हमलों का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ट्स ने संयुक्त रूप से इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि हिजबुल्ला द्वारा बार बार युद्ध विराम उल्लंघन और इसराइली शहरों और नागरिकों पर हमलों के बाद उन्होंने सेना को बेरूत के दक्षिणी क्षेत्रों में हमले का निर्देश दिया है। खबरों के मुताबिक इन स्थानों से काफी स्थानीय लोग संख्या में

0: पलायन कर रहे हैं, जिससे सड़कों पर यातायात जाम हो गया है। ये इलाका हिजबुल्ला का गढ़ है। ईरान ने इस बढ़ते संघर्ष पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका के साथ वार्ता को निलंबित कर दिया है। इस बीच अमेरिका और ईरान ने चल रहे राजनयिक संपर्कों के बावजूद नए सैन्य हमले भी किए हैं। एक रिपोर्ट।
1: कुवैत पर हुए हमलों के कारण क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। अमरीकी सेना ने ईरान के रडार और ड्रोन कमांड ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने रविवार रात कुवैत में तैनात अमरीकी सेना पर दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने पुष्टि की कि दोनों मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक दिया गया और कोई भी अमरीकी सैनिक घायल नहीं हुआ। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे कुवैत पर अमरीकी हमलों की सीधी प्रतिक्रिया बताया है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने बताया कि 28 वाणिज्यिक जहाज कड़ी नौसैनिक निगरानी में हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरे। इस बीच इसराइल की सेना ने सीरिया के कुनेत्रा और दारा प्रांतों में नए सैन्य अभियान चलाए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: मलेशिया बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला नवीनतम देश बन गया है। आज से लागू नए नियमों के अनुसार 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट रखने की अनुमति नहीं होगी। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को आयु सत्यापन प्रणाली और बाल सुरक्षा सुविधाएं लागू करनी होंगी। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों पर 10 मिलियन रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जबकि ब्राजील ने माता पिता की कड़ी निगरानी और आयु सत्यापन उपायों को अनिवार्य कर दिया है। कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के लिए कल हुए मतदान में किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में फैसला न होने के बाद इस महीने की 21 तारीख को वामपंथी और दक्षिणपंथी उम्मीदवारों के बीच दूसरे दौर का मतदान होगा। किसी भी उम्मीदवार को सीधे जीत हासिल करने के लिए 50% से अधिक वोट नहीं मिले। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने मतदान में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए प्रारंभिक परिणामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन विभाग ने आगंतुकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पतियों के संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
2: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: मिस्र में पुरातत्वविदों को कई महत्वपूर्ण प्राचीन वस्तुएं मिली हैं। इनमें पुराने समय के दफन संस्कारों में इस्तेमाल होने वाली चीजें, एक रोमन काल के बेसिलिका के अवशेष और यूनानी देवी एफ्रोडाइट का संगमरमर से बना सिर शामिल है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर दिया बल। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को देंगे बढ़ावा। और मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Aparajita Nair with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. And Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. Team. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Minong Lian held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
4: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
3: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards completion of Kaladan multimodal transit transport project. In Myanmar, the death toll has reached 55 following a powerful explosion in the village of Kong Tup in Nam Khan township. More than 70 other people were injured in the explosion that took place yesterday. The incident was caused by the accidental detonation of materials allegedly stored for mining purposes. Local authorities are currently providing relief, medical care and resettlement assistance to affected residents. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement has come into force today. Commerce and Industrial Minister Piyush Goyal said the CIPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that CIPA is not simply a trade agreement, it is a statement of civilizational trust. The Union Minister informed that from day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's export to Oman.
5: I am confident that this comprehensive agreement will add a new momentum to our ties with Oman. From day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's exports to Oman. CIPA is a blueprint of our shared future.
3: The minister informed that multiple consignments are being shipped today from Mumbai, Kolkata and Chennai to mark the operationalization of the agreement. Mr. Goyal underlined that the India-Oman agreement is part of India's 9 free trade agreements covering 38 nations, finalized in the last 3.5 years. He added, India is negotiating agreements with several countries including Israel, Chile and Canada. India and Australia today affirmed the importance of enhancing cooperation with regional partners to help maintain a free, open, peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific. During the second edition of India-Australia Defence Ministers Dialogue in New Delhi, both the countries agreed to enhance defence industrial collaboration and futuristic technology research. The meeting was co-chaired by Defence Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defence Richard Marles. In his opening remarks, Mr. Singh said the defence ties between India and Australia have strengthened significantly.
6: In the coming years, we work with a renewed momentum, effectively contributing to growth of bilateral defence relations. Excellency, today is the 5th anniversary of elevation of our relations to comprehensive strategic partnership. I appreciate the significant strides made in our bilateral relationship across a wide range of sectors, from political exchanges to defence partnership.
3: The ministers announced that India and Australia would begin developing a memorandum of understanding regarding the provision of defence articles and defence services as the next step in deepening defence industrial collaboration. This is Akashwani. You're listening to World News. We bring you the top international news and updates from around the globe. Malaysia has become the latest country to impose age-based restrictions on social media use by children. Under new rules enforced From today, children below 16 years of age are barred from owning social media accounts with platforms required to implement age verification systems and child safety features. The measures are aimed at protecting children from harmful content, cyberbullying, and addictive online designs. Companies that fail to comply could face penalties of up to 10 million ringgit. So far, Australia

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह कार्यक्रम है हर सिंगार, जिसे लेकर आज की रात मैं माधुरी हूं आप सभी के साथ। आज हमारे हिंदी सिनेमा के पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर जी हमें छोड़कर चली गई, लेकिन मैं हमेशा कहती हूं कि कलाकार दिनों और सालों में नहीं, युगों में जिया करता है। वो अपनी आवाज के माध्यम से हमेशा हमारे साथ रहेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं उन्हीं के गीत के साथ।

ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news shared by Aparajita Nair. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said, Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
3: Mr. Misri said both sides

0: Seas, and frankly, it was something that wasn't even thought of initially as how significantly it will change the needle in terms of the health benefits. So this is surprisingly useful and a surprisingly refreshing add-on of the PM Ujjwala scheme, because Ujjwala did its primary role, which was that it ensured that a steady supply of fuel reached the households. This immediately not only did, I mean, while the health benefits, as I said, came along and caught everybody pleasantly surprised, the basic thing that it was supposed to do was to cut down the time that women spent collecting firewood, getting cow dung, and so on and so forth. In fact, the third benefit that had happened was it released a lot of manure for use in what is called the biofuel changes, which has actually now become a very significant add-on. So there's been a lot of what we should say cascading impact of the Ujjwala benefit. As you would have noticed, that what has happened is that this has also led to a very strong financial security in those households. So together, it has been a very impressive package of reforms that have been delivered, impressive package of benefits that have been delivered.
1: या एब्सोल्युटली शुभमय अदिति शुभमय अभी बात कर रहे थे किस तरह से ये बीपीएल हाउस होल्डर को खास करके उज्ज्वला योजना ने बेनिफिट पहुंचाया है रूरल वेमेन फोक को खास करके. उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से स्मोक लेडन हमारा किचन हुआ करता था और सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज अगर हम बात करें वो है जल जीवन मिशन का. टैप वाटर ये एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे खास करके भारत देश में सीजनल रेन्स एंड ऑल यू नो एंड वाटर बोर्न डिजीजेस ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता था. जल जीवन मिशन एक ऐसा एक स्कीम मतलब ये लेकर आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जहां पर कि हर घर नल योजना की शुरुआत की गई. कैसे देखते हैं आप खास करके अगर हम हेल्थ की बात करें हेल्थ को प्रायोरिटी देने की बात करें तो.
2: ये बहुत एक महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, जिसके तहत सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है एक हाउस होल्ड की महिला को, क्योंकि हम जानते हैं कि इतने साल हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को, लेकिन फिर भी अभी भी इतने सारे हाउस होल्ड्स ऐसे थे रूरल एरियाज में. ये रूरल हाउस होल्ड्स को जोड़ने की स्कीम है ज्यादातर, और इतने सारे हाउस होल्ड्स थे कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते थे, पढ़ते थे. आज तक ऐसी खबरें छप रही थी कि 8-8, 9-9 घंटे तक लोगों को चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, या बहुत किलोमीटर्स का सफर तय करके दूर दराज इलाकों में लोगों को जाना पड़ता है. जो हिली टेरेन्स हैं उसमें पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी. जो डेजर्ट एरियाज हैं, खासकर जैसलमेर, राजस्थान और गुजरात, कच्छ के साइड में बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंस मिलते थे कि जहाँ पानी की समस्या इतने साल बाद भी आज़ादी के, मतलब ये एक किसी भी देश के लिए कोई अच्छी कन्वीनियंट स्थिति नहीं है, कन्वीनियंट पिक्चर नहीं है कि आप एक बेसिक सुविधा, जैसे आप पावर की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, या पानी की बात कर लीजिए, टॉयलेट्स की बात कर लीजिए, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं जो आम तौर पर अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से जो नहीं हो पाई. और आपने सही कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ भी देखें इस योजना से, तो बहुत ज्यादा लाभ होता है. और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं, जिससे ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है, चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति इंप्रूव हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट गर्भवती महिला के लिए ये एक बून की तरह आया है, क्योंकि बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीजेस, गर्भवती महिला को गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था. और जल जीवन मिशन से क्या हुआ है, ना सिर्फ पेयजल घर तक गया है, बल्कि बहुत सारी, मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था, वो अब और चीजों में वो व्यस्त हो सकती है. वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन सकती है, वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती है, क्योंकि उसके पास अब वक्त है, घर में पानी आ रहा है. ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन बहुत बड़ा प्रभावी कदम है.
1: जी जी जी अदिति, और इसी क्रम में हम आगे बढ़े. शुभमय, सैनिटेशन की अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ये एक फ्लैगशिप मिशन जिसे कहें, और जब भी इसे इम्प्लीमेंट किया गया था उसके पहले शायद पता नहीं इस तरह की योजना कभी सुनने को नहीं मिली थी. सैनिटेशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन जिसे ओपन डेफिकेशन एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया गया, मास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स, ये कोई छोटी बात नहीं है. शुभमय, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
0: हाँ, ये वाला चीज जो आप देखेंगे
1: जी,
0: कि पानी का सप्लाई, स्वच्छ भारत मिशन, इन सभी चीजों से जो बदलाव अभी दिख रहा है वो है काफी सिग्निफिकेंट. आप इसके पहले एक आम बात थी कि बहुत सारे टिकाऊ

0: चलते ओपन डिफिकेशन और उससे चलते जितने सारे तरह की बीमारियां उनका खासकर मॉनसून में फैल जाना, बाकी समय में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें एक आम सरफ चीज था कि भाई होता है क्या किया जाए। इसमें जो अभी जो नेशनल हेल्थ सर्वे के जब डेटा देखेंगे तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये एक से कहते हैं आपका एक मेजरमेंट आ गया है कि कितना और कितना प्रभावी ये सारे बदलाव हुए हैं। अभी आप मैं आग्रह करूंगा कि कोई आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं कभी अगर वो ट्रेन का सफर करे, दूर दराज के रास्ते में चलते हुए एक जो कॉमन साइट था ओपन डेफिकेशन का वो करीब एकदम वैनिश हो गया। और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है, इसमें टाइम लगा, इसमें करने में शुरुआत में बहुत सारे हिचक आए, बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस करने पड़े, लोगों को बहुत सारी हिदायतों के साथ साथ बहुत सारे आग्रह का भी इंटरेस्ट चीजें दिया गया, इधर उधर की जिसे कहते हैं शॉर्टकमिंग्स भी आई, लेकिन इतने साल के बाद अब जाके उनका इफेक्ट लोगों के जिंदगी के ऊपर अभी दिख रहा है। और ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज इसलिए है कि ये एक तरफ एक सिविक चेंज आ गया है हमारे देश में बहुत सारे इलाकों में। अब जिन सारी चीजों की बात करें जैसे ओपन डेफिकेशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन के साथ उज्ज्वला, या उसके पहले जब जैम ट्रिनिटी, इन सब के चलते लोगों में जो एक नया वार्तालाप का एक सिस्टम आ गया, एक नया जैसे कहते हैं आइडियाज का एक कॉम्बिनेशन बन गया है कि ये सारी चीजें तो जिंदगी में होनी चाहिए, इनका ना होना ही आज आश्चर्य की बात लगता है बहुत काफी जगहों पे। ये जिसे कहते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एक बहुत बड़ा चीज है डेमोक्रेसी के लिए, बहुत बड़ा चीज है लोगों में अपना भरोसा बनाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि हम इससे आगे चल सकते हैं। ये सारी चीजों के लिए हमें डेली का जो लड़ाई है वो जूझना नहीं पड़ेगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सब हमारे लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और वो उपलब्ध रहेंगी।
1: Absolutely, Shubma. Aditi, talking of social security and safety nets, of course, Shubma also mentioned about, the health aspect. Now, health is one thing which just cannot be ignored, that is one. And of course, the importance of it cannot be overstated. If you look at the Western countries, the more advanced economies, they have their own safety nets, they have their own social healthcare schemes and so on and so forth. In India, if you talk of, maybe let's say 10, 12 years or 15 years back, or even more, probably there was not much to offer by any of the governments, if I may say, over the years, over the decades, in fact, that they could offer something like that to the common man, especially the poor or maybe the lower middle income group, that kind of. Now, with the Ayushman Bharat scheme coming in, it again revolutionized, the kind of safety net which was so very much required for the common man. Now, this, in fact, has turned out to be the world's largest government-funded health insurance scheme, offering up to 5 lakh rupees per family. Now, how important this is, how significant is this?
2: See, this is extremely significant in the sense that it has helped in very deep penetration of cutting-edge health services across the country. Earlier, what was happening is that for even a very small procedure or a small facility visit, people had to come all the way to AIIMS, New Delhi, or in the north part of the country, they had to go to PGI, Chandigarh. In south, they used to throng Jipmer, Puducherry. These are institutes of excellence in health. Mm. Everybody would have to rush to these institutions because there was no healthcare available next door. See, the concept of healthcare delivery becomes important and successful if you take healthcare services where people are living. So the entire infrastructure under the Ayushman Bharat scheme was conceived around these pillars. The first thing was that you set up health and wellness centers, which are now known by the name of Arogya Mandir. Mm. Different states of the country have it. Some states which did not have it, for instance, West Bengal, where election has just ensured that BJP has won. So they are now going to roll out the Ayushman Bharat landscape there also. Mm. So there are two main pillars of the scheme that you mentioned. First is that you have the community health service through Arogya Mandirs, where you provide basic screening facilities for the community dwellers. Villagers will come there, and they will be able to screen themselves for even some of the major cancers, for example, the most common ones. You can get screenings for cancer of the cervix, for breast cancer, for, these kind of cancers. You can get screening and basic facilities. Now, if a referral is found at that level and you are found to be in need of better healthcare delivery, so then you are referred to a higher facility, which could either be a

0: बेच रहे थे तो हम उसको खरीद रहे थे.
1: इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें,
0: बिल्कुल गिग वर्कर्स की भी स्वनिधि में वो भी काफी हद तक कवर होते हैं. तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली आइडिया था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके ताकि वो ऐसा ना हो कि COVID-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं. तो तब से इतनी इम्पोर्टेंट बन गई स्कीम और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला. सबसे इम्पोर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीजें कर सकते हैं. तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर भी किया है और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है. और ना सिर्फ ये किया गया है, 3 लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को. पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, वैसे ही दूसरे लेवल पे 20,000 से 25,000 कर दिया गया है और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है. और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं. प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन ज्यादा से ज्यादा कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम. तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है. 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के.
1: राइट अदिति, लेट्स टॉक द वुमेन फोक लखपति दीदी अभियान. ये लगभग 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है, कुछ बताएं इसके बारे में.
0: जी, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की. और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस छोटी सी एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है.
1: जी,
0: जो 6,000 की रकम तय की गई है, ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा. इस वजह से ये 6,000 पे तय हुई थी. पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की, और अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की. ये 4 स्तंभ हैं. जब तक आप इनको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करते तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाए. जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है. करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं. उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं, लखपति दीदी योजना उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला 1 साल में 1,00,000 रुपए अपने बलबूते पर कमा सके. उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे द्रोण दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है. कुछ महिलाएं द्रोण दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीजें कर रही हैं. सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है. फिशरीज में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को. उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है. और एक चीज की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में. ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है. तो वहां मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और यूएस का 41.8 है. कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने एक लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है. और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक की, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहां बैठकर. ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट, एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं. और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं. उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घटके 5.3% रह गई है. तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है. इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी अपने एविडेंस बेस्ड

0: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@nsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharji, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और ये सफर है गीत मेरे मन में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं सदाबहार गाने। आज मैं हूं आपके साथ माधुरी, तो सुनिए सदाबहार गाने बिना रुके।

और इसी के साथ गीत मेरे मनमीत का ये सफर यहीं तक। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद

0: सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्थिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कल नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका की लघु व्यवसाय विकास मंत्री स्टेला टेम्बिसा नडाबेनी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि ये मंत्री सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसराइल ने लेबनान में अपने सैन्य अभियान तेज करने के साथ बेरूत में नए हवाई हमलों का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे युद्ध में एक बड़ा मोड़ बताया। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफानी मौसम की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और करैकल में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेड बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi yesterday. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan multimodal transit transport project. President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan yesterday, President Murmu said, "Both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries." The President said, "Myanmar is India's gateway to Southeast Asia, as it is the only ASEAN country that

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिकंदा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और निशिकंदा में आज पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है सौदागर।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आज हम बात करेंगे रात की। जी हाँ, रात जैसे जैसे ढलती जाती है और धीमी हवा में जब खामोशी उतरती है तो लगता है जैसे समय ठहर गया हो। हर सांस में एक अनकही दास्तां छिपी होती है और हर धड़कन किसी अनजाने अदृश्य संगीत से जुड़ी होती है। और यही वो पल होता है जब मन खुद से बातें करने लगता है। बाहर की हलचल थम जाती है और भीतर की आवाजें खुद को बहुत साफ साफ सुनाई देने लगती है। और यही वो क्षण होता है जब हर इंसान अपने सबसे करीब होता है, खुद को महसूस कर सकता है, खुद को समझने की कोशिश करता है और जीवन से जुड़ी सच्चाई को बहुत करीब से जान लेता है। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में और फिल्म का नाम है प्रेम पर्वत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक, हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अगला गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज में और मुकेश की आवाज में, फिल्म का नाम है मेरी सूरत तेरी आंखें।

रहते, अकेलेपन का नाम देते हैं, डर का नाम देते हैं, भय का नाम देते हैं, तो कभी कभी ये रात की खामोशी, ये सन्नाटा हमारे लिए एक सुंदर साथ भी बन जाता है। उसकी गोद में बैठकर हम अपने दुखों को गिनते हैं, अपनी तकलीफों को गिनते हैं, अपने संघर्षों को गिनते हैं, और फिर पाते हैं कि हर संघर्ष के पीछे, हर दुख के पीछे, हर तकलीफ के पीछे एक सीख छिपी होती है। हर आंसू किसी अनकहे साहस की कहानी होती है, और यही खामोशी हमें मजबूत करती जाती है। हम समझते हैं कि टूटना किसी भी कहानी का अंत नहीं होता, बल्कि हर टूटन से एक नई शुरुआत होती है, एक नई कहानी रची जाती है। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे के बाद ही उजाले का जन्म होता है, और हर थकान के बाद एक सुकून भरी नींद आती है, और यही हम सबके जीवन का सबसे खूबसूरत सीक्रेट है, सबसे सुंदर रहस्य है, और हम इसे समझना भूल जाते हैं। वो कहते हैं ना कि न तुझसे गरज है न सूरत से तेरी, मुसव्विर के हम तो कलम देखते हैं, मुसव्विर के हम तो कलम देखते हैं। जिंदगी की परिभाषा जिन शब्दों में लिखना चाहें उस शब्द में लिख सकते हैं, जिंदगी ठीक वैसे ही नजर आने लगेगी। पर लिखते वक्त में हमेशा याद रखें कि कहानी चाहे जैसी भी रही हो, कहानी का अंत कैसा बनाना है ये सब कुछ हम पर निर्भर करता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी, आवाज है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है नगीना, आवाज है अनुराधा पौडवाल की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मिलते हैं 1:10 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने नई दिल्ली में स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के बारे में लोगों को जानकारी देना है। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि ये मंत्री सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के ढहने की घटना की जांच के लिए 2 अलग-अलग उच्च स्तरीय जांच समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। हमीरपुर के जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच समिति की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को कम करने पर सहमति बन गई है। यह समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत और मध्यस्थों के माध्यम से हिजबुल्ला से संपर्क के बाद सामने आया। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफानी मौसम की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing had detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi yesterday. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Minister Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
3: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan multimodal transit transport project. President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan yesterday, President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar is India's gateway to Southeast Asia, as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Hlaing on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The Indian-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, SEPA, has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the SEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that this partnership agreement is not simply a trade agreement, it is

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में जो पहला गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है मेरे सनम, आवाज है मोहम्मद रफी की।

रात का ये शांत पहर, धीरे धीरे बहती हवा, जैसे कोई पुराना गीत गुनगुना रही हो, उसमें यादों की खुशबू घुली होती है। कभी बचपन की हंसी, कभी जवानी की बेचैनी और कभी बुढ़ापे की थकान। हर सांस में एक कहानी छिपी होती है कहीं ना कहीं, जो हमें बताती है कि जीवन केवल जीने का नाम नहीं बल्कि महसूस करके जीने का नाम है। जीवन में जितने भी पल गुजर रहे हैं ना, उन सबको महसूस करते जाइए। हर कहानी के पीछे हर पल एक नई सीख देकर जाता है। जरूरत होती है उसे दिल से महसूस करने की। और अगला गीत, फिल्म का नाम है जुर्म, आवाज है कुमार शानू और साधना सरगम की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयति। गीत सुहाने में जो अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है शागिर्द और आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और साथ हूं मैं जयती। कहते हैं कि जब सब कुछ शांत हो जाता है तब अगर कुछ सुनाई देता है तो वो होती है दिल की आवाज, और ये दिल की आवाज सन्नाटे में सबसे तेज सबसे ऊंची सुनाई देती है, और वो सुनाई देकर उसकी धक धक धक धक धक धक हमें याद दिलाती है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है, हम क्या कर रहे हैं। ये जो सब कुछ होता है ना, ये हमारा खुद के साथ संवाद होता है, और ये संवाद दुनिया का सबसे बेहतरीन संवाद होता है। जब हम अकेले में खामोशी में खुद से बातें करते हैं, और यही संवाद जब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाना है, हमें क्या करना है, हमारी मंजिल कहां है, तो वो हमें भीतर से रोशन कर देता है, बताता है कि सच्चा सुख जो है वो बाहर नहीं है बल्कि भीतर की शांति में है। यही वो पल होता है जब हम खुद को पाना सीखने लग जाते हैं, खुद से बातें करना सीखने लग जाते हैं, और इसी क्रम में हमें पता चलता है कि हमारी मंजिल कहां बैठकर हमारा इंतजार कर रही है। अगला गीत फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी, आवाज है मोहम्मद रफी की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया।

0: राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने दो विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया। महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया कल संपन्न हुई। सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने सभी 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर, शिवसेना 4 सीटों पर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमवीए ने कांग्रेस को 8 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 6 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को 3 सीटें आवंटित की हैं। मतदान और मतगणना दोनों 22 जून को होंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को कम करने पर सहमति बन गई है। यह समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत और मध्यस्थियों के माध्यम से हिजबुल्ला से संपर्क के बाद सामने आया है। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफानी मौसम की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi yesterday. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan multimodal transport project. President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's neighbourhood first East Act East and Mahasagar policies. Welcome Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan yesterday. President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar is India's gateway to Southeast Asia as it is the only ASEAN country that shares a land border with India, congratulating President Hlaing on assuming office as the President of Myanmar. President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, SEPA, has come into force yesterday. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the SEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that this partnership agreement is not simply a trade agreement, it is a statement of civilizational trust. The Union Minister informed that from day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's export to Oman. Prime Minister Narendra Modi yesterday shared an article written by Mr. Goyal on the India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement. The Prime Minister said that the article emphasizes that the government's efforts to sign trade agreements with developed countries help improve the lives of every Indian. India and Australia yesterday affirmed the importance of enhancing cooperation with regional powers.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और रात सुरमई में जो आज आप पहला गीत सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है अभिमान। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कभी कभी लगता है कि तन्हाई बिल्कुल एक दर्पण की जैसी होती है। तन्हाई में बैठकर हम अपना असली चेहरा देखते हैं, अपने व्यक्तित्व को जानते हैं, पहचानते हैं, और हमारा सामना हमारे उस व्यक्तित्व से होता है जो हम दुनिया को नहीं दिखाते, जिसमें हमारी कमजोरी होती है, हमारा डर होता है और हमारी ताकत भी होती है। और यही तन्हाई, यही अकेलापन हमें सिखाता है कि अगर हम किसी भय के कारण, किसी डर के कारण, किसी कमजोरी के कारण अगर खुद से भाग रहे हैं तो भागना संभव नहीं है। खुद को अपना लेना, चाहे हम जैसे भी हैं, हम अच्छे हैं, ये सबसे बड़ा साहस है। और यही साहस हमें आगे बढ़ाता है और हमारे जीवन को अर्थ देता है, हौसला देता है। तो खुद को अपनाना सीखिए। हम जो हैं, हम इस दुनिया का सबसे बेहतर क्रिएचर हैं, भगवान के द्वारा बनाए गए। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है बॉर्डर, आवाज है सोनू निगम और अलका याग्निक की।

किसी ने कहा कि यादें अक्सर आती हैं और चुपचाप लौट जाती हैं, पर यादें जो होती है ना, वो चुपचाप लौटती हैं या नहीं लौटती हैं, ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक अनुभव होता है। पर यादें हमें उन पलों में ले जाती हैं जहां हंसी थी और हंसी के साथ थोड़े से आंसू भी थे, पर अनगिनत अधूरी बातें थी। यादों ने ही सिखाया कि हर याद एक पुल का काम करती है जो हमें अतीत से जोड़ती है, और ये पुल अतीत से जोड़कर हमें सुकून देता है, पर कभी कभी वो हमें थोड़ा बेचैन भी कर देता है। लेकिन हर याद हमें ये सिखा कर जाती है कि बीता हुआ समय हमारे भीतर जीवित रहकर हमें जीवंतता प्रदान करता रहता है। आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरे सनम, आवाज है आशा भोसले की।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे 3 बजे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो फिर मिलने के वादे के साथ जयती चाय की अनुमति आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत और फिर मिलने के वादे के साथ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र विधान परिषद की सभी 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने कांग्रेस को 8 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 6 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को 3 सीटें आवंटित की हैं। राज्य विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल संपन्न हुई। मतदान और मतगणना दोनों 22 जून को होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के ढहने की घटना की जांच के लिए 2 अलग अलग उच्च स्तरीय जांच समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुंझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और अनिल डी अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें उन पर बैंक को 2,929 करोड़ रूपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को कम करने पर सहमति बन गई है। यह समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत और मध्यस्थों के माध्यम से हिजबुल्ला से संपर्क के बाद सामने आया है। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान की चेतावनी जारी की है। इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और करिकल में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi yesterday. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan multimodal transit transport project. President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan yesterday, President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar is India's gateway to Southeast Asia as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Hlaing on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, SEPA, has come into force yesterday. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the SEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that this partnership agreement is not simply a trade agreement, it is a statement of civilizational trust. The Union Minister informed that from day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's export to Oman. India and Australia yesterday affirmed the importance of enhancing cooperation with regional partners to help maintain a free, open, peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific. During the second edition of India-Australia Defence Minister Dialogue in New Delhi, both the countries agreed to enhance defence industrial collaboration in futuristic technology research. The meeting was co-chaired by Defence Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defence Richard Malis. BJP National President Nitin Naveen yesterday held a meeting with senior party office bearers and workers in New Delhi. Talking to media, party MP and spokesperson Dr. Sambit Patra shared key details highlighting discussions on Narendra Modi government's 12 years of service, organizational expansion and future initiatives aimed at broadening the party's outreach across various sections of society. He said that the government is completing 12 years in office and everyone has witnessed how India has progressed under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, with advancement taking place across every

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। आप सबका एक बार प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं प्रोग्राम हमराही में। मैं हूँ आज आपके साथ आपके दोस्त भारती और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म सच्चा झूठा से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

उसकी मुस्कान जैसे रात की ठंडी हवा का झोंका, जो दिल की सारी थकान चुरा ले जाए और हर पल को खूबसूरत बना दे।

अभी आपने गीत सुना फिल्म लहू के दो रंग से। इंतजार भी कितना प्यारा होता है जब यकीन हो कि कोई हमें याद करके मुस्कुरा रहा होगा। हर बीतती रात फिर उम्मीद बन जाती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है हम राही। कुछ लोग दिल में इस तरह बस जाते हैं, कुछ लोग दिल में इस तरह बस जाते हैं कि रात हो या दिन, हर ख्याल उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं पर आकर

कभी कभी प्यार को बस दो धड़कनों की दुनिया चाहिए, कभी कभी प्यार को बस दो धड़कनों की दुनिया चाहिए होती है, जहां बातें कम और एहसास ज्यादा सुनाई दे।

अभी आपने गीत सुना फिल्म बॉबी से लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज में। कुछ रिश्ते आवाज से नहीं, दिल की खामोश पुकार से जोड़ा जाया करते हैं, जैसे हमारा रिश्ता है आपसे गीतों के साथ।

रात की ठंडी हवाओं में जब किसी का ख्याल महकने लगे तो हर वादी मोहब्बत का गीत गुनगुनाने लगती है। और इसी के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ मैं कार्यक्रम के आखिरी गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी, यानी 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा, और गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो जल्द मिलते हैं, तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और ये प्यारा सा गीत आपके लिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बीच वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र विधान परिषद की सभी 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने कांग्रेस को 8 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 6 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को 3 सीटें आवंटित की हैं। राज्य विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल संपन्न हुई। मतदान और मतगणना दोनों 22 जून को होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के ढहने की घटना की जांच के लिए 2 अलग अलग उच्च स्तरीय जांच समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के अधिकारी अमिताभ झुंझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल डी अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष को कम करने पर सहमति बन गई है। ये समझौता इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत और मध्यस्थों के माध्यम से हिजबुल्ला से संपर्क के बाद सामने आया है। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त भारती और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म राजकुमार से सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाज में।

इस गीत को संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा का। फिल्म अंधा कानून से किशोर कुमार की आवाज में गीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और संगीतकार आनंद बख्शी।

और अभी आपने गीत सुना फिल्म अंधा कानून से, और इस गीत के गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गायक किशोर कुमार। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म नया दौर से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा। और आगे बढ़ते हैं, सुनते अगला गीत फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई से हेमलता की आवाज में गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

आप समय कह रहे हैं कि आपसे अनुमति ले ली जाए, जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगी 5:10 पर लेकर कार्यक्रम भोर सुहानी। छोड़े जा रही हूँ आपको एक बहुत ही प्यारे से भजन के साथ। भजन है को अपनी आवाज से सजाया है भजन सम्राट श्री गोविंद भार्गव जी ने। आनंद लीजिए इस भजन का और जल्द मुलाकात होगी 5:10 पर।

0: 9 ने कल व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कल लागू किया गया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पश्चिम बंगाल में कल मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतब्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों की गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर के जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच समिति की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी कर रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ है। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी सांसद और प्रवक्ता डॉ संबित पात्रा ने पत्रकारों से बातचीत में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों पर हुए विचार विमर्श का ब्यौरा साझा किया। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमरीका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमरीका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। किसी एक स्थान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन का असर सभी मोर्चों पर पड़ेगा। इससे पहले इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ईरान समर्थित हिजबुल्ला के मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में लेबनान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान की चेतावनी जारी की है। विभाग ने इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi yesterday. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan multimodal transit transport project. President Draupadi Murmu has said Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act, East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan yesterday, President Murmu said both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said Myanmar is India's gateway to Southeast Asia as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, SEPA, has come into force yesterday. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the SEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that this partnership agreement is not simply a trade agreement, it is a statement of civilizational trust. The Union Minister informed that from day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's export to Oman. Mr. Goyal also informed that multiple consignments are being shipped yesterday from Mumbai, Kolkata and Chennai to mark the operationalization of the agreement. India and Australia yesterday affirmed the importance of enhancing cooperation with regional partners to help maintain a free, open, peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific. During the second edition of India-Australia Defence Ministers' Dialogue in New Delhi, both the countries agreed to enhance defence industrial collaboration in futuristic technology research. The meeting was co-chaired by Defence Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defence Richard Malles. Uttar Pradesh government has constituted two separate high-level inquiry committees to investigate the collapse of the segmental span of the under-construction bridge over the Betwa River in Hamirpur district. The committees under the district administration and the Uttar Pradesh Bridge Corporation have begun a comprehensive investigation into the incident, which took six lives. Public sector oil marketing companies have clarified that there is no shortage of petrol, diesel or LPG in Puducherry and that fuel supplies remain normal across the Union Territory. A statement issued by State Level Coordinator SLC for the oil industry in Tamil Nadu and Puducherry informed that adequate stocks of all petroleum products are available and supplies are being maintained without interruption. U.S. President Donald Trump has said that Israel and Hezbollah have agreed to dial back fighting after he held talks with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and communicated with the Lebanon militant group through mediators. Trump announced the development in a social media post following his call with Netanyahu. And in hockey, India registered a commanding 4-1 victory over Korea in their third Pool A match of the men's under-18 Asia Cup in Kakamigahara, Japan yesterday. Captain Ketan Kushwaha led from the front with a brace scoring in the third and 36 minutes. And that is the end of this news bulletin.

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम के इस भजन के साथ।

ये बहती हवाएं जैसे संदेश दे रही हैं कि नई सुबह उम्मीदों का उत्सव है। आइए इस ताजगी को अपने दिल में बसाकर पूरे दिन को मुस्कान और ऊर्जा से भर दें।

जीवन की राहों में साथ, विश्वास और हौसला बहुत जरूरी है। मंजिल चाहे दूर हो, लेकिन कदम अगर उम्मीदों से उठें, तो रास्ते भी गीत बन जाते हैं।